0: अभी आप सुन रहे थे स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु वेल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य

0: मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
2: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around $1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the 7th edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2020. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
1: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a 2-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since the year 2017. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing. According to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post that the assistance includes portable generator sets, dignity care.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं चिंतन। इसमें आज आप सुनेंगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रसंग।

हॉकी का नाम लेते ही जिस महान खिलाड़ी की तस्वीर हमारी आंखों के सामने चमक उठती है वो है मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किए। भारत के अलावा विश्व के अनेक दिग्गजों ने भी ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के लिए कहा था कि वो तो क्रिकेट के रनों की तरह गोल बनाते हैं। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर ये दोनों खेल हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिली थी। वो 1935 की बात है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। तब भारतीय टीम एक मैच के लिए एडिलेड में थी और ब्रैडमैन भी वहां मैच खेलने के लिए आए थे। ब्रैडमैन और ध्यानचंद दोनों तब एक दूसरे से मिले थे। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे मेजर ध्यानचंद 23 वर्ष की उम्र में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। यहाँ 4 मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद और उनके बड़े भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 15 अगस्त 1936 को हुए फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक अपना झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सल्यूट किया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे, जिनमें बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन सरकार के कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते और मोजे उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। पहले हाफ तक 1-0 से आगे चल रही भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में 7 गोल दाग दिए। मैच देख रहे जर्मनी के हिटलर अपनी टीम के शर्मनाक हार से बौखलाकर बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने मेजर ध्यानचंद से कहा, तुम जर्मनी में बस जाओ, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस पर मेजर ध्यानचंद ने कहा, क्या आप जर्मनी में मुझे मेरे देश जैसी माटी दे सकते हो? ये सुनकर हिटलर अवाक रह गए।

जीवन से प्रसंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

आइए अब हम आपको आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 32। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। ये थे आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस में अयोध्या कांड का भाग 32।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिकसहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्नाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिकपरम्परा उद्योगशैक्षणिकसहयोग मत्स्यपालनादि प्रमुखसार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य ईरोडनगरे कोङ्गु विल्लालर् इन्स्टिट्यूट् आफ् टेक्नोलोजी ट्रस्ट् इत्यस्य संस्थापकदिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेङ्गलूरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिकसमारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन् सेन्थिल् कुमारः गतरात्रौ निर्णायकस्पर्धायां वलाज्स् फार्कस् इत्यमुं 3-0 इत्यङ्कैः पराजित्य बुडापेस्ट् ओपन् कॉपर टूर् इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपतिनाथ मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपति नाथ मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:30 और पूरे 30 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में।

जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई है अजूबा गीत के साथ, और आज ना हम बात भी कुछ करेंगे अजूबे के टाइप की, यानी कुछ ऐसी बात जिसका हमसे कहते हैं ना रिश्ता होता है, हम जिन्हें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रेगुलर देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। जी हाँ, आज मैं सुबह ना आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी कि आपने नाश्ता किया या नहीं किया, ना ये पूछूंगी आपका दिन कैसा जा रहा है, क्योंकि दिन की शुरुआत तो दोस्तों अभी हुई है और वीकेंड है तो थोड़ा सा लेट ही होती है वैसे तो, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये जो कार्यक्रम है ना उसे ज़रूर सुन रहे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे श्रोता हमारा जो ये शो है ना गीतों भरी गुड मॉर्निंग कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने आसपास देखने के लिए कहूँगी, जी हाँ, आज कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आज सिर्फ पूछेंगे कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, सिर्फ इस बारे में आज हम बात करेंगे देखने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर दिन दिखाई देती हैं लेकिन हम उन्हें कभी देखते नहीं हैं। है ना थोड़े अजूबे वाली बात कि देखते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। लगा आज आपको अजीब, तो चलिए आज की सुबह कुछ ऐसी ही चीज़ों को थोड़ा गौर से देखते हैं और बात करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, जैसे कि

दरवाजा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे दरवाजे की, जिसे हम दिन में न जाने कितनी बार खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। वो होता है दरवाजा। सुबह घर से निकलते वक्त दरवाजा बंद किया, दरवाजा खोला, स्कूल पहुंचे तो दरवाजे में से होके हम अपने स्कूल में घुसे, क्लासरूम में घुसे, ऑफिस गए तो तीसरा दरवाजा हमें मिला। जी हाँ, दरवाजे के जरिए हम अंदर गए अपने ऑफिस के, और उसी दरवाजे से शाम को वापस आ गए। लेकिन कभी सोचा है, एक दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं होता, वो दो जगहों के बीच की सीमा होता है। एक तरफ घर की दुनिया और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया। और मजेदार बात तो ये है कि दोस्तों, दरवाजा कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं पूछता कि तुम खुश हो या परेशान। वो तो बस खुलता है और बंद होता है और रास्ता दे देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। शायद हमें कभी कभी जिंदगी के दरवाजों की तरह ही होना चाहिए, हमेशा खुले मन से कहते हैं ना, अपनी जिंदगी को जीना चाहिए।

आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए। हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ चल रही है कुछ देखने वाली चीजों की जिन्हें अक्सर हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। ऐसी दूसरी चीज है सीढ़ियाँ। जी हाँ, लेडर्स, और कई बार आम बोलचाल की भाषा में ना हम उसे जीना भी कहते हैं। होता है ना, घरों में भी होता है, ऑफिस में भी होता है और बहुत सारी जगहों पर होता है एक्चुअली में, जहाँ अगर हमें कहीं ऊपर जाना है तो वो जो है ना हमें मिल जाता है। जी हाँ, अब जरा अपने आसपास की सीढ़ियों को ही याद कीजिए। हम रोज उन पर चढ़ते हैं लेकिन कभी उनकी तरफ देखा नहीं ना, नहीं देखा।

बच्चों की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो कभी एक छलांग में मंजिल तक पहुंचाने का दावा नहीं करती है। वो कहती हैं, एक कदम, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम, बस ऐसे ही सारे कदम, और ऐसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाते हैं। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हम मंजिल को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सीढ़ियां हमें सिखाती हैं कि बस अगला कदम उठाओ और बढ़ जाओ अपनी मंजिल की ओर।

भाई अगर आसमान छूना है तो सीढ़ियों का सहारा तो लेना पड़ेगा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा और आसमान को छूना होगा। चलिए चलते हैं अगली चीज़ की ओर, जो हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं, सीरियसली तो बिल्कुल ही नहीं लेते, कभी कभी बहुत जल्दीबाजी होती है ना, वो है ट्रैफिक सिग्नल। जी हाँ, अब आते हैं शहर की एक ऐसी चीज़ पर जिसे देख कर ना शायद ज़्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे यार फिर से एक और रेड लाइट और लेट हो जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, एक छोटी सी रेड लाइट सैकड़ों लोगों को रोक देती है। देखिए कितनी पावर है ना उसमें। कभी सोचा है क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ना रुकना भी ज़रूरी होता है दोस्त। लाल बत्ती हमें कोई लंबा भाषण तो नहीं देती है, बस ये बताती है कि आप जो है ना इन तीन रंगों के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में चले। पहले रुकें, तैयार रहें और फिर चलें। जी हाँ, काश जिंदगी में भी ऐसा कोई सिग्नल होता। अगर ऐसा सिग्नल होता ना दोस्तों, वाकई में हमारी जो लाइफ है ना सॉर्टेड होती। किसी मुश्किल समय में लाल बत्ती जलती है और कहती है अभी रुको, फैसला मत लो। जल्दीबाजी में फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, और जब सब सही समय आता है तब हरी बत्ती कहती है बस यही सही वक्त है, अब चलो।

जी हाँ, वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:45। आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता के साथ।

चलते हैं अगली चीज की ओर। अगली ऐसी चीज जिसे हम अक्सर देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, वो है पार्क की बेंच। जी हाँ, वो खुद कहीं नहीं जाती है दोस्तों। सुबह कोई उस पर बैठकर अखबार पढ़ता है, तो कोई बैठकर गप्पे मारता है, तो कोई चुपचाप सामने बस देखता रहता है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो कोई थक कर बस कुछ मिनट आराम करता है। बेंच सबको जगह देती है, लेकिन किसी की कहानी अपने साथ नहीं ले जाती। कितनी सारी ऐसी कहानियां हैं उसके सामने जो है गुजर जाती हैं, और वो बस चुप रहती है और उन्हें देखती रहती है। शायद इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं।

दोस्तों आप सब स्कूल तो गए होंगे, बिल्कुल, मतलब अपनी जिंदगी में हर कोई स्कूल तो जरूर ही जाता है। तो स्कूल की घंटी याद है कुछ? जी हाँ, स्कूल की घंटी उन लोगों के लिए जो स्कूल जाते हैं, एक आवाज और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। क्लास शुरू होती है या फिर छुट्टी हो जाती है, लेकिन घंटी सिर्फ स्कूल में नहीं बजती दोस्तों, जिंदगी में भी कई बार ऐसी घंटियां बजती हैं। कभी कोई मौका कहता है अब शुरू करो, कभी कोई परिस्थिति कहती है अब आगे बढ़ो, और कभी जिंदगी खुद कहती है अब अगला अध्याय जो है ना शुरू करने का समय आ चुका है, क्योंकि उसकी घंटी बज चुकी है। तो चलो उठो और आगे बढ़ो।

खिड़की, जी हाँ, आप सभी के घरों में खिड़की होती है, ऑफिस में होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है। जी हाँ, खिड़की खुद कहीं नहीं जाती लेकिन दुनिया को अंदर ले आती है। कभी बैठे हैं आप खिड़की पे, खिड़की के पास, और देख रहे होते हैं पूरी दुनिया को। तो बस यही काम होता है खिड़की का, आपको पूरी दुनिया दिखाने का। जैसे धूप, हवा, बारिश, आवाज़ें, पेड़ों की हलचल, आसमान, सब कुछ। और शायद खिड़की हमें एक खूबसूरत बात भी सिखाती है दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, हम जहाँ हैं उसके बाहर भी बहुत कुछ है। नई जगह है, नए लोग हैं, नए अनुभव हैं और नई कहानियाँ भी हैं। इसलिए अगर आज कभी लगे कि जिंदगी एक जगह रुक गई है, तो बस एक बार खिड़की खोलकर बाहर ज़रूर देखिएगा, शायद आपका नज़रिया बदल जाए दुनिया को देखने का।

दोस्तों, हम जिंदगी में ना बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे नई जगह, नई चीजें, नए अनुभव। लेकिन कभी कभी नया देखने के लिए ना जगह जाने की जरूरत नहीं होती है, यानी उस जगह जाने की जरूरत नहीं होती है, बस पुरानी किसी चीज को नई नजर से देखने भर की जरूरत होती है। जैसे कि एक ही सड़क हो जिस सड़क पर आप रोज जाते हैं, चलते हैं, एक ही घर जिस घर में आप रहते हैं, एक ही पेड़ जो ठीक आपके घर के सामने है, एक ही रास्ता जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। लेकिन बस नजर बदल जाए तो वही दुनिया थोड़ी अलग लगने लगती है।

तो दोस्तों, आज जब आप अपनी रोज की जिंदगी में निकले ना, तो सिर्फ रास्ते से मत गुजरिएगा, रास्ते को देखिएगा, उसे महसूस कीजिएगा। सिर्फ घड़ी को मत देखिएगा, समय को महसूस कीजिएगा। सिर्फ खिड़की मत खोलिएगा, बाहर की दुनिया को देखिएगा और उसे भी महसूस कीजिएगा। और सिर्फ लोगों के बीच से मत गुजरिएगा, कभी उनकी मुस्कान को भी नोटिस कीजिएगा। क्योंकि जिंदगी में ना बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सामने रोज होता है, लेकिन हमारी नजर वहां तक पहुंचती ही नहीं। मैं हूं आपकी दोस्त, और आज की इस सुबह का छोटा सा संदेश बस इतना कि कभी कभी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती है, उसे देखने का अपना तरीका बदलना होता है। बस इसी खूबसूरत सोच के साथ आपकी सुबह खूबसूरत हो, आपका दिन शानदार हो। और आज कम से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर कीजिएगा, दिखाइए, ज़रूर दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी सच में देखा ही नहीं था। और बस इसी आशा के साथ आपसे विदा जाती है आपकी ये दोस्त। आप अपना ध्यान रखिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और स्वच्छता रखिए। जल्दी आपसे मिलने का वादा लिए इजाज़त चाहती है आपकी ये दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकस को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।

0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3 रुपए 89 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि

0: वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई।

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं ताकि इक्तिसादी और दिफाई इश्तराक बढ़ाया जा सके। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिज़ाइल निज़ाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुँच गई है जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शकर अलॉट करने का निज़ाम शुरू करेगी ताकि मार्केट में शकर की बरवक दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बाला सरकास को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। ये वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान का 4था दौरा होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्त की सतह की बातचीत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा ताशकंद में दो तरफा अहमियत के हामिल मामलात के पूरे मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। भारत उज़्बेकिस्तान के 10 सरकर्दा तजारती शराकतदारों में शामिल हैं जिसकी दो तरफा तजारत तकरीबन $1 अरब है और ये गुज़श्ता चंद बरसों में तजारत में कई गुना इजाफे का नतीजा है। मेडिकल कानकनी और दिफा अहम शोबे हैं जिनमें बाहमी ताउन के बहुत से इम्कान मौजूद हैं। दिफा के शोबे में भारत का उज़्बेकिस्तान के साथ देरीना और कसीर जेती इश्तराक है। साल 2019 में दिफा से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया गया था। भारत और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकों दोस्तलिक में हिस्सा लेते रहे हैं और इस सिलसिले की 7वीं मशक इस साल अप्रैल में उज़्बेकिस्तान में हुई थी। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म मोदी का दौरा बहुत अहम है और तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और कारोबारी साझेदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की बुनियाद उस्तवार होगी। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उज़्बेकिस्तान में भारतीय सफ़ीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेज़ी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
2: Despite connectivity bottlenecks, India और उज़्बेकिस्तान natural markets हैं। हम ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं। हम equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, इसको हम export कर सकते हैं। हम उनसे ज़्यादा import भी कर सकते हैं। बस ये resource rich nation है। Stumbling block जो है वो है connectivity। तो इसको लेके दोनों leaders बात करेंगे, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।
0: मोहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिज़ाइल निज़ाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिज़ाइल निज़ाम का बाज़ाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत में अमरीकी सिफारतखाने और कौंसिल खाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फ़ौज ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिज़ाइल निज़ाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि अमरीका भारतीय फ़ौज के इस कदम का खैर मकदम करता है। भारत में अमरीका के सफ़ीर सर्गियो गौर ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय फ़ौज के लिए अमरीका की मदद की मजबूती का इजहार होता है और इससे दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के लिए मिलकर काम करने के नए मौके पैदा होंगे। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 101 अफराद जेर इलाज हैं। इसके अलावा जो 1924 अफराद लापता हैं उनमें पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले अहलकार, गैर मुल्की शहरी, सिविलियन अफराद और सिक्योरिटी और सरकारी अहलकार शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले 933 अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि 517 गैर मुल्की शहरियों से अब तक राबता कायम नहीं हो सका है। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जी शंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध के रोज अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की खबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिए के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शकर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शकर की खातिरख्वाह दस्तियाबी के लिए तमाम जरूरी इकदामात किए जाएंगे। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा कि हालिया दिनों में शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली शकर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शकर की खुर्दा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो गई है। वजारत ने बताया कि उसने शकर की खातिरख्वाह दस्तियाबी और घरेलू मंडी में उसकी सप्लाई की मस्नूई कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदामात किए हैं। हुकूमत मुल्क भर में शकर की कीमत, जखीरे और नकलो हरकत पर करीबी नजर रख रही है। हुकूमत ने अगले महीने से हर 15 दिन पर शकर अलॉट किए जाने के निज़ाम को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस तरह मौजूदा माहाना कोटा निज़ाम खत्म हो जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शकर बर वक्त मार्केट में पहुंच सके। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत विकसित पंजाब के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। उन्होंने पंजाब के किसानों को यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत उनके मफादात के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अमृतसर जिले में रखड़ पूनिया प्रोग्राम के दौरान बाबा बकाला के मकाम पर किसानों और दीगर से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि किसी भी मुल्क के साथ तय पाने वाले हर मुआहदे में उनकी फलाह बहबूद को अव्वलियत दी जाएगी। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में पंजाब को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 8,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मरकजी इमदाद मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी योजना के तहत इस साल 1,341 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं।
3: वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो उसमें किसानों को अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको ये संदेश देने आया हूँ, नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए।
0: दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में CNG की कीमत में 3.89 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। इस तरह कौमी राजधानी में अब CNG की कीमत 86.98 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। नई कीमत का इतलाक आज सुबह से हो गया है। NTA ने 84 मजामीन के लिए UGC कौमी अहलियत इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 4,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इधर इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने इस साल जून में अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए फिर से इम्तिहान का हुक्म दिया है, क्योंकि माहिरीन की एक कमेटी ने सवाल नामों में हकायक, टाइपिंग, तर्जुमे और ज़बान से मुतालिक गलतियों का पता लगाया था। ये दोबारा इम्तिहान 9 और 10 सितम्बर को होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई इजाफी फीस नहीं देना होगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरैनी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुस्तकबिल में सोने की कानकनी से मुतालिक प्रोजेक्टों के लिए कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस के साथ इश्तराक पर गौर करें। उन्होंने कर्नाटक के रायचूर ज़िले में हट्टी और UTI सोने की कानों के दौरे के दौरान

0: ये हिदायत दी। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और इसके जेर असर उड़ीसा में तेज बारिश का सिलसिला फिर शुरू होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने का इम्कान है, इसलिए माहीगीरों से कहा गया है कि वो समंदर में न जाएं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उड़ीसा में भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बालासोर, केवंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इतवार के लिए भी 6 जिलों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। इनमें भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज भी शामिल हैं। ओडिशा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने फाइनल में हंगरी के बालाज फरकास को 3-0 से हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। सेंथिल कुमार ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 18 और एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी INUNG को 3-0 से हराया था, जबकि सेमीफाइनल के सनसनीखेज मुकाबले में अपने हमवतन वीर चोटरानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। हॉकी इंडिया ने FIH खवातीन वर्ल्ड कप में तारीखी 5वां मकाम हासिल करने पर भारतीय खवातीन की हॉकी टीम के लिए 50 लाख रुपए के नकद अवार्ड का ऐलान किया है। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टलवीन में जुमेरात को 5वें और 6ठे मकाम के लिए खेले गए दर्जाबंदी के मैच में सलीमा टेटे की जेर कमान भारतीय टीम ने आलमी नंबर 5 जर्मनी की टीम को 1-3 से हराकर संगे मील हासिल किया। क्रिकेट में आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप में ग्रुप बी के एक मैच में श्रीलंका का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इधर कल रात खेले गए ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। 2026 के खवातीन एशिया कप के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुपों में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं। इस ग्रुप की दीगर टीमों में हांगकांग और थाईलैंड शामिल हैं। इधर ग्रुप बी श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब इमारात और इंडोनेशिया पर मुश्तमिल है। भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम कल थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच 5 सितंबर को होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नेपाल सैलाब से मुतालिक वजारत खारजा की मीडिया ब्रीफिंग को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, नेपाल में 320 भारतीय लापता, 21 को वतन वापस लाया गया। भारतीय इमदाद की तीसरी खेप नेपाल पहुंची। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, नेपाल में फिर सैलाब का खतरा, मजीद बांध टूटने का अंदेशा। अखबारात ने भारतीय फौज के जरिए अमरीकी जेवलिन टैंक शिकन मिसाइल खरीदे जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। जनधन योजना में यकसर तब्दीली लाने वाले रोल की वजीर आजम की सताइश, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है। इसके अलावा अखबारात ने मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की खबर को तस्वीरों के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई, ट्रंप का बयान, बरतानिया के फौजी अड्डे हमारे निशाने पर हैं, यूक्रेन को मिज़ाइलों की फराहमी पर रूस का सख्त इंतबाह।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं ताकि इक्तिसादी और दिफाई इश्तराक को बढ़ाया जा सके। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निज़ाम खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुँच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शकर अलॉट करने का निज़ाम शुरू करेगी ताकि मार्केट में शकर की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 17 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद में रोग की पहचान विषय पर विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में है एक विशेष गेस्ट। हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ और महर्षि आयुर्वेद अस्पताल के निदेशक लक्ष्मण श्रीवास्तव जी। नमस्कार और स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: नमस्कार शालिनी जी।
1: श्रोताओं, नाड़ी परीक्षण एक प्राचीन विधि है जिसका उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की पहचान के लिए किया जाता है। आज हम इस विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि नाड़ी परीक्षण होता क्या है, और अगर आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी देखिए, नाड़ी परीक्षण दुनिया का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टेक्निक है
1: जी,
2: जहां पे एक वैद्य, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक आयुर्वेदिक स्कॉलर 3 उंगलियों से आपकी रेडियल आर्टरी जो आपकी रिस्ट से थोड़ा सा नीचे होती है वहां पे अपनी 3 उंगलियां रख के आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसमें आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी ऑर्गन हेल्थ, आपका बैलेंस और आपके इम्बैलेंसेस, हर चीज का पता लग सकता है।
1: तो इसका इतिहास क्या है, कब से ये शुरुआत हुई इसकी?
2: देखिए, ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है, आयुर्वेद जो हमारे वेदों से ओरिजिनेट करता है, हमारे वेदों का जो ज्ञान है वो चेतना का ज्ञान है, और नाड़ी परीक्षा में हम चेतना एक व्यक्ति की मेजर करते हैं, और अलग अलग इसके लेवल्स होते हैं। कुछ वैद्य बहुत ऊपर के ही बता पाते हैं और कुछ वैद्य बहुत ही डीप, बल्कि आपको उस समय पे क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या सोच में आपका आ रहा है, क्या क्या चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, हर चीज बहुत आराम से रीड कर सकते हैं।
1: फिजिकल के साथ मेंटल रीडिंग्स भी पॉसिबल,
2: फिजिकल के साथ मेंटल और स्पिरिचुअल एज वेल।
1: तो ये नाड़ी परीक्षण जो होता है, इसमें जब चिकित्सक ये करता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखता है?
2: इसमें तो सबसे पहली चीज है कि हम जो शरीर के 3 बायोमार्कर्स जिसको कहते हैं, या हम इनको दोष कहते हैं, वात पित्त और कफ, इसको मेजर करते हैं। इसके साथ साथ जो भी, देखिए डायग्नोस्टिक ऐसी चीज है नाड़ी परीक्षा, इसको अलग कैसे है, क्योंकि जो चीज होने वाली है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो इम्बैलेंसेस आपके होने शुरू हो गए हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, कितने सिवियर हैं, और आपको और किस किस चीजों से के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ये हर चीज मेजर हो सकती है नाड़ी परीक्षा से
1: जी। और नाड़ी कितने प्रकार की होती है अगर हम इसे समझना चाहें तो?
2: देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो 3 नाड़ी हम रीड करते हैं, वात पित्त और कफ की, और उसके ही बीच के अलग अलग परम्यूटेशन और अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के, और फिर सब दोषास में भी जाते हैं, पूरा अंदर जाके जितने भी हम इसके कॉम्बिनेशन होते हैं उसको रीड करके जो बॉडी माइंड हेल्थ होती है उसका एक कंक्लूजन लेते हैं।
1: तो इसमें क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है? जैसे कोई आपके पास आया और वो अपनी नाड़ी का परीक्षण कराना चाहता है, तो किन चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं?
2: देखिए, आइडियली हमेशा खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने खा लिया तो नाड़ी में ये भी पता लगता है आपने खाना खाया है और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गया है, तो उससे नाड़ी के कुछ कुछ चीजें ढक जाती हैं। फॉर अ कंप्लीट एक्यूरेट रीडिंग खाली पेट रहना चाहिए, और जो वैद्य होता है उनको भी एट पीस में रहना चाहिए, जो पेशेंट होता है उनको भी एट पीस में रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस आंख बंद करके बैठना चाहिए।
1: तो लगभग कितना समय लगता है इस परीक्षण में?
2: देखिए, इसमें 30 सेकंड भी कह सकते हैं, 2 मिनट भी कह सकते हैं, अलग अलग वैद्यों का अलग अलग तरीका होता है। ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव एज वेल एज वेरी सब्जेक्टिव, ये ऐसी टेक्निक है जो इस दोनों को लेती है, क्योंकि टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों होता है, और जहां पे भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते।
1: लेकिन पता लगता है।

0: अगर सही चिकित्सक है, आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, तो वो सही बता सकता है कि इस समय आपके फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल भी आपने बताया, मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है,
1: बहुत चीजें पता लगती
0: जी। तो अन्य जो चिकित्सा प्रणाली है, जो मॉडर्न मेडिसिन हम कहते हैं, उससे इसको कैसे अलग आप समझते हैं और क्या इसमें भिन्नताएं हैं आपस में?
1: देखिए, सबसे पहली चीज ये है, ये नॉन इन्वेसिव, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम बाकी चीजें करते हैं, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, सारी चीजें करते हैं, वो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करता है, चाहे एक्सरे होती है चाहे इंजेक्शन होता है। इसमें क्या है, ये नॉन इन्वेसिव एंड नॉन इफेक्टिंग, इसमें बस तीन उंगलियां हैं और ये एक साइंस है, ये हम किसी को भी सिखा सकते हैं, जिसके पास भी आयुर्वेद का छोटा थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वो सीख सकते हैं। और दुनिया भर में महर्षि जी की जो संस्था है, उनने 9000 एलोपैथिक डॉक्टर्स को अराउंड द वर्ल्ड, हमने उनको नाड़ी का ज्ञान दिया है। तो आज एक इटालियन डॉक्टर जो शायद से 20 साल पहले आयुर्वेद को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था, आज वो अपने पेशेंट्स को नाड़ी देख के एक त्रिफला प्रिस्क्राइब कर रहा है या एक आयुर्वेदिक मेडिसिन और अपनी नॉर्मल मेडिसिन का एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसको मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई लक्ष्मण जी, कि कई बार ऐसा होता है हम अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन है वो अलग जा रही है, आयुर्वेद अलग जा रहा है, होम्योपैथी अलग जा रहा है, पर एक कंबाइंड इंटीग्रेशन में जब वो काम करे, तो आपने एलोपैथी डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया है तो वो दोनों चीजों को समझ सकते हैं
1: जी,
0: और नाड़ी को देखकर और डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखकर
1: जी
0: फिर एक ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ये बताइए कि किस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है, जैसे आपने बताया कि तीन उंगलियों से आप देखते हैं
1: जी,
0: पर इससे कैसे संकेत मिलते हैं आपको, कैसे पता चलता है?
1: देखिए, इसमें हम इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो एक लेवल में इसको कहते हैं सुपरफिशियल पल्स, जहाँ पे हम बहुत ही लाइट रखते हैं और उसमें हमें वात पित्त कफ का बारे में पता चलता है, फिर हम और डीप रखते हैं, फिर हमें उसके सब दोषास के बारे में पता चलता है, प्राण, समान, उदान, व्यान, अपान, ये सारे पता चलते हैं, फिर उसके और अंदर जाते हैं डीप, तो उसमें धातु हेल्थ के बारे में पता चलता है।
0: अच्छा।
1: और अंदर जाते हैं तो चेतना के बारे में पता चलता है, बहुत सारी इसमें बहुत सारे रेवलेशंस हैं जो हमारी बॉडी कम्युनिकेट करना चाहती है। तो मैं एक एनालॉजी देता हूँ कि अगर बादल गरजता है तो कोई एक आदिवासी को पता होगा कि अगर ऐसे गरज रहा है तो इतने मिनट में बारिश होने वाली, ये साउंड्स ऑफ नेचर है, ये वाइब्रेशन ऑफ नेचर है। ऐसी जो हमारी नाड़ी है वो वाइब्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस है, और इसको हम रीड करते हैं।
0: क्या सारी बीमारियों का पता चल सकता है और सभी को आप इसमें ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूड करते हैं, या कुछ बीमारियां हैं जो नहीं पता लग पाती है नाड़ी से?
1: देखिए, इसमें आपके जितने भी इम्बैलेंसेस हैं सबके बारे में पता लग जाता है। अब वो वैद्य जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे, उनके ऊपर है वो कितने एक्सपीरियंस हैं कि वो उन इम्बैलेंसेस को उस बीमारियों के साथ कोरिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इम्बैलेंसेस पता करना तो बहुत आसान है, बट उस इम्बैलेंसेस की वजह से क्या क्या डिजीज हो रही है और वो डिजीज किस प्रोग्रेशन में है, वो जानने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड वैद्य की जरूरत होती है।
0: अगर पता चल गया कि ये इम्बैलेंस है बॉडी का, नाड़ी परीक्षण हो गया, तो किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से आप उन दोषों को दूर करने की कोशिश करते हैं?
1: देखिए, क्या है, अब जैसे वात पित्त और कफ हमने बोला, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड और सुपरफिशियल बातें हैं, बट उसके वात के भी 5 पार्ट्स होते हैं।
0: अच्छा।
1: पित्त के भी 5 होते हैं, कफ के भी 5 होते हैं, फिर हमारे धातुज होते हैं, धातुज मतलब टिश्यूज हो जाते हैं।
0: तो ये पार्ट्स क्या क्या है?
1: तो अब जैसे हम वात की बात करें तो प्राणवाता होता है, उदानवाता होता है, समानवाता होता है, अपानवाता होता है और व्यानवाता होता है।
0: अच्छा।
1: ये 5 हो गए हमारे। अब सपोज प्राणवाता होता है, अब प्राणवाता में हम स्ट्रेस लेवल्स मेजर करते हैं, चेतना मेजर करते हैं, हम उनके मेंटल एबिलिटीज मेजर करते हैं। सो अगर प्राण में सपोज थोड़ा सा पित आ गया तो उसका मतलब क्या है, थोड़ा गुस्सा आ गया।
0: ओके,
1: राइट, छोटी छोटी चीजें हैं ये, मैं आपको बहुत सिंपली बता रहा हूँ। और प्राणवात में अगर वाता का ही एलिमेंट थोड़ा बढ़ गया, मतलब क्या होगा, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा, और प्राणवात में सपोज थोड़ा सा कफ आ गया, थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, मतलब तो ऐसे ही डिड्यूस करा जाता है और ये एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में पल्स डायग्नोसिस या नाड़ी परीक्षा नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जब ये करिकुलम बन रहे थे इसको बहुत ही सब्जेक्टिव वो दिया था, और जो हमारे

0: संहिताज हैं, उसमें चरक संहिता में बस एक श्लोक दिया है नाड़ी परीक्षा का।
1: अच्छा,
0: उसमें ये उसमें यही बताया कि जो रेडियल आर्टरी है उसमें आपकी पूरी बॉडी का पूरा ज्ञान बसा है, यही बताया, बट डिटेल्स नहीं बताई है।
1: तो कैसे सीखा जाता है?
0: तो इसमें क्या है, बहुत सारे हमारे, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटीज थी, बहुत सारे टेक्स्ट से हमारे जला दिए गए थे, हो गया था, तो रिटर्न में बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो परंपराएं आई हैं, जो लीनियजेस आए हैं ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑफ वेद, तो उनसे मतलब आगे आगे ये फैलता गया है। जैसे
1: तो
0: हमारा एक ओरल ट्रेडिशन से, मतलब एक पिता है, उन्होंने अपने शिष्यों को या अपने बेटों को सिखाया, उनने आगे सिखाया, तो कहीं कहीं फैमिलीज में ये प्रिजर्व थी। अब हमारे जो गुरु हैं महर्षि महेश योगी जी, वो खुद एक साइंटिस्ट थे और वो चाहते थे ये जो ज्ञान है इसको साइंस की तरह से ले, इसको मिस्टिसिज्म ना ले, क्योंकि मिस्टिसिज्म क्या है, वो हमेशा लिमिटेड रहती है और कहीं ना कहीं वो रिलीजन के साथ जुड़ जाती है। महर्षि जी चाहते थे ये साइंस है, ये वैदिक साइंस है हमारी, इसको हम किस तरह से पूरी दुनिया में ले जाएं। तो आप जानती होंगी एक बहुत ही हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं डॉक्टर त्रिगुना, पद्म भूषण पद्म विभूषण है, उनके साथ महर्षि जी ने बैठ के और 30 वैद्यों की टीम थी, पूरा इसको नाड़ी परीक्षा को पूरा सिस्टमेटाइज और उसको पूरा स्टैंडर्डाइज किया, जिससे आज कोई भी ये साइंस सीख सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है कि इसको कोशिश की जा रही है और इसे रिवाइव करने की भी कोशिश की जा रही है, पर जैसे युवा हैं और आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं उसकी तरफ लोगों का इतना ज्यादा रुख हो गया है कि लोग इस तरफ सोच ही नहीं रहे हैं, तो किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं, क्या आप अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर रहे हैं?
0: जी देखिये, हम तो 1986 से आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और 1986 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन बनी और लीगली हमने 6 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करा आयुर्वेद। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहली थी जिसने क्लिनिकल ट्रायल आयुर्वेद में किया, पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक क्लिनिकल ट्रायल योग आसन में और ध्यान में किया।
1: अच्छा।
0: और ये 1970s से शुरू हो गया था। सो इसमें क्या है, एक तो है साइंटिफिक बैकिंग, एक है क्वालिटी कंट्रोल, और एक है कि आयुर्वेद को सिंप्लीफाई करना, और इतना सिंप्लीफाई करना कि उसकी जो एसेंस है वो डाइल्यूट ना हो और लोगों तक पहुंचाना। तो ये हमारी संस्था है जो मेरे ख्याल से अभी 55 देशों में है और वो आयुर्वेद का ज्ञान, योग का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान हर जगह फैला रही है।
1: जी, और हम देख रहे हैं सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, जब से मिनिस्ट्री आयुष बनी है और इतने सारे प्रयास हो रहे हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
0: कुछ सालों से आयुर्वेद का ऐसा पुश हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: हमारी सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, और मोदी जी स्पेशली आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, उससे बहुत पुश मिला है, बहुत ही रिकग्निशन मिली है, इतने सारे अब क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं आयुर्वेद में। तो समय लगता है इसमें, बट बहुत जल्दी आप ये देखेंगे हमारी गट माइक्रोबायोम से लेके, लीकी गट सिंड्रोम से लेके, लिम्फैटिक सिस्टम, ग्लिम्फैटिक सिस्टम, ये सारी चीजें आयुर्वेद में लिखी हुई थी, बट आजकल ये इतने बड़े ट्रेंड्स बन गए हैं। बहुत मतलब हजारों करोड़ों की रिसर्चेस हो रही हैं इसमें हर साल, और धीरे धीरे हम सबको पता चलेगा जो आयुर्वेद कहता था वही है असली में, एंड साइंटिफिक रिसर्च इज येट टू कैच अप ऑन आयुर्वेद।
1: आयुर्वेद शुरू से यहाँ है, पर हमें सिर्फ उसकी सही पहचान करनी है और आगे बढ़ना है, और अब कदम बढ़ रहे हैं तो आगे मंजिल तक हम पहुंचेंगे। चलते चलते मैं चाहूंगी कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ, जहां पर आपको लगा कि आपने पहले से ही नाड़ी से पता लगा लिया और उसको फायदा हुआ।
0: देखिए, ऐसे तो हमारे हॉस्पिटल में तो रोज ही बहुत सारे केसेस होते हैं। मुझे याद है जब मैं खुद सीख रहा था
1: जी,
0: और मैं सारे लेवल जानता नहीं था, हमारे गुरु ये बताते थे अगर आप चेतना को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी पल्स, आपकी नाड़ी हमेशा और अच्छी होगी और डीप जाएगी। और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, हम लोग को बोलते थे कि लोग पकड़ो उनकी, देखो नाड़ी चेक करो क्या फील हो रहा है। और एक बार मैंने बस 3 उंगली रखी थी और मुझे उनके थॉट प्रोसेस सब कुछ आने लग गया, ये इस समय मैं ध्यान से उठा ही था और मैं किसी और की चेक कर रहा था, और मुझे ये पता चल गया कि इस बार उसने ध्यान नहीं किया, उसने बस आंख बंद करके बस बैठा हुआ था। मैंने कहा आपने ध्यान नहीं किया, आप आजकल कर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? और ये एकदम ऐसे थॉट आते हैं, तो ये बहुत बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं।

0: बहुत ही अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स और इम्बैलेंसेस, डिजीजेस. बहुत सारे लोग को पता है यार मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, बट क्या रीजन है? ये हम नाड़ी परीक्षा से देख सकते हैं कि रीजन ऑफ माय हेडेक, रीजन ऑफ माय प्रॉब्लम. रूट कॉज अगर पता नहीं होगा तो रूट कॉज तक जाएंगे कैसे
1: और फिर इलाज होगा कैसे?
0: बिल्कुल.
1: अच्छा लक्ष्मण जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी. एक निजी सा प्रश्न मन में आ रहा था, क्या आपने अपने में भी कोई ऐसा अनुभव किया, आपकी फैमिली में वाइफ के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके?
0: जी शालिनी जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मेरी वाइफ, एक दिन मैंने उनकी नाड़ी देखी और मुझे दो नाड़ियां दिखी, और उस समय हमने कुछ टेस्ट या कुछ करवाए नहीं थे, और फिर उसी समय पता चला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और कुछ समय बाद, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ समय बाद जब मैंने चेक की तो बच्चे तक की उनकी भी सारी क्वालिटीज नाड़ी में आ जाती है. तो जब कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो उनकी दो पल्स चलती है, एक खुद की और एक बीबी की.
1: बहुत सारी बातें नाड़ी से पता लग सकती हैं. ये हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची और इसको और समझना है, इसे और आगे तक लेके जाना है. और अगर हमें नाड़ी में कुछ ऐसा दिखता है तो किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम उस रोग को आने से रोक सकते हैं, ये भी एक बहुत जरूरी बात है.
0: जी, तो पहला तो है कि रूट कॉज पता हो जाए. जब हमें रूट कॉज पता चल गया तो उसके बाद वो रूट कॉज की क्या कॉज है, क्या हमने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा किया. क्योंकि देखिए, आप ये बोले आजकल हर एक चीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है. हमारे चाहे कैंसर बोलें, चाहे ब्लड प्रेशर बोलें, चाहे कितनी सारी चीजें, अब साइंस ये भी प्रूफ कर रही है कि कम से कम जेनेटिक और ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल इश्यूज हैं. तो एक बार पल्स से, नाड़ी से हमें रूट कॉज पता चल गया, फिर आयुर्वेदिक डाइट, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, रूटीन, पंचकर्म से हम वापस से अपना बैलेंस कैसे ला सकते हैं.
1: बहुत सारी जानकारी आज हमें पल्स डायग्नोसिस यानी नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद में रोग की पहचान विषय पर मिली. और हमारे साथ रहे लक्ष्मण श्रीवास्तव जी, आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और महर्षि आयुर्वेद अस्पताल के निदेशक हैं. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर यहाँ आए और इतनी विस्तृत जानकारी इस विषय पर हम तक और हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई है. बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए.
0: धन्यवाद शालिनी जी.
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत.
1: श्रोताओं, नेत्र दान को महादान भी कहा जाता है. नेत्र दान कर आप किसी को आंखों की रोशनी दे सकते हैं. हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो देख नहीं सकते, पर मरणोपरांत अपनी आंखें दान कर आप मरने के बाद भी अपनी आंखों से उनकी दुनिया को रोशन कर सकते हैं. नेत्रदान से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको पता चलेंगी इस बातचीत से. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डायरेक्टर और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बेरी से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल. प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है. हमें से बहुत लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना भी चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहां करें, ये जानकारी ना होने के अभाव से वो चाह कर भी नेत्रदान नहीं कर पाते हैं. लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे. जानकारी विस्तृत रूप से हमें देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में. हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बेरी. तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बेरी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका.
3: शुक्रिया.
1: तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले जाने कि ये जो नेत्र दान होता है, आई डोनेशन होता है, क्या है एक्चुअली?
3: आई डोनेशन का मतलब है कि जो हम मरणोपरांत आंख का डोनेट करते हैं, जो कि हमारी आंख जो बनी हुई है उसका सिर्फ अगला हिस्सा, जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, यही लिया जाता है और इसी का इलाज होता है आई डोनेशन से. हम ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो आंख के रेटिना, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं, वो आई डोनेशन से ठीक नहीं होती हैं, परंतु हमें आगे का जो हिस्सा है, जो सारे एटमोस्फेयर में भी होता है, उसी में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अल्सर हो गया, इवन विटामिन ए डेफिशिएंसी, चोट लग गई, उसके कारण इसमें जब ओपेसिटी आ जाती है तो बिल्कुल दिखना कम या बंद हो जाता है. दोनों आंखें इन्वॉल्व हो जाए तो अंधापन आ जाता है. उसके इलाज आई डोनेशन से हो सकता है. कुछ एक जमांद्रू बीमारियां भी होती हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं बच्चे. और भी जैसे है कि कई बार जब सफेद मोतिया का ऑपरेशन होता है उसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसके कारण हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है. कुछ लोगों को काला मोतिया इतना ज्यादा हो जाता है कि जो आगे की परत कॉर्निया है उसमें खराबी आ जाती है.
1: तो इन सब जो बीमारियों को जो आपने बताया जो कि कॉर्निया की हो सकती हैं, उसमें आई डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताइए.
3: जैसे मैंने बताया है कि आगे का जो

0: खांचा है उसमें अगर सफेदी आ जाएगी तो जो हमारी आगे की रेज हैं वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ये जो कंचा है ये जब मरने उपरांत यही कंचा निकाल के बदला जा सकता है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जो हमारी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेज है वो अब अंदर जा सकेंगे आंख के अंदर, तो आगे का कॉर्निया बदला जाएगा और उसमें हम देख पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेत्रदान करना, क्यों जरूरी है, पर कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े होते हैं।
0: ये मिथ्स बिल्कुल हमें खत्म करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डोनेशन में मिथ्स ही है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में उनकी आंख शायद ना हो, ये तो बिल्कुल गलत है। सब कुछ आपको मालूम ही है, जल जाता है या दफनाया जाता है तो आंखें तो चली ही जाती है, परंतु जो आप इतना नेक काम करके जाएंगे आपके अगले जन्म में जरूर फलित होगा। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा है कि इसमें शरीर के ऊपर कुछ भी कोई विकार कुछ नहीं आता है। जब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकाला जाता है तो आप समझ जाएंगे, तो बिल्कुल कोई विकार नहीं आता है और बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इसका जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ फोन करना है, कैसे बुलाना है।
1: जी,
0: इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपना ही डोनर फॉर्म भर के अपने रिलेटिव्स और आई बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये आपकी विश थी, ये आप चाहते थे कि आप अपने आईज डोनेट करें, और आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार वो ही इसका फॉर्म भर के आपकी आईज डोनेट कर सकते हैं। जो भी आई बैंक आपके पास में है कहीं पे भी भारत में, वहां पर अगर आपने कार्ड दिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे रखी है, तो वो आके आपका आंख का दान ले लेंगे।
1: अगर वो करना चाहता है, हो सकता है उसने डिस्कस किया हो कोई भी कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूं पर फॉर्मली वो फॉर्म भरकर नहीं कर पाया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो क्या सिर्फ फैमिली के कंसेंट से हो सकता है?
0: बिल्कुल, फैमिली ही कंसेंट देती है, वो ही साइन करती है कि हमें डोनेट करना है।
1: अच्छा, तो ये हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है।
1: जी, तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे वर्ग भी हो सकता है जो नहीं कर सकता है? कुछ ऐसा कारण बन सकता है कि कोई नेत्रदान चाहे पर कर ना सके?
0: कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण डेथ हुई होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, HIV, रेबीज, और कुछ ऐसे दिमागी के वायरस होते हैं जो कि नेत्रदान वो वाला कॉर्निया जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, तो डोनर में आ सकता है। सिमिलरली आंख की जो कोई कैंसर होता है या वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम वो बहुत कम होती हैं, तो मेरी राय में सभी को नेत्रदान करना चाहिए। ये जिसको नहीं करना है वो डॉक्टर जब उसको प्रोसेस करते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं।
1: अच्छा, तो ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है?
0: शालिनी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि क्या करें आप डोनेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक फोन नंबर आई बैंक का आपके पास होना चाहिए, और आपके नजदीकी रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं भी जाहिर की है तो भी रिश्तेदार की अगर इच्छा है तो भी ये हो सकता है। वो फोन करेंगे और जैसे ही फोन करेंगे तो टीम पूरी आ जाती है। इस दौरान आप जो शरीर है उसके आंखें बंद कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, AC को ऑन रहने दीजिएगा।
1: अच्छा।
0: उसके ऊपर गीली साफ कॉटन दोनों आंखों पे रख दीजिएगा और थोड़ा सा एक पिलो थोड़ा सा सिर को ऊपर करके रखिएगा, और 6 और 8 घंटे के बीच में ये टीम विद इन टाइम अंतराल में आ जानी चाहिए, और उसको जो कॉर्निया और थोड़ा सा 3 से 4 मिलीमीटर स्क्लेरा उसको ले लेती है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और उसके अंदर पर एक कैप लगा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये डोनेट हो गया है, और जब डॉक्टर की टीम आती है तो सबसे पहले वो अपने नजदीकी रिश्तेदार से एक फॉर्म साइन करवाती है कि हम डोनेट करने के लिए राजी हैं। दूसरा एक देखते हैं कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट और किस कारण डेथ हुई है। तीसरा वो ले लेती है कॉर्निया, और फिर उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, अबाउट 10 ml सैंपल लेके जाते हैं, जिससे ये जो मैंने बताया है वायरल मार्कर्स के लिए, क्योंकि ये वायरल मार्कर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी वो कॉर्निया रिसर्च पर्पज के लिए यूज हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए डोनेट करना हर एक के बस में है और करना भी चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि रिसर्च भी बहुत जरूरी है, और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो कई बीमारियां जो है उससे संबंधित उसका हल हमें नहीं मिलेगा। ब्रेन डेड को कहा जाता है कि वो आई डोनेट कर सकते हैं या कोई डेड हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग, लिवर, ये सिर्फ जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर संचार है, तभी हो सकता है। तो वो ब्रेन डेड जो होता है उसको अपनी कोई

0: सुध-बुध नहीं रहती है, वो शरीर से निकलने वाली है आत्मा, परंतु उसी स्टेट पे ये ऑर्गन्स हैं डोनेट हो सकते हैं। जैसे मैंने फिर बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। परंतु जैसे आंख है, त्वचा है, बोन्स हैं, ये मृत शरीर से भी निकाल के डोनेट हो सकती हैं। इसलिए इनका डोनेशन सिंपल है, आसान है और जागरूकता फैलने की जरूरत है।
1: ये भी जानना चाहूंगी कि जो आप बता रही हैं, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, इसकी सक्सेस रेट क्या होती है?
0: जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो जो हमारा कॉर्निया होता है, जो आगे का कंचा हम समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो जैसे हम कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो रिजेक्शन हो जाती है अगर हम एक दूसरे आदमी का लगाते हैं, तो
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि
1: जी
0: रिजेक्शन ना हो।
1: जी
0: ये रिजेक्शन कॉर्निया में नहीं होती, इतनी आम नहीं है, फिर भी इसमें रिएक्शन जरूर होते हैं। तो 1 साल तक ये रिएक्शन ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मरीज को बार बार आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो यूजुअली 1-2 साल तक उनको आंख के डॉक्टर के पास जाते रहना होता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाद में भी चश्मा भी लग जाता है, परंतु निगाह काफी अच्छी आ जाती है, नियरली 80% सक्सेस रेट हो जाता है।
1: जी, जैसा आपने बताया कि आईज निकाल ली है, कॉर्निया निकाल कर कितनी देर तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं?
0: ये जो कॉर्निया निकाल के जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं, तो हम उसको 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं,
1: 3 दिन तक उसको इस्तेमाल किया
0: इस्तेमाल
1: जा
0: किया
1: सकता
0: जा
1: है।
0: सकता है आजकल रिसर्च के दौरान, और लंबा लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, पर इंडिया में हम 3 दिन ही रखते
1: जी
0: हैं। उसके अंदर ही आई बैंक डॉक्टर्स और रजिस्ट्रेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको बुला के उसको टिश्यू को दे दिया जाता है।
1: जी तो 1 पर्सन अगर अपनी आई डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है?
0: 1 पर्सन अगर करता है तो मिनिमम 2 लोगों को फायदा है, क्योंकि एक आंख एक को जाएगी। पर हमारे पास ऐसे भी है कि कुछ आंखें 8 लोगों तक भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कॉर्निया के भी अब बड़े हिस्से हो गए हैं, जिसको एंडोथीलियम, डेस्मेंड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एपिथीलियम, और इवन कॉर्निया के कंजंक्टाइवा के साथ वाले कंजंक्टाइवल टिश्यू भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि ये कॉर्निया कितनों को लग सकता है। 2 को तो
1: अच्छा
0: मिनिमम लग ही सकता है, और ज्यादा को भी लग सकता
1: तो
0: है,
1: बहुत सारे लोगों को
0: बहुत सारे लोगों को,
1: आप लाभ पहुंचा सकते
0: और बहुत
1: हैं।
0: तरह की बीमारियों को
1: जी
0: हेल्प कर
1: बिल्कुल
0: सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: और साथ में रिसर्च भी आपने बोला कि
0: रिसर्च भी
1: उसके
0: कर
1: लिए भी
0: सकते
1: इस्तेमाल
0: हैं।
1: किया जा सकता है। और आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। आप क्या कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते हमारे आकाशवाणी के माध्यम से कि किस तरह से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस अ सक्सेस?
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कम्युनिटी का ही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने जो मृतक हो गए हैं, एक तो ग्रीफ उस वक्त बहुत ज्यादा होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के अगर आपके पास आई बैंक को फोन कर दिया जाए तो ये सब बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो पहले भी इसकी चर्चा फैमिली में होनी चाहिए, ताकि सबको मालूम हो कि हम ये चाहते हैं और ये आई बैंक के नंबर्स हैं। इसको ये नहीं सोचना है कि कई लोग सोचते हैं कि हम मरने की बात ना करें, ऐसा नहीं है। आप अपना जैसे विल लिखते हैं, इसी तरह से आप अपने दान का भी सबको बताएं, सब एक फॉर्म जो है वो खुद भी रखें, बैंक में भी दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक प्लान करे तरीके से चले। बाकी जो अस्पताल में लोग होते हैं, वहां पे हमारे पास ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, वो आपको भी बताते रहते हैं कि भी देखो ऐसा हो गया है, तो आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए फायदा रहेगा। और जब इस जैसे पखवाड़ा हो रहा है, इसमें जो उन्होंने डोनेट किया होता है उन फैमिलीज को फेलिसिटेट भी किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बुला
1: जी
0: के, तो
1: जी
0: ये भी एक आई बैंक का जरूरी काम होता है, और आई डॉक्टर्स भी, तो थोड़ा उत्साह मिलता है।
1: आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नेत्रदान पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता बेरी को, आप यहां आए और समय निकाला और इतनी जानकारी आपने पहुंचाई। नेत्रदान महादान, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बेरी से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे अगस्त माह से जुड़े भारत के उन अमर वैज्ञानिकों को और जानेंगे उनकी गौरवशाली यात्रा को, जिसने रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि विज्ञान और खगोल विज्ञान

रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रारोली काटीपाड़ा गांव में हुआ। एडिनबरा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित होप प्राइज जीता। भारत लौटकर 1895 में उन्होंने स्थिर मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। वर्ष 1901 में उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जिसे भारत की पहली आधुनिक दवा कंपनी माना गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइट बैचलर की उपाधि और एडिनबरा विश्वविद्यालय का फैराडे गोल्ड मेडल प्रदान किया। साथ ही उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन 16 जून 1944 को हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कृषि व भू विज्ञान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। उनका जन्म 2 अगस्त 1878 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास हुआ। उन्होंने ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता पर बल दिया और लगभग 30 डिजाइन प्रस्तुत किए, जो बाद में संशोधित होकर आज के तिरंगे का आधार बना। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। इसके बाद 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन शुरू किया। अंततः 15 अगस्त 1969 को उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की नींव रखी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण और मृत्यु उपरांत 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 30 दिसंबर 1971 को हुआ। उनके निधन के बाद 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में गया, जो उनके सपने का साकार रूप था। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। 1960 के दशक में उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में गेहूं की उन्नत किस्मों को अपनाया, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। उन्हें वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जो कृषि जगत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मान माना जाता है। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर भारत के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। उनका जन्म 6 अगस्त 1930 को कोलकाता में हुआ। वर्ष 1977 में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल नामक एक बिल्कुल नए प्रकार के द्रव क्रिस्टल की खोज की, जो आज LCD डिस्प्ले जैसी तकनीकों की बुनियाद है। वर्ष 1994 में उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल मेडल मिला और 1998 में यूनेस्को का नील्स बोहर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक तथा रूसी लिक्विड क्रिस्टल सोसाइटी का फ्रेडरिक्ज मेडल भी मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 8 मार्च 2004 को हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं NA नरसिम्हम। NA नरसिम्हम भारत के प्रमुख भौतिकविद थे। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वर्णक्रम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 15 अगस्त 1922 को उड़ीसा में हुआ। उन्होंने आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर गहन शोध किया। उनका शोध मुख्यतः अणुओं की संरचना को समझने और विभिन्न गैसों के अवशोषण स्पेक्ट्रम के विश्लेषण पर केंद्रित था, जिसने वायुमंडलीय और खगोलीय भौतिकी की समझ को भी समृद्ध किया। उनका निधन 8 अप्रैल 2002 को हुआ। अगले वैज्ञानिक है परमनाथ भादुड़ी। परमनाथ भादुड़ी भारत के एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 21 अगस्त 1908 को कोलकाता में हुआ। वे पादप कोशिका अनुवांशिकी और राइजोबियम जीवाणु के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उनके शोध ने भारतीय किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक तरीकों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में मार्ग दिखाया। उनकी यह खोज कृषि विज्ञान में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की समझ और जैव उर्वरकों के विकास में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उनका निधन 31 दिसंबर 1992 को हुआ। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर MGK मेनन। डॉक्टर MGK मेनन का जन्म 28 अगस्त 1928 को मंगलोर में हुआ। कणिका भौतिकी में

0: अग्रणी शोध करने वाले मेनन को कोलार गोल्ड फील्ड्स में हुए कॉस्मिक किरण प्रयोगों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वे इसरो के दूसरे अध्यक्ष और डीआरडीओ के महानिदेशक भी रहे। उन्हें वर्ष 1970 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे वर्ष 1988 से 1993 तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2008 में उनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह नाम 7564 गोकु मेनन रखा गया। 22 नवंबर 2016 को 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब जानेंगे अगस्त में निधन को प्राप्त प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर आधुनिक खगोल भौतिकी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। 1983 में उन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे लगभग दो दशक तक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के प्रधान संपादक रहे और शिकागो विश्वविद्यालय में 50 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट प्रदान करने में मार्गदर्शन दिया। 21 अगस्त 1995 को शिकागो में हृदयाघात से उनका निधन हुआ। उनके सम्मान में नासा के एक्सरे टेलीस्कोप का नाम चंद्रा एक्सरे वेधशाला रखा गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर यल्ला प्रगड़ा सुब्बाराव। डॉक्टर सुब्बाराव का जन्म आंध्र प्रदेश के भीमाराव में हुआ था। हार्वर्ड में शोध के दौरान उन्होंने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की भूमिका स्पष्ट की तथा फिस्क सुब्बाराव पद्धति विकसित की। उन्होंने फोलिक एसिड के संश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभाई और मेथोट्रेस्टेक दवा विकसित की। यह दवा बचपन के ल्यूकेमिया के इलाज में पहली प्रभावी कीमोथेरेपी दवाओं में से एक है और आज भी विश्व भर में कैंसर उपचार में उपयोग होती है। 8 अगस्त 1948 को न्यूयॉर्क में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शिशिर कुमार मित्रा। डॉक्टर शिशिर कुमार मित्रा एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उनका जन्म 1890 में कोलकाता के पास कुन्नागर में हुआ था। उन्होंने आयन मंडल पर विश्व प्रसिद्ध शोध किया जो रेडियो तरंगों के लंबी दूरी के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें 1958 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1938 में ब्रिटिश सरकार ने MBE की उपाधि दी और 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 13 अगस्त 1963 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। 2019 में इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर उनके नाम पर बने मित्रा क्रेटर की तस्वीरें भेजी। यह किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए दुर्लभ अंतरिक्ष सम्मान है। अगले वैज्ञानिक हैं पुष्पा मित्रा भार्गव। डॉक्टर पुष्पा मित्रा भार्गव भारत के सर्वोत्कृष्ट जीव विज्ञानी थे। उनका जन्म 1928 में अजमेर में हुआ। उन्होंने हैदराबाद में सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्थापना की। उन्होंने आणविक जीव विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गिरीश साहनी। डॉक्टर गिरीश साहनी भारत के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी विद और विज्ञान प्रशासक थे। साहनी का शोध मुख्य रूप से हृदय संबंधी जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। उन्हें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज के विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह एक जीवन रक्षक दवा है जो हृदयाघात के दौरान रक्त के थक्कों को घोलने में इस्तेमाल होती है। स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा के विकास से भारत विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहा और यह जीवन रक्षक दवा हृदय रोगियों के लिए बहुत सस्ती हो गई। 19 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।
1: आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं? इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज

0: पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3,000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है बहुत मुश्किल है, और केवल एटीजीसी से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है, तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता
0: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर? हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर, जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे हैं?
0: देखिए, 2 तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो हैं फैमिली में ही हैं, जैसे कि
1: आनुवंशिक जो
0: आपने
1: होते
0: रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके
1: जी
0: एक इनहेरिटेड डिजीज है, जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता
1: जी
0: है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन
1: जी जी
0: सीक्वेंस है, इन
1: जी
0: 3ों बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो
1: जी
0: जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं। श्रोताओं, सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्व

0: महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वो उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभागियों के पोषण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has left for his 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev.

0: ड्रग से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: Hey girls! Hey, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब श्रोताओ, मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। जी हाँ, लेकर आई हूँ हर बार की तरह बहुत अच्छे अच्छे गीत और संगीत, साथ ही करेंगे ढेर सारी बातें। तो आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिस पर हम आपकी पसंद के ही गीत आपको सुनवाते हैं, लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गीत चुन चुन कर। तो भाई तैयार हो जाएं और कहें ना कि भाई अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें, और अब इस सफ़र में जो सुहाना सफ़र पूरा होने वाला है, पूरी 11 बजे तक इसमें हमारा साथ दें, और अपनी जो हमारी हमारी जो सवारियां हैं, आप सभी आप हमारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत सारी बातें, लेकिन हाँ, एक होगा थोड़ा सा विषय ऐसा जिस पर हमें चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें कभी आसान लगती हैं, वही चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी बन जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरटेनमेंट होता है वो हमारे रिश्तों की, कहते ना कि बलि देकर भी या उसकी कुर्बानी देकर भी हमें मिलता है, या कोई भी चीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बताएं, मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई, अब ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। हुआ ये कि जैसे आज सुबह मैं चाय, वैसे तो मैं रोज़ सोचती हूँ जब सुबह चाय पीने बैठती हूँ, तो चाय की चुस्कियों के साथ साथ ये सब हम सबका रूटीन है, शायद आप भी ऐसे करते होंगे। फ़ोन लेते हैं, सबसे पहले व्हाट्सअप खोलेंगे, फिर देखेंगे अच्छा किस किस का गुड मॉर्निंग आया, सबको विश किया, कम से कम मेरी स्क्रीन पर भी 50 से 60 गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं। लेकिन मेरे दिल ने पूछा कि इनमें से कितनों से मैंने असल में रुक कर उनका हाल चाल पूछा, या ऐसे कितने हमारे जो साथी हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ने मुझे सुप्रभात गुड मॉर्निंग के संदेश आए हैं, इनसे कितने दिन पहले मैंने बात की, कितना ज़माना हो गया था जब मैं सोचने लगी कि कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनसे मैंने सालों से बात नहीं की थी, सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज एक्सचेंज हो जाता था। तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में आया कि भाई कनेक्टिविटी तो बहुत तेज़ हो गई, लेकिन रिश्ते थोड़े फीके पड़ गए। 5G के इस दौर में जो इंटरनेट बहुत स्पीड से काम कर रहा है, इस इंटरनेट की स्पीड के साथ साथ हमारे रिश्ते उतने ही धूमिल होते जा रहे हैं, और इन रिश्तों की कनेक्टिविटी को कैसे तेज़ किया जाए, आज यही हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अपनों से जो हमारा कनेक्शन है, क्या वो 5G इंटरनेट के ज़माने की तरह ही उतना मजबूत है? तो कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे रिश्तों के मायने बदल दिए हैं, जुड़े रहिए, इस पर ही हम बात करेंगे। और आपसे भी, जैसे हमने कहा, पूछ लिया हमने सवाल कि कनेक्टिविटी के इस दौर में नेटवर्क तो 5G हो गया, पर क्या रिश्ते इतने मजबूत हो पाए, इतने कनेक्ट हो पाए? अब इसी पर आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल ID है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, और अगला गीत देखिए।

क्या अब्बू जो भैया के घर जाने की या नाना नानी जी के घर जाने की हमें रहती थी जल्दी या एक करेज, वो अब भी है बच्चों में? क्योंकि अब तो हम देखते हैं इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए राखी मनाई जाती है।

हाँ, आजकल रिश्ते इतने ही उलझ गए हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेट या यूं कहें कि इस आभासी दुनिया में कदम पड़े हैं, तो हमें लगता है कि इससे सुहानी दुनिया कोई नहीं है और उसी को अपना संसार समझ बैठे हैं। लेकिन असल में जो हमारी हकीकत में जो हमारे रिश्ते हैं, उनको सुहाना, उनको संवारना, उनके साथ सौहार्द बनाना, ये सब शायद हम भूलते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम शायद वो रिश्तों की कदर करना

नहीं सिखा पा रहे। कहते हैं ना जेन अल्फा जेन जी आजकल बहुत चला हुआ है, लेकिन उनको आगे कहते हैं ना कि उनके अंदर जो इनकलकेट करनी है अच्छी हैबिट्स, जो उनको अच्छी आदतें सिखानी है, वो भी तो हमारा ही कर्तव्य है। कौन सिखाएगा उसे, आप बताएं ना। फिर हम हमेशा जेन जी और जेन जो अल्फा है उसे ब्लेम करते रहेंगे, खुद ही हम इन सब चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं। यूं कहें कि बस एक हल्की सी धुंधली सी जो परत है हमारे रिश्तों पर इस डिजिटल युग ने डाल दी है, सबके मुंह पर या सबकी आंखों में बुद्धि पे पर्दा डाल दिया है। जो बड़े कहते हैं ना तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है, तो वो ही वाली बात है कि हमें अच्छे और बुरे का फर्क इस आभासी दुनिया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि हम समझ ही नहीं पाते कि रियल और आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनको हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले शो शुरू होने दीजिए, तो फिर आप अपने संदेश भेजें। और जैसे कि आज हमने आपसे जो विषय पूछा है, जो अभी थोड़ी देर में पूछूंगी आपसे, उससे संबंधित जो संदेश आएंगे उन्हीं में कार्यक्रम में शामिल करूंगी। और मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोताओं ने इतने सारे संदेश भेज दिए हैं, और मैं अगर शामिल नहीं कर पाऊंगी, प्रोग्राम से जुड़ा नहीं होगा, तो फिर उन्हें शिकायत हो जाती है। तो साथियों प्लीज आप एक बार फिर से सुन लें, जो अब दोबारा से मैं एक चीज पूछूंगी आपसे सवाल, उसको उसके जरिए आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमें ये नहीं लगेगा कि आप भी सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहे हैं संदेश भेजकर। तो वेलकम बैक एक बार फिर से, और नाराजगी जो नाराजगी है वो बिल्कुल दिल से निकाल दीजिएगा, अच्छे मूड के साथ अच्छे अच्छे संदेश हमें विषय से संबंधित जरूर भेजिएगा। आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी अपनी दोस्त सुषमा के साथ। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल युग और हमारे रिश्तों की। सच बताइए आखिरी बार कब आपने किसी अपने पुराने दोस्त से बिना किसी काम के बस यूं ही आधे घंटे या एक घंटे बात कर ली। भई अब तो हैप्पी बर्थडे भी इंस्टा स्टोरी पर ही सिमट कर रह गए हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, फेसबुक पे कुछ वीडियो या फिर कुछ रील्स बना के डाल देते हैं। और प्यार का जो बड़े बड़े जो हम लेटर्स लिखते थे उसका अब रिप्लेसमेंट ये हो गया कि प्यार में टेक्स्टिंग ने लेटर की जगह ले ली है। और फैमिली डिनर पर अब सब खाने से पहले फ़ोटो खींचने और नोटिफिकेशन चेक करने में बिजी रहते हैं। मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स भी इकट्ठा होते हैं ना, बस थोड़ी सी बात की कुछ नहीं, पहले इतनी मस्ती करते थे, डांस कर लेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन अब सब पता है अपने अपने व्हाट्सएप पर चैट करना शुरू कर देंगे, कोई रील देखने लग जाएगा। सच में मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना बुरा लगता है कि क्या बड़ी मुश्किल से तो मिले हैं, उसके बाद भी सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। तो आज का जो सवाल है दोस्तों वो यही है कि मुझे आप ज़रूर लिखकर भेजें, टेक्नोलॉजी ने आपके किसी रिश्ते को अगर बदला है तो कैसे बदला, कुछ अच्छा हुआ या कुछ दूरी बढ़ी, तो हमें ज़रूर अपना संदेश मेल के ज़रिए भेजें, IP Radio Delhi@gmail.com।

तो दोस्तों हम बात करें कि 5G नेटवर्क तो बहुत तेजी से काम करता है। इस नेटवर्क के साथ साथ क्या हमारे रिश्ते भी उतने ही ज्यादा मजबूत हुए या रिश्तों में किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बहुत सारे संदेश हमारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम देख रहे हैं आ चुके हैं और ये हमारे साथी हैं सुदर्शन मुखी। इन्होंने अपने साथी अनीता और सिमरन मुखी के साथ ये संदेश भेजा शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सुषमा, ना कि शोभा। मैं हूं सुषमा शर्मा और दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद और ये लिखते हैं कि मोबाइल के कारण फेस टू फेस मिलना जुलना बहुत कम हो गया है, वो रिश्ते और प्यार नहीं रहा है। ये हमारे श्रोताओं का कहना है और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक मिलने से गर्माहट रहती है रिश्तों में, जो हमें अपनापन लगता है, वो शायद कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और अगले हमारे साथी हैं, ये हैं शमशुल कमर राही गंज डुंडवारा से। ये लिखते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में नए नए उपकरण क्या आए, जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। एक वक्त था घर में सब लोग एक साथ बैठकर टीवी देखा करते थे, कभी दादी से भी कभी नानी से कहानियां सुना करते थे, पर वक्त बदल गया, हर इंसान बस अपनी धुन में गुम है। घर में चार लोग हैं पर अलग अलग अपने अपने फोन चलाने में गुम है, जो हमारे लिए सोचने का एक विषय है। जी हाँ, तभी तो आज हम ये विषय लेकर आए हैं। हमें ज़रूरत है अपनी टेक्नोलॉजी, देखिए सुविधा देती है, आगे बढ़ाती है, बहुत मदद करती है, लेकिन उसका उपयोग कितना करना है और कितना नहीं करना है ये हम सब पर ही है। तो कुछ दायरे और कुछ नियम हम सबको खुद बनाने होते हैं, जो कि हम चर्चा करेंगे अगले भाग में, यानी एक तो गीत सुनवाएंगे उसके बाद, तो आप बने रहें। और ये संदेश इन्होंने भेजा है शाहीन, फातिमा और अनु खान।

के साथ। बहुत बढ़िया आपने लिखा है, अच्छा लगा मुझे कि इतनी गहराई से आप भी सोचते हैं। धर्मेंद्र छीपा जी हैं, उन्होंने संदेश भेजा और ये कह रहे हैं कि मुझे विषय अच्छा लगा। लिखते हैं कि अब जैसे आपने पूछा जो तो 5G के इस दौर में रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, मोबाइल पर ही ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं। सिर्फ मोबाइल पर हालचाल पूछना और खाना पूर्ति हो गया है, जबकि पुराने दौर में एक दूसरे के पास जाकर हालचाल पूछना और उनके पास बैठकर वक्त बिताने का अलग ही आनंद होता था। अब तो मोबाइल ने समय की कमी पैदा कर दी है। बिल्कुल सही, और हम हर बार कहते हैं ना, बहुत बिजी है, बहुत बिजी, समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन वो समय रील देखने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने या व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए मिल जाता है। बट अपने रिश्तों से उनको बना रिश्तों को सहेजने, उन्हें उनसे मिलने, उनसे बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। कपिल ईशान और पूजा परिहार, मतलब कपिल छिंपा और ईशान छिंपा के साथ और पूजा परिहार के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है हमें, भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश मैं लेना चाहूँगी, सुधाकर जाधव हैं, इन्होंने लिखा कि 5G मोबाइल से संबंध मजबूत हो रहे हैं क्योंकि इस 5G मोबाइल से पुराने दोस्त नज़दीक आ रहे हैं। ये बात तो सही है, नजदीक आ रहे हैं, लेकिन जो आप बैठकर हम बात करते हैं ना, मिलते हैं, जो रिश्तों में गर्माहट आती है, वो शायद मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कम है। लेकिन सबका अपना मानना है, ये आपकी सोच है, क्योंकि हमने कहा कि फायदा हुआ है तो वो भी बताएं, तो आपने बताया कि ये बात सच है। चाहे फेसबुक हो भाई, काफी जो स्कूल टाइम्स के 30 40 40 50 50 साल के बिछड़े दोस्त थे या साथी थे, उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे मिलना हो जा रहा है और लगातार कॉन्टेक्ट में भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, मुझे तो ये लगता है कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर लोग स्टेटस लगाते हैं, और वो होता है जैसे होता है ना कि एक चुगलखोर आंटी, तो भाई ताका झांकी करना, एक दूसरे की चीज़ों को देखना क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा जो काम दिया है, जासूसी का, चुगलखोरी का, ये हमें सोशल मीडिया ने अच्छे से सिखा दिया है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, ये चुगली झट से कर देते हैं। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से एक और संदेश इन्होंने ही ये भेजा था, जिन्होंने कहा कि पुराने दोस्त नज़दीक आ रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत राज जाधव देशमुख और इन्होंने साथ ही संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद और हर्षिता सानवी और प्रणाली, इन सब के साथ ये संदेश भेजा है। अगला संदेश मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद जरूर गीत सुनवाऊंगी आप सबको। और अगला संदेश है सतीश आनेजा जी का, ये लिखते हैं कि रिश्ते दिल से बनते हैं और निभाए जाते हैं, सोशल मीडिया या कोई भी नेटवर्क इनको मजबूत करने में कारगर नहीं हो सकता। इनसे हम कोई बात सूचित करने की सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत रूपी पौधों को ये खाद पानी नहीं दे सकते। आपका नाम किसी के जहन में आते ही मुस्कुराहट आ जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। चंडीगढ़ से इन्होंने बिमला आनेजा के साथ ये संदेश भेजा, तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो गर्माहट मिलने में होती है ना, वो आभासी दुनिया में नहीं, ऐसी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए नहीं होती। दिलावर खान हैं, ये लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बिना किसी वजह के भी होनी चाहिए, जहां ना कोई मतलब हो ना कोई काम, बस एक दोस्त हो और दिल से हालचाल हो, क्योंकि यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। और ऐसे रिश्ते हमें सोशल मीडिया साइट पर मिल जाते हैं, तो भैया बढ़िया बढ़िया, आपका लॉजिक भी सही है। इन्होंने ये संदेश भेजा रघुबीर नगर से, हसीना बानो और अलीजा नायाब और लड्डू के साथ। और भी संदेशों को हम शामिल करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अब आपको सुनवाऊंगी मैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और ये गीत, जब तक म्यूजिक आ रहा है तब तक संदेश ले लेते हैं। ये है मोहाली से टीजी करके, इन्होंने संदेश भेजा है, ये लिखते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया, अल्टीमेटली द मीडियम विच कुड लीड टू मोर पावरफुल रिलेशन हैज रिड्यूस्ड द कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब जितना समय आप सोशल मीडिया साइट्स पर बिताएंगे, मोबाइल पर बिताएंगे, उससे उतने ही रिश्ते और कमज़ोर होते जाएंगे, हम उनसे दूर होते जाएंगे। कई बार परिवार के साथ बैठकर भी हर कोई अपने फ़ोन में व्यस्त रहता है, जिससे आमने सामने की बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव कम हुआ है। सतही चैट और लाइक शेयर ने कई जगह गहरे और सार्थक संवाद की जगह ले ली है। तो सही कहा है आपने, दिलों के बंधन, दिलों के नाते, दिलों के रिश्ते, इनके लिए जरूरी है रिश्तों में गर्माहट हो, बने रहें, मिलना।
और एक जादू की जफ्फी मिलकर

ढेर सारी बातें करना, चाय की चुस्कियाँ के साथ खूब सारी गपशप करना, एक दूसरे की चुगली करना, बहुत सारी बातें करना, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताएं।

जी हाँ, ये दिलों के रिश्ते, दिलों के नाते, ये इतना खूबसूरत होते हैं ना कि अगर इनके इनके में गर्माहट बनी रहे, इनके इन साथ हम मेल जोल बढ़ाते रहें, तो रिश्ते उतने ही जीवंत रहते हैं, उतने ही जिंदा रहते हैं। और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, हर किसी की मदद करना, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रिश्ते मर जाते हैं, तो शायद वो भावनाएँ जो एक दूसरे के प्रति होती हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ना किसी की मदद कर पाते हैं और ना ही हम उसके दुख और उसकी तकलीफ को महसूस कर पाते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, इन्होंने भी संदेश भेजा एंजल और सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ, स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने ये संदेश भेजा है। रिश्ता अगर दिल से निभाया जाए तो कोई भी 5G से कोई फर्क नहीं डाल सकता। तो वही बहुत

बढ़िया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है, पर ये मैं जैसे मैंने कहा कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना समय इस 5G इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, कितना वक्त जो है व्यतीत करते हैं हम इस पर। और अगला संदेश संदीप मक्कड़ का है, इन्होंने ज्योति, मन्नत, भारत, कमल साहिनी और बाकी मक्कड़ थे इनके परिवार के सदस्य, और कमल साहिनी पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से इन्होंने संदेश भेजा। ये लिखते हैं कि आजकल रिश्तों में प्यार नहीं रहा, अगर हमें किसी को प्यार करते हैं वो समझते हैं कि इसके पास कोई और काम नहीं है, हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, ये इनका मानना है। जी हाँ, आपका भी सोचना सही है, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल ये भी सोचते हैं। और एक और साथी हैं हमारे टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा, इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे रिश्तों को करीब भी किया और कहीं कहीं दूर भी। मोबाइल और सोशल मीडिया से बातचीत आसान हुई, दूर रहने वाले लोग भी जुड़े रहते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर बात करने, समय देने और भावनाएं समझने का समय कम हुआ है। रिश्ते जुड़े तो हैं, मगर उनमें अपनापन बनाए रखने के लिए आज भी दिल से समय देना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगला संदेश है चरणदास जी का, ये लिखते हैं कि रिश्तेदार को बस में चढ़ाने जाते थे ना तो आंख में आंसू आ जाते थे। जी हाँ, मुझे भी याद है, हम भी बहुत रोते थे जब हमारे घर पे ना रिश्तेदार आते थे, खासतौर पर मेरी बुआ जी, मासी जी या कोई भी जो हमारा बहुत खास होता था, तो इतना रोते थे, हाय क्यों जा रहे हैं ये। लेकिन मोबाइल आने से ये बात खत्म हो गई। सच में ये जेन अल्फा और जेन जी शायद ये नहीं समझ पाएंगे इस वाली भावना को, क्योंकि आजकल तो बहुत इजी है ना सारी चीज़ें। और इन्होंने ये संदेश भेजा रेखा और चरणदास के साथ, चौधरी वास हरियाणा से इन्होंने ये संदेश भेजा हुआ है। अगला संदेश मैं ले रही हूँ, अब देखती हूँ कौन है हमारे अगले साथी, क्योंकि देखिए साथियों मैंने आपसे कहा है कि जो विषय से संबंधित संदेश होंगे मैं उन्हीं शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में, तो कोई नाराजगी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस फिल्म संगीत के गीत में मधुर मधुर गीत तो आप सुनते ही हैं, साथ ही साथ में हम कोशिश करते हैं कि हर कार्यक्रम में एक ऐसा विषय लेकर आएं जो हम सबसे जुड़ा हो और उस पर हम थोड़ा सा मंथन कर लें और आपकी राय भी जानें। तुलसी मस्किन है, इन्होंने संदेश भेजा है और ये भी देखिए क्या लिखते हैं ये हाँ ये कहते हैं कि आपने आधा शो तो हो गया, इन्हें नाराज़गी है कि इनका संदेश नहीं लिया शायद, और ये कहते हैं कि भेजा नो रिप्लाई, इनको लग रहा है कि मैंने इनका मैसेज शामिल नहीं किया है, तो ऐसी बात नहीं है, आपका जो संदेश हमें दिखा हमने शामिल किया है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से इन्होंने दिल्ली से संदेश भेजा है, तुलसी मस्किन और बीना मस्किन और सम्राट और डब्बू के साथ। अगला हमारे जो साथी हैं अहमद फूल वाले जी, इन्होंने रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी इन्हें, तो आप सबको भी देखिए इसीलिए मैंने रक्षाबंधन पर आधारित एक गीत रिश्तों को लेकर सुनवाया, आप सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि त्यौहार कल हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ता तो दिल से होता है, तो जो दिल जो कल आपने अपने दिल से अपने इस रिश्ते को, भाई बहन के प्यार के त्यौहार को मनाया है, वो ऐसे ही आपका रिश्ता आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे। अगला संदेश है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। संदीप जी का संदेश हम ले चुके हैं, बहुत सारे साथी जिन्होंने एक बार संदेश भेजा है उनके संदेश हम ले चुके हैं, फिर भी बार बार संदेश भेजते रहते हैं आप, जिसकी वजह से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके संदेश हम शामिल नहीं कर पाते। जिला मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजा मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक बलवीर सिंह ने। इसके साथ ही हमें कुणाल सिंह ने संदेश भेजा है और इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है, दादरी गेट भिवानी से इन्होंने कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल के साथ ये संदेश भेजा है। नमस्ते लिखते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, आप ऐसे ही हमारा शो सुनते रहें। सिद्धार्थ गोंडाने हैं, इन्होंने संदेश भेजा है ये अपने साथी अर्चना ताई के साथ, और हीरामन शेंडे जी ने भी के साथ भी इन्होंने संदेश भेजा है, साथ ही प्रणय और प्रतिभा के साथ भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है।

अमरावती से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अगला संदेश है निसार अली जी का, ये लिखते हैं, इन्होंने भी बस अपना नाम सुनना चाहा है। ये नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू के साथ इन्होंने उत्तराखंड धनौली तेलीवाड़ा से संदेश भेजा है। रोजी डे कैस्ट्रो हैं, इन्होंने जॉन डी कैस्ट्रो पर्ल और विलिस डे कैस्ट्रो के साथ सहारनपुर जनकपुरी से अपना संदेश हम तक पहुंचाया और ये भी अपनी पसंद का ही गीत सुनना चाह रहे हैं। रोशन देवांगन हैं, इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि 5G ने दूरियों को तो कम कर दिया लेकिन कहीं कहीं दिलों की नज़दीकियाँ भी कम कर दी हैं। आज वीडियो कॉल और मैसेज से हम अपनों से पल भर में जुड़ जाते हैं लेकिन एक ही घर में बैठे लोग कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आमने सामने बातचीत तक नहीं हो पाती, उन्हें समय नहीं मिलता। मोबाइल रिश्तों को जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है, बशर्ते हम उसे रिश्तों का विकल्प नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का साधन बनाएं। आखिरकार एक प्यारी सी आमने सामने की बातचीत हो और अपनों के साथ बिताया समय किसी भी नेटवर्क से मजबूत कनेक्शन का होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है लेकिन कैसे समझाएं, लोग ये बात समझने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि आज आप ये मंथन करें और अपने घर पर भी ये अप्लाई करें कि जब भी हम आपस में बैठेंगे तो फोन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

तो अगला संदेश मैं जो ले रही हूँ, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने भेजा है। लिखते हैं कि आज का डिजिटल युग कुछ मायने में अच्छा भी है और कुछ मायने में अच्छा नहीं। रही सवाल रिश्ते से जुड़ने की, तो हजारों किलोमीटर में रहने वाले रिश्तेदार और दोस्त से पल में बातचीत हो जाती है और कुछ पल में नुकसान भी हो जाता है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग कई बार ठगी भी हो जाती है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। किसी जगह पर चार दोस्त जब मिलते हैं तो बातचीत कम होती है, अपने मोबाइल पर सभी बिजी रहते हैं, इसलिए कहीं फायदा तो कहीं नुकसान। मोबाइल में अक्सर झूठ भी बोला जाता है। घर जब होते हैं तो आमने सामने बात भी हो जाती है, और अगर घर पे रहते हैं तो हम मोबाइल से बोल देते हैं, भाई हम बाहर हैं।

व्हाइट फिल्टर बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव और दिव्यांशु भूषण संस्कृति पौरुष की तरफ से भी हमें संदेश आया है। एसपी गोयल जी ने भी हमें संदेश भेजा और लिखते हैं कि आर्थिक विपन्नता में रिश्ते अधिक मजबूत रहते हैं। जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता बढ़ती है तो रिश्तों की डोर कमजोर होने लगती है, यद्यपि ये बात जरूरी नहीं सब पर लागू हो। सतप्रकाश सनोठिया जी ने रोहिणी दिल्ली से संदेश भेजा, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि आजकल लोगों में थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा आ गया है, उन्हें लगता है कि अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, कई बार भावनात्मक रूप से भी हमें मदद चाहिए होती है, ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। मोहम्मद फरान हैं, इन्होंने भी किसी भी गीत में शामिल होने के लिए संदेश भेजा है, मुरादाबाद से सलमान इरफान और इसरार नरगिश खातून के साथ। ओम प्रकाश राय हैं, इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि छुप गए सारे नज़ारे, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है, उषा।

मित कुमार राय और हैप्पी राय के साथ। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से इन्होंने संदेश भेजा है।

जी हाँ, मोबाइल से चाहे झूठे कितने वादे करें, लगता है बस यही हमारा सच्चा और पक्का दोस्त है। कितने भी वादे कर लें, सब सच्चे लगते हैं। जैसे हमारे एक साथी ने भी कहा था, बहुत झूठ बोलते हैं हम मोबाइल ने। मोबाइल ने लोगों को ना झूठ बोलना बहुत सिखाया है, ये बात तो सही है। और रिश्तों को थोड़ा भुलाना भी सिखाया है। हाँ, लाइफ बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन ये चीज़ें भी सिखाई हैं। और अगला संदेश जो मैं देख रही हूँ, कमल पाठक जी का, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। सुनील गव्य और सुच्चा सिंह जी के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया है। अनवर सावरी हैं, इन्होंने दाऊद सराय सहारनपुर से शन्नो मुदस्सिर और मुजकर जरीफ अंसारी के साथ ये संदेश भेजा, और ये भी चाहते हैं कि इन्हें किसी गीत में शामिल करें। और बहुत सारे साथी हैं जो बार बार संदेश भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथियों के संदेश हमें नहीं मिल पाते हैं। नीटू मल्होत्रा हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है खैल बाजार पानीपत से लक्ष्य कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी के साथ। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भी इन्होंने अपने साथियों के नाम, जैसे पीयूष कोयल सिक्का और भाविका का नाम लिखा है साथ में, तो ये भी किसी गीत में शामिल होना चाहते हैं। इन्होंने गुजारिश की, बाबू शिवाजी का संदेश आया है और इन्होंने भी पश्चिमी सिंहभूम चाईवासा झारखंड से ये संदेश भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से हमें संदेश भेजते हैं और हमें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, कहते ना प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ही जुड़े रहे सभी साथी। बबलेश पवार हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। बबलेश पवार, डैनी, मनीष, खलीफों की बावड़ी से भी इन्होंने कुछ साथियों के नाम भेजे हैं, रामदेवरा से कुछ साथियों के नाम, और डांगड़ी से भी इन्होंने संदेश भेजे हैं अपने साथियों के नाम लिखकर। अपनी पसंद का इन्होंने गीत सुनना चाहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत आप सबको बहुत आएगा ये मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और गीत बहुत ही शानदार भी है। मैं गुजारिश करती हूँ, जैसे कि रविंदर सिंह जी हैं, बिट्टू भाटिया जी हैं और चरणदास जी और भी साथी, इन्होंने बार बार संदेश भेजे, जिसकी वजह से बहुत सारे साथियों के संदेश मिस हो गए हैं। अहमद फूल वाले जी, आपका भी संदेश मैं शामिल कर चुकी हूँ, फिर भी आपने बहुत सारे संदेश भेजे। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई, शामिल कर चुके हैं, गीत भी सुनवा दिया है आपको। साथ ही लिखते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ रिश्ते तो बन जाते हैं, मगर सच्चा प्यार रिश्ते तो आमने सामने बनते हैं और बिगड़ते हैं। सोशल मीडिया सभी की जरूरत है। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब जी लीजिए मस्किन जी, आपका संदेश एक और आया हमारे पास, जिसमें आपने लिखा कि ये डिजिटल आने से कुछ ओल्ड दोस्तों से एटीट्यूड आ गया है, ये मुझे तो ये न्यू टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आई, और इसने हमारी दूरियां तो नजदीक कर दी पर विचार बदल गए। बिल्कुल सही, तो शाहदरा से, दिल्ली से इन्होंने संदेश भेजा है। आपने बिल्कुल सही लिखा, और इसी पर हम ध्यान लाना चाहते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम मिस कर रहे हैं। लालगिरी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा और इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ताज मोहम्मद है, इनका भी संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कहीं भी जाए मोबाइल साथ है, हर कोई इसमें बिजी है, मोबाइल में टीवी छोड़वा दिया, कंप्यूटर कैलकुलेटर घड़ी आदि सब आ गया। भई आजकल मोबाइल एक बहुत ज़रूरतमंद चीज़ हो गई है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इन्होंने भी अपने साथियों के नाम लिखे हैं। लखापत राज हैं, ये लिखते हैं कि देखिए घड़ी इशारा करिए कि समय कम है, तो आप बुरा ना माने, क्योंकि मैं बीच बीच में अब जल्दी से आपके नाम ही शामिल करूंगी, हो सकता है संदेश पूरा ना शामिल कर पाऊं। मोबाइल से दूर रहने वाले परिवार और दोस्त भी आसानी से जुड़े रहते हैं, वीडियो कॉल और मैसेज के कारण अपनों से बातचीत आसान हुई है। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया की वजह से कई बार

गलतफहमी, शक और तुलना जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। परिवार के साथ बैठकर भी यदि हर व्यक्ति मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो भावनात्मक रूप से दूरी बढ़ सकती है। आनंद पर्वत से इन्होंने संदेश भेजा, सूबेदार अमर सिंह और वेद प्रकाश चौहान के साथ। लखपत सिंह जी का ये, लखपत राज जी का ये संदेश था। फिर आप देख रही हूँ मैं कौन कौन बच गया है। तो जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमें मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना और अनुज वर्मा का संदेश आया है। रूपेश संघाई जी ने भी संदेश भेजा हमें परभणी महाराष्ट्र से। महेश के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। इसके साथ ही हमें, हमारे साथी थे आबासी साहब जो कि हमारे बहुत पुराने साथी हैं और मुझे पता है वो नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने, मैंने लेकिन आबासी जी आपसे कहा था कि उन साथियों के संदेश हम शामिल करेंगे जो कम से कम हमारे इस प्रोग्राम से जो जुड़े सवाल हम पूछते हैं आपसे या कोई विषय होता है उससे जुड़ते हैं आप, तो उन्हें हम पहले तवज्जो देते हैं।

तो हमारे जो आवासी साहब हैं ये लिखते हैं कि भाई बरसों से आपके साथी हैं हम, और हम मेल भेजते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी नाराज़गी होती है कि आपने मेरा मेल शामिल क्यों नहीं किया। ऊपरकोट मोहल्ला चुकंठी बुलंदशहर से ये संदेश भेजा है इन्होंने अपने साथियों के साथ। प्रकाश वर्मा जी ने भी संदेश भेजा है, सुधाकर जाधव जी ने भी संदेश भेजा।

सुमेरा परवीन, अक्रम, ये हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, और साथ ही साथ राजेश जैन, दक्षा सुनील, बसंत अकीला, विनायक वेंढे, और साथ ही साथ अनवर सावरी, इन सबके संदेश, रमेश चौहान जी हो गए, इन सबके संदेश हमें बहुत पहले मिले थे। सोमदत्त जी का भी संदेश हमारे पास आया है, साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने संदेश आए, राजी शर्मा हैं, इन्होंने भी संदेश हमें भेजा था मलोट से, पंजाब से, रजक मोहम्मद हैं, नारायण खर्चे हैं, विजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, और चंदू कुलकर्णी, और साथ ही अन्य साथी भी हैं, तो अब घड़ी इजाज़त नहीं दे रही। अनिल कोहले जी हैं, उनका भी संदेश आया है। साथियों, इसके साथ अब मैं माफ़ी चाहती हूँ जिन साथियों के संदेश शामिल नहीं कर पाई। अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए इजाज़त और मंथन के लिए कि मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है और कितना नहीं, क्योंकि अत्यधिक इस्तेमाल बढ़ रहा है जिससे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं।

0: बार बार नोटिफिकेशन चेक करने से चेहरे का सुकून तो जाता ही है, रिश्ते भी धूमिल होते हैं। डायरेक्ट कॉल कीजिए ना, मिस कॉल मत करिए, डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर लीजिए, रिश्ते भी मधुर होंगे और आपका और हमारा साथ सबका भी मजबूत होगा, क्योंकि आप हमें लगातार भेजते रहेंगे मेल। जी और भी प्रोग्राम है ipradiodelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे थे आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों

0: से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। दोनों देश संपर्क सुधारने और बाधाओं को दूर करने पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 626 हो गई है। लगभग 2000 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया है। डॉक्टर जयशंकर ने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन को दर्शाता है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इस महीने की 31 तारीख से 2 दिन की सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये बैठक गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख के पहले सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for his 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of the President of the Kyrgyz Republic, Sadur Japarov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO Summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow

और अब आप सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में एक सईद राही की लिखी गजल, बहुत ही खूबसूरत है, दिल को छू जाती है। आप देखिए ना, जब कोई प्यार में होता है तो सच में उसी की तरह बनना चाहता है, और इस गजल में ये बखूबी बताया गया है। मुझे ये गजल बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर पसंद आएगी।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल है ये, सच में बार बार सुनने का मन करता है मेरा तो इसे। और अगली जो प्रस्तुति है, अगला जो गीत आप सुनेंगे रूमा लैला की आवाज़ में, ये भी बहुत ही खूबसूरत।

अभी आप सुन रहे थे सबरस, और श्रोताओं अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम का। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक पूरे 11:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे राग शुद्ध सारंग में तन्वी भट्टाचार्य का गायन। आपके साथ संगति कर रहे हैं तबले पर सुमित राय धोकर और हारमोनियम पर हैं करीम नियाजी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में तन्वी भट्टाचार्य का गायन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सुमित राम धोकर और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे करीम नियाजी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। सबसे पहले अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और

0: महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी हैं। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3 रुपये 89 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86 रुपये 98 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92 रुपये 1 पैसे और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has left for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of President of the Kyrgyz Republic, Sadir Zaparov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region anchored in security, connectivity and opportunity and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. There is considerable discussion about important decisions on cooperation in rare earth minerals during the Prime Minister's visit. In an interview with Akashvani News, Smita Pant, Indian ambassador to Uzbekistan, said that Uzbekistan is rich in natural resources and that Prime Minister Narendra Modi's visit to Tashkent will also discuss investment and technology transfer in the mining and rare earth minerals sector.
3: Several MOUs will be signed, concretizing specific areas of cooperation in the area of culture and many other.

0: घर आंगन। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर दिन नई उम्मीद लाता है। जो खुद पर यकीन रखे वही जीत पाता है। घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा दीपा भूषण का
1: और मेरा यानी अमित कमल का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं आकाशवाणी

0: दिल्ली के इंद्रप्रस्थ टनल पर, यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, और साथ ही आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी।
1: और
0: और
1: दोस्तों,
0: बिल्कुल
1: आज हम अपने दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि कल राखी का त्यौहार आप सबने बहुत
0: बहुत
1: अच्छे
0: अच्छे
1: से
0: से
1: मनाया
0: मनाया
1: होगा।
0: होगा।
1: तुमने भी?
0: बिल्कुल और आज के इस कार्यक्रम में मैं और दीपा आपको बहुत सी जानकारी साझा करेंगे और प्यारे प्यारे सुरीले गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो दीपा, क्यों ना एक प्यारा सा गीत हो जाए हमारे श्रोताओं के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल हो जाए।

0: दोस्तों, कुदरत फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। तुम क्या बात कर रही थी दीपा?
1: और मैं क्या बात कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि अमित, क्या तुमने नोटिस किया है कि हमारी भाषा जो है, ये हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान को दर्शाती है। जो हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, ये हम सब जानते हैं। और आजकल क्या तुमने ध्यान दिया है कि हमारी जो रोज़मर्रा की भाषा है वो कितनी बदल गई है।
0: और आजकल दीपा, हमारी बातचीत में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं घुल मिल गए हैं, और भाषा का बदलना स्वाभाविक है, और नई भाषा सीखना भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हमारी हिंदी के कई पुराने मुहावरे और कहावतें हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं दीपा।
1: और दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें हमारे बुजुर्गों का अनुभव, हास्य और जीवन की सीख छुपी हुई है। और पहले हमारे श्रोताओं को अमित ये बताइए, आपकी मुहावरा और कहावत में अंतर क्या होता है?
0: बिल्कुल दीपा, बहुत आसान है। मुहावरा ऐसा विशेष वाक्य होता है जिसका अर्थ उसके सामान्य शब्दों से अलग होता है, और वह वाक्य का हिस्सा बनकर इस्तेमाल

0: तो माँ कहती है इन बच्चों ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, ये मुहावरा है।
1: और कहावत
0: कहावत आमतौर पर किसी अनुभव, परिस्थिति या जीवन की सीख को पूरी बात के रूप में सामने रखती है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर की चीज़ों या व्यक्ति की कद्र कम करना और बाहर की चीज़ों और व्यक्तियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना।
1: ये भी कहावत है, बिल्कुल सही कहा। तो याद रखने का आसान तरीका है कि मुहावरा बात को रोचक बनाता है और कहावत बात में अनुभव या सीख को जोड़ती है।
0: दीपा, मुझे एक और जाना पहचाना मुहावरा है वो याद आ रहा है, आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा या प्रिय होना, जैसे तुम हो मेरी मम्मी है मेरे लिए, जैसे माता पिता के लिए उसका बच्चा अक्सर उनकी आंखों का तारा होता है।
1: बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और एक प्रसिद्ध कहावत है, तुम बताओ।
0: ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी ऐसी शर्त रख देना जिसका पूरा होना ही मुश्किल हो जाए।
1: और एक कहावत, मतलब जो ये तो बात अमित जो तुमने कही कि हम देख रहे हैं कि कितनी छोटी सी पंक्ति और कितनी बड़ी सीख है, और आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हिंदी अंग्रेजी की मिली जुली बातचीत में हम ऐसे शब्दों और कहावतों को देखो भूल रहे हैं, तो हमें इनको याद रखना होगा।
0: और कहावतों के साथ याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। जैसे बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपनी भाषा को जितना बोलेंगे उतना ही वह हमारे साथ और अगली पीढ़ी के साथ जीवित रहेंगे।
1: ये तो अमित तुमने बहुत बड़ी बात कही है।
0: तो अपनी भाषा से जुड़े रहिए, मुहावरों और कहावतों को याद रखिए और उन्हें बोल चाल में फिर से जिंदा रखिए, क्योंकि भाषा तभी जीवित रहती है जब वह किताबों में नहीं लोगों की जुबान पर रहती है।
1: क्या बात है।
0: और तुम कुछ श्रोताओं से कहने वाली थी अभी।
1: हाँ, मैं कहने वाली थी कि श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम से जुड़े सेगमेंट के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसमें हम सभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे क्वेश्चन का जवाब आप हमें देते हैं, प्रश्न का जवाब। इसके लिए आप हमारी ईमेल जो है नोट कर लीजिए, ये है fmgoal@gmail.com। आपके दिए गए जो जवाब हैं श्रोता, जो हम सवाल आपसे पूछेंगे उसका जवाब हम आज के कार्यक्रम में ही शामिल करेंगे। तो जल्दी से आप एक बार और मैं आपको अपना ईमेल आईडी बताती हूँ, fmgoal@gmail.com।
0: और दोस्तों, आपको सवाल, आपके लिए आज का सवाल है, क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं? आपका पसंदीदा मुहावरा या कहावत कौन सा है और इससे जुड़ी कोई याद या किस्सा है उसे हमें ज़रूर बताएं fmgoalga@gmail.com पर। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी सीआईडी, गायिका थी शमशाद बेगम।
1: और दोस्तों आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी गाने से पहले दीपा, हमने अपने श्रोताओं से सवाल पूछा था कि क्या आप भी अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। आपका पसंदीदा मुहावरा या कहावत कौन सा है और उससे जुड़ी कोई याद या किस्सा है तो हमें ज़रूर बताएं fmgoldga@gmail.com पर। और दीपा, हमारे पास मैसेज भी आ गए हैं हमारे श्रोताओं के। पहले जो श्रोता हैं वो नवीन भाटिया जी हैं न्यू दिल्ली मोतीनगर से। ये लिख रहे हैं कि हम रोज़ाना करते हैं अपनी शॉप पर, इनकी ये दुकान है,
0: अच्छा, अच्छा।
1: उसमें अक्सर ये कहावतों का और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि इनकी जो अक्सर ये यूज़ करते हैं जिस कहावत या मुहावरे का, वो है जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों बहाए भय उदास।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें जो अर्थ आता है ये काफ़ी बड़ा है। और जो दूसरा है हमारा, ये है राजू अग्रवाल केशव दक्ष चौधरी हिसार हरियाणा से लिख रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला
1: दीवाना।
0: और इन्होंने लिखा है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, बचपन में शादी वाले घर के आगे बिना बुलाए नए कपड़े पहन के चक्कर लगाते थे, कोई खाने के लिए कह दे या बारात में चलने के लिए कह दे तो हम चल देते थे।
1: ये बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्सा है। और भी जो हमारे श्रोता हैं अपने जो विचार हैं मुहावरों और कहावतों को लेकर हम तक पहुँचा सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। और अब एक सेगमेंट हम रोजाना
0: अपना बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि हम अपने घर आंगन कार्यक्रम में बहुत सारे सेगमेंट लेकर आते हैं, उसी में से एक सेगमेंट है सफलता की कहानी। और वही सफलता की कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं बागेश्वर में दीपा, ऊर्जा क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी माँ भगवती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी उद्यमी बनकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: और दोस्तों, समूह से जुड़ी 10 उत्साही महिलाओं ने रीप परियोजना के तहत CBO स्तर पर एक सिलाई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। परियोजना की ओर से महिलाओं को

0: आवश्यक मशीनें, कच्चा माल और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद अगस्त 2026 में इस इकाई का औपचारिक शुभारंभ हुआ।
1: और दीपा, इस सिलाई केंद्र पर महिलाएं न केवल नियमित रूप से कपड़े सिल रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय पर्वों और त्योहारों के समय विशेष उत्पादों का निर्माण कर अपनी आय को और बढ़ा रही हैं।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है अमित। और इस इकाई की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने की क्षमता है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए तिरंगे झंडों की स्थानीय बाजार में भारी मांग रही। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी महिलाओं द्वारा बनाई गई पारंपरिक और आकर्षक राखियों ने बाजार में धूम मचाई और इन्हें हाथों हाथ सबने खरीदा।
1: दीपा, इस पहल ने समूह की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। प्रत्येक महिला इस इकाई के माध्यम से प्रति माह 3 से 4 हजार तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है और घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज एक सफल उद्यमी के रूप में पूरे सम्मान के साथ कार्य कर रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है दीपा, हम इसलिए लाते हैं ताकि जो हमारी महिलाएं हैं और अपने उनमें गुण होते हुए भी
0: वो अपने
1: अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें इससे मोटिवेशन मिलता है, उनके लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए।

बहुत ही प्यारा गीत, आज चल के तुझे मैं ले चलूं। फिल्म थी दूर गगन की छांव में, गायक थे किशोर कुमार। और अमित, मुझे लग रहा है हमारी मेल भी, हमारे जो श्रोता हैं वो भेज रहे हैं। ये मेल है अफरोज शेख, पता है नेमुआ सुपौल बिहार से। ये कहते हैं कि हमारे गांव में इस तरह का मुहावरा

0: बोला जाता है, पाव भर धनिया और मुंबई में दुकान, 12 आना का मुर्गी, 4 आना का मसाला। क्या बात है,
1: बहुत अच्छी। हमारे श्रोता भी बहुत इंटरेस्टिंग कहावतें जो हमें भी नहीं पता है वो हमारे साथ अच्छा साझा कर रहे हैं। और हमारे साथ बहादुरगढ़ हरियाणा से महेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, इन्होंने भी मैसेज किया है। दीपा जी और अमिता जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कहावत बहुत सारी हैं, कई बार बातों बातों में मुहावरे निकल जाते हैं और मेरी माता जी बहुत इस्तेमाल करती हैं, ये लिख रहे हैं। और वो ज़्यादातर पता है क्या इस्तेमाल करती हैं, वो कहती हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अब
0: बहुत पुरानी कहावत है
1: ये, बहुत पुरानी कहावत है दीपा। और हम और भी मेल्स अपने श्रोताओं के लेंगे, पर हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें हम करियर की बात करते हैं। दीपा, मर्चेंट नेवी जो है युवाओं के लिए एक ऐसा करियर विकल्प है जिसमें समुद्र पर काम करने के साथ अच्छी कमाई, आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया के बड़े हिस्से का जो व्यापार है वो यहीं समुद्री रास्तों से होता है, इसलिए इस क्षेत्र में लगातार प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत रहती है। 12वीं के बाद छात्र छात्राएं अपनी रुचि के अनुसार डेक, इंजन, इलेक्ट्रिकल या रेटिंग से जुड़े कोर्सों में प्रवेश कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी का जो मुख्य काम व्यापारिक जहाज़ों के जरिए सामान और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है।
0: और दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सबसे पहले अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कोर्स चुनना होता है। जीपी रेटिंग एक एंटी लेवल विकल्प है जिसे 10वीं या 12वीं के बाद किया जा सकता है। इसकी अवधि करीब 6 महीने की होती है। इसके बाद डेक या इंजन विभाग में काम करना शुरू किया जा सकता है।
1: अगर आपकी रुचि जहाज़ की नेविगेशन और संचालन में है तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या BSc नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। इसके बाद डेक कैडेट के रूप में करियर शुरू होता है और अनुभव व ज़रूरी परीक्षाओं के बाद अधिकारी पदों पर प्रमोशन मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात बताई अमित। और दोस्तों, मशीन और तकनीकी काम पसंद करने वाले जो छात्र छात्राएं BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आमतौर पर 4 साल का कोर्स होता है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर ETO के रूप में करियर बना सकते हैं।
1: और आजकल इतने वास्ट वास्ट जो है सोशल मीडिया पर जो है चेक करना होता है, तो आप दोस्तों जब ये पढ़ाई करते हैं साथ के साथ वैकेंसीज उसमें देखते रहें ताकि आप अपडेट रहें। और आप भी कुछ ऐसे ही गीत गाएं।

0: ए जिंदगी गले लगा ले, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी सदमा और इस गीत को गाया था सुरेश वाडकर जी ने। FM गोल्ड 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम। और दीपा, और भी मेल्स आ गए हैं, बताओ किसका मेल आया है?
1: गौरी शंकर जी का आया है। वो कहते लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम। पहले 60 साल पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जी भी बहुत सी बातें मुहावरों में कह दिया करते थे और सब समझ भी जाते थे। आपके लिए ये कहूँगा, आप दोनों मिलकर प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती
0: है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो शुक्रिया गौरी शंकर जी, आप ये नागलोई से लिख रहे थे हमें।
0: और एक और मेल आया है हमारे पास ग्रेटर नोएडा से। रजत भूषण जी लिखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इस मुहावरे से जुड़ा एक अनुभव मुझे अपने कार्यकाल का याद दिलाता है। कई बार ऐसा हुआ कि एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निकलने की कोशिश की इन्होंने दीपा, तो लगा कि समस्या हल हो गई है, लेकिन तभी उससे भी दूसरी चुनौती उनके सामने आ गई। और उस समय ये मुहावरा बिल्कुल इन्हें सटीक लगता था। और एक परेशानी से निकले नहीं कि दूसरी परेशानी में फंस गए। मुहावरा है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। और तुम क्या बात कर रही थी आगे?
1: मैं अब हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम मेल भी अभी लेंगे, पर उसके पहले अमित, जैसा कि आप जानते, हमारे दोस्त भी जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, और जो हमें याद दिलाता है कि नेत्रदान, जो नेत्रदान है, किसी की जिंदगी में सचमुच रोशनी ला सकता है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा

0: हमें मतलब हम ये कहेंगे कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जाने के बाद, यानी अगर हम नहीं भी रहे, तो हमारी आंखें किसी और की दुनिया को रोशन कर सकती हैं।
1: बहुत सुंदर कहा दीपा। नेत्रदान केवल एक महान मानवीय कार्य ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को फिर से देखने का अवसर देने वाला उपहार है। लेकिन
0: बिल्कुल
1: मेरे मन में एक सवाल आता है दीपा, आखिर दान की गई आंखें जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचती कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सबको मालूम होना चाहिए कि इसीलिए नेत्र बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है, जो नेत्रदान की प्रक्रिया में दाता के परिवार से संपर्क करने से लेकर आंखों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने, उनकी जांच और संरक्षण तथा जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: और यहाँ ये बताना भी जरूरी है दोस्तों कि नेत्रदान कैसे किया जा सकता है। नेत्रदान का संकल्प लेना बहुत आसान है। आप किसी अधिकृत नेत्र बैंक या अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, एक सरल प्रतिज्ञा पत्र भरकर अपनी सहमति दे सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार को अपनी इच्छा के बारे में जरूर बता सकते हैं।
0: और दोस्तों, आप नोटो, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन नेत्रदान का प्लेटफॉर्म भर सकते हैं।
1: यानी नेत्रदान का संकल्प लेने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन ये संकल्प किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए रोशनी ला सकता है। नेत्रदान का निर्णय केवल व्यक्ति का नहीं, परिवार की सहमति और सहयोग भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है दीपा। इसलिए परिवार और सदस्यों को पहले से अपनी इच्छा के बारे में बताना अच्छा रहता है। नेत्रदान के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि नेत्रदान से चेहरा खराब हो जाता है। वास्तव में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा पूरी गरिमा और सावधानी के साथ ये प्रक्रिया की जाती है।
0: और दोस्तों, तो इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर हम केवल नेत्रदान का संकल्प ही ना लें, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में सही जानकारी दें। किसी की आंखों में रोशनी लौटाना इंसानियत का सबसे खूबसूरत उपहार है।

0: तेरी आंखों के सिवा, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी चिराग, गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, हमारे में एक और सेगमेंट होता है डीज ऑफ द डे की बात करते हैं हम। दोस्तों, आज के विशेष दिन की अब हम बात करेंगे और आज यानी 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को परमाणु परीक्षणों से होने वाले मानवीय, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित खतरों के प्रति जागरूक करना तथा परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 29 अगस्त को इस दिवस के रूप में घोषित किया था और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है दीपा।
0: बिल्कुल अमित, आज 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि है, जो कि भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनके असाधारण खेल कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जन्मतिथि पर सादर नमन।
1: और हमारे पास मेल भी आ गए हैं। हमारे सवाल जो हमने पूछा था मुहावरों से रिलेटेड, ये हैं डॉक्टर राजेश्वर राव, एडवोकेट हैं ये शकरपुर दिल्ली से। ये लिखते हैं, आई एम एन एडवोकेट, आई ऑलवेज यूज विद माय क्लाइंट, इफ दे फेल ब्रिंग फी, आई से टू देम, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या।
0: क्या बात है।
1: और बहुत मेल आ रहे हैं, एक और मेल तुम बता रही थी।
0: हाँ अच्छा, ये नवाब अहमद जी बल्ली मारा से लिखते हैं कि आरजे साहिबा को, दोनों आरजे साहिबा को हमारा प्यार भरा नमस्कार करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है।
1: ये कहा
0: इसका
1: है?
0: मतलब ये कहा, इसका मतलब होता है मैं और एक फील्ड से गुजरा हूँ, मैं हर एक फील्ड से गुजरा हूँ, हर एक के बारे में जानता हूँ, मुझे पूरी जानकारी है हर एक चीज
1: के
0: बारे
1: में। बहुत अच्छे जानकारी
0: बहुत
1: दी
0: अच्छा
1: उन्होंने।
0: लिखा है।
1: और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए।

0: इजाज़त मूवी से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में। और दीपा, अगर आपको घर में गार्डनिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और आप लौंग का पौधा लगाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताएंगे कैसे घर पर गमले में लौंग उगा सकते हैं। थोड़ा सा तुम भी बताओ दीपा।
1: क्योंकि दोस्तों, अगर आपको घर के गमले में लौंग उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सही गमले का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका पौधा बेकार भी हो सकता है। शुरुआत में 6 से 8 इंच का गमला लेना ही एकदम बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। इसमें आप अपने लौंग के पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल का भी होना काफ़ी ज़रूरी है।
0: दोस्तों, कभी यानी किसी भी मौसम में आप लौंग का पौधा नहीं लगा सकते। इसको लगाने का भी एक सही समय होता है। अगर आप सही समय को इसके उगाते हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इसके लिए जलवायु का नम होना बहुत ज़रूरी है। इसको उगाने के लिए सही समय अब फरवरी से अप्रैल और जून से सितंबर के बीच बताया जाता है।
1: और दोस्तों, अगर आप लौंग का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का चुनाव करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। लौंग के पौधे के लिए हल्की भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का ही आपको चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम अच्छी मानी जाती है।
0: और दीपा, लौंग उगाने के लिए 15 फूल वाली लौंग लेकर आलू का टुकड़ा काटकर उसमें चुभो देना है। और ध्यान रखें कि लौंग अच्छी फूल वाली होनी चाहिए। अब इसे मिट्टी में लगाएं और थोड़ी और मिट्टी डालें, कुछ दिनों में पौधा निकल आएगा।
1: और दोस्तों, इसकी केयर तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में इसे छाया में रखें जब तक इसका पौधा बड़ा ना हो जाए।

0: यही वो जगह है, ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी और गायिका हैं आशा भोसले।
1: और इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हमारे दोस्तों से हमें इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। अगली मुलाकात तक मुझे यानी अमित कमल
0: और
1: को
0: मुझे यानी दीपा भूषण को दे अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के

0: अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has embarked for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to both the nations will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, and further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defense, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of President of Kyrgyz Republic, Sadir Zaparov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. There is considerable discussion about important discussions on cooperation in rare earth minerals during the Prime Minister's visit. In an interview with Akashwani News, Smita Pant, Indian ambassador to Uzbekistan, said that Uzbekistan is rich in natural resources and Prime Minister Modi's visit to Tashkent will also focus on investment and technology transfer in the mining and rare earth minerals sector.
2: The agenda will be very comprehensive. We will have extensive discussions on trade and investment cooperation, development cooperation, culture cooperation, cooperation in health, pharmaceutical, traditional medicines, regional developments, and also cooperation under United Nations and other multilateral fora.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. The Ministry of External Affairs has

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, राखी ने फिल्म शर्मिली में दोहरी भूमिका निभाई थी, कंचन और कामिनी की, जहां कंचन बेहद शांत, शर्मीली और सीधे साधे स्वभाव की लड़की है, वहीं कामिनी एक मॉडर्न, चंचल और बिंदास जीने वाली लड़की है। इसकी सफलता ने उन्हें उस दशक की हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। इस फिल्म से रंजीत ने भी डेब्यू किया था। फिल्म की शुरुआत रोमांटिक ट्रैक से होती है, लेकिन आधे ड्यूरेशन के बाद ये रहस्य और थ्रिलर की ओर एक शानदार मोड़ लेती है। इस फिल्म ने राखी को रातों रात एक स्टार बना दिया।

श्रोताओं, शर्मीली फिल्म का संगीत भारतीय दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गया। एसडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध, नीरज द्वारा लिखित और किशोर कुमार, लता मंगेशकर तथा आशा भोसले द्वारा गाए गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये गीत 1971 की बिना का गीतमाला के शीर्ष 10 गीतों में शामिल थे। फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा अलग अलग गीतों के रूप में गाया गया गीत खिलते हैं गुल यहाँ भीम पलासी राग में है, जबकि मेघा छाए आधी रात पटदीप राग में है।

श्रोताओं, शर्मीली फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा सेमी हिट घोषित किया गया। फिल्म में शशि कपूर और राखी द्वारा दमदार और आशाजनक प्रदर्शन के कारण इसे समीक्षकों और व्यवसायिक दोनों तरह से सफलता मिली। फिल्म ने लगभग 2 करोड़ 60 लाख की कमाई की थी।

श्रोताओं, फिल्म शर्मीली अपने दौर की उन फिल्मों में से है जो वैसे तो एक रोमांटिक कहानी के रूप में प्रचारित हुई थी, लेकिन फिल्म देखने पर उसमें सस्पेंस थ्रिलर के साथ अजब भावनाओं की कई परतें छुपी हुई हैं। फिल्म की कहानी मशहूर लेखक गुलशन नंदा की थी, जिनकी कहानियों में रोमांस के साथ साथ रहस्य भी हमेशा मौजूद रहता था। गुलशन नंदा की लेखनी को सिनेमा में ढालना आसान नहीं होता था, लेकिन समीर गांगुली ने इसे बहुत संतुलन के साथ पर्दे पर उतारा।

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति और जाते जाते आप सभी के लिए फिल्म का ये आखिरी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: सुनोगे?
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे उज़्बेकिस्तान ते किर्गिस गणराज दे अपने 4 दिना दौरे लई रवाना हो गए ने। भारत अर्जेंटीना सांझी व्यापार कमेटी दी चौथी मीटिंग ब्यूनो आयरस विच हुई। मीटिंग विच स्थापित कार्य योजना दी समीक्षा की गई। भारत दियां सब तो महान खेड शख्सियतां विचों इक मेजर ध्यान चंद दे जन्म दिन मौके अज देश भर विच राष्ट्रीय खेड दिवस मनाया जा रहा है। नेपाल विच आए भयानक हड़ां कारण मरण वाले दी गिणती वध के 626 हो गई है, जबकि 2000 तो वध लोग अजे भी लापता ने। ते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजशकिया ने कहा है कि जेकर अमरीका शांति समझौते दियां शर्तां दी पालना करता है तो ईरान भी अपनी वचनबद्धतावां नूं पूरा करेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे उज़्बेकिस्तान ते किर्गिस गणराज से अपने 4 दिना दौरे लई रवाना हो गए ने। अपने रवानगी बयान विच श्री मोदी ने विश्वास प्रगट किया कि उज़्बेकिस्तान ते किर्गिस गणराज दी उन्हां दी यात्रा मध्य एशिया विच भारत दी रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करेगी अते खेतर नाल सभ्यता ते संपर्क नूं होर डूंघा करेगी। उन्हां कहा कि हाल ही दे सालां विच भारत उज़्बेकिस्तान रणनीतिक भाईवाली विच अहम तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नाल व्यापार ते निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा, ऊर्जा विच सहयोग नूं होर डूंघा करन अते विकसित भारत ते यांगी उज़्बेकिस्तान दे सांझे दृष्टिकोणां नूं अगे वधाउण ते चर्चा दी तांग रखदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि किर्गिस गणराज के राष्ट्रपति सादिर जाबारोव के सदे ते 26वें SCO सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई बिश्केक जाणगे। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क अते मौकियां ते आधारित इस खेतर लई भारत दे दृष्टिकोण नूं अगे वधाउण अते दहशतगर्दी, वक्खवाद ते कट्टड़वाद दे कहर तों मुक्त खेतर लई साथी मैंबरां नाल काम करन दी उम्मीद कर रहे ने। प्रधानमंत्री दी यात्रा दौरान दुर्लभ धरती खनिजां विच सहयोग बारे महत्वपूर्ण फैसलें बारे काफी चर्चा होने की उम्मीद है। आकाशवाणी खबरां नाल इक इंटरव्यू विच उज़्बेकिस्तान विच भारतीय राजदूत स्मिता पंत ने कहा कि उज़्बेकिस्तान कुदरती वसीलियां नाल भरपूर है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताशकंद यात्रा विच खनन अते दुर्लभ धरती खनिज खेतरां विच निवेश ते तकनालोजी तबादले ते भी चर्चा की जाएगी।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत अर्जेंटीना सांझी व्यापार कमेटी की चौथी मीटिंग

0: ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिया के फौरन बाद यह प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर होगा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज सुबह तक 626 हो गई थी, जबकि 2000 से ज़्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। पुलिस ने चितवन से 233, नवलपरासी ईस्ट से 158, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धादिंग से 45, नोआकोट से 41, तनूह से 31 और रसुआ से 13 लाशें बरामद की हैं। मुतासर अजला में बचाव और इमदादी कामों के साथ साथ लापता अफराद की तलाश जारी है। बचाए गए अफराद को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है। वजारत खारजा ने कल बताया था कि 320 भारतीय बाशिंदों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है या वो बुध को अचानक सैलाब में लापता हो गए थे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत नजाद अफराद से भी, जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियत है, कोई राबता कायम नहीं हो सका है। वजारत खारजा के तर्जुमान जनाब जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली पनबिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय बाशिंदों को बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा है कि चीन की तरफ वाले इलाके में 400 के करीब भारतीय बाशिंदे महफूज हैं और उन्होंने अपने कुंबे वालों से राबता कायम कर रखा है। सरकार ने वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो रात दिन काम कर रहा है। काठमांडू और बीजिंग में भारत के सफारतखाने बाहमी तालमेल से काम कर रहे हैं। काठमांडू में वाकई भारत के सफारतखाने का ये नंबर है +97798513106607, +97798091705000, +97798103211107। पीचिंग में भारत के सफारतखाने का नंबर ये है +86185182845। इसी दौरान भारत ने नेपाल को इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के काम में और तेजी कर दी है। 10 टन की इमदादी सामान लेकर भारत की तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू पहुंची। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीखी मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज़्यादा के तस्दीकशुदा खाम तेल के ज़खायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि यह मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के ज़खायर 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएंगे। भारत की खेलों की एक अदीम शान शख्सियत मेजर ध्यानचंद का योम पैदाइश आज मुल्क भर में खेलों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के खेलों के मालामाल विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो खेलों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का दिन 1 घंटा खेल के मैदान में मौजू के तहत मनाया जा रहा है और इसके 3 अहम सुतून तय किए गए हैं, प्ले, ट्रिब्यूट और मूव। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली में मरकजी वोदरा डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की शानदार कारकर्दगी आने वाली नस्लों को हौसला फराहम करती रहेगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को गुलहाय अकीदत नजर किए। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश मनाने के लिए हर साल खेलकूद का कौमी दिन मनाया जाता है।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है, लाखों की संख्या हर गली में मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा।
0: ईरान के सदर मदूद पेशरज़ग्यान ने कहा है कि तेहरान अमरीका

0: अमेरिका के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है, साथ ही वो मोहतात भी है। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर अमेरिका समझौते का एहतराम करता है तो ईरान भी उसकी पासबानी करेगा। ईरान के सदर ने कहा है कि जून के अमन समझौते के मफाहमतनामे को फिर से सरगर्म करने के लिए सिफारती कोशिशें मरकूज की जा सकती हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने पीर तक के लिए ओडिशा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, मगरबी बंगाल के गंगा वाले इलाके, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कौमी राजधानी में अगले 7 दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में किसी खातिर ख्वाह तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौवियत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल माहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान के साथ अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मोहतात है। और आज खेल कूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani, and I'm Shagun Chopra with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has embarked for his 2-day visit to Uzbekistan today. The Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. During the visit, both the leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said, in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital technology, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said that he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Centre at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. Let's go directly to our correspondent Sushil Chandra Tiwari in Tashkent to get more details about the visit. Sushil, what are the preparations to welcome the Prime Minister and how is the atmosphere there?
2: Well, Shagun, huge preparations are underway to welcome Prime Minister Narendra Modi here. Indian flags are flying everywhere in Tashkent, which is the capital of Uzbekistan. The hotel where the Prime Minister will stay also has the tricolor flag flying everywhere. Later in the evening, the Prime Minister will receive a traditional welcome from both Indian and Uzbek people. We know that the relationship between India and Uzbekistan is very friendly. It goes centuries back. and the people here are fan of India.

0: Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The finance minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मित

0: महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुनी से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्री पेजेस्कियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेस्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों

0: का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
3: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक

0: तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं 1970 के दशक की मशहूर फिल्म अभिनेत्री लीना चंद्रवरकर।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात हो और उसकी सबसे चुलबुली, हसीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हमारी लीना चंद्रवरकर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी मनमोहक मुस्कान और सहज अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली लीना जी का फिल्मी सफ़र किसी हसीन और प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है।

श्रोताओं, हमें भी याद है कि आज लीना चंद्रवरकर का जन्मदिन भी है। लीना जी को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बना रहे और वो हमेशा खुश रहें और लोगों को प्रेरणा देती रहें। लीना चंद्रवरकर का सफ़र जो है 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ। जब वो पर्दे पर आई तो उनकी सादगी और ताजगी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी इस अनोखी कशिश और शुरुआती सफलता को बयां करता है फिल्म मन की आंखें। इस फिल्म के गीत, जिसमें मिठास और जज्बात दोनों थे, इसने इंडस्ट्री में लोगों को काफी लोकप्रिय बनाया। और 1970 के दशक में ही लीना जी का नाम सफलता की गारंटी बन गया। उन्होंने उस दौर के तमाम बड़े सुपरस्टार

के साथ काम किया, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पलकों पर बिठाया। फिल्म महबूब की मेहंदी में जब उन पर ये सदाबहार गीत फिल्माया गया, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, तो उनकी ढलती जुल्फों और दर्द भरे भाव ने इस गीत को भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर बना दिया। लीना जी केवल गंभीर या भावुक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने चुलबुले और नटखट किरदारों को भी बेहद खूबसूरती से निभाया। फिल्म हमजोली का मशहूर बैडमिंटन सॉन्ग ढल गया दिन हो गई रात उनके चंचल अंदाज, ग्रेस और ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण है। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने इस गीत के जरिए हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया।

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
0: अच्छा जी।

श्रोताओं, प्यार की कोमल भावनाओं और शर्मीले एहसासों को पर्दे पर जीवंत करने में लीला जी माहिर थीं। जब फिल्म अजनबी में उन पर और राजेश खन्ना साहब पर बर्फ़ की ढकी वादियों में ये गाना फिल्माया गया, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, तो लीना जी की सादगी और मुस्कान ने इस रोमांटिक गीत में जान डाल दी। एक अदाकारा के रूप में उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया।

0: बता दूं?
1: हाँ, हाँ,
0: वो यहीं पर
1: नहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

श्रोताओं, फिल्मी पर्दों के साथ साथ लीना जी का जीवन, निजी जीवन भी सुरों और गीतों की गहराइयों से जुड़ा रहा। महान गायक किशोर कुमार के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन का एक बेहद खूबसूरत अध्याय बना। हालांकि लीना जी को अपने व्यक्तिगत जीवन में कई कठिन परिस्थितियों और दुखों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी अंदरूनी ताकत और मुस्कान को बनाए रखा।

श्रोताओं, लीना चंद्रवरकर का फिल्मी सफ़र सिर्फ एक अभिनेत्री की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि ये खूबसूरत गीतों, सादगी, हंसी और ज़िंदगी जीने के जज्बे का एक यादगार गुलदस्ता है। आज भी जब ये गीत रेडियो या स्क्रीन पर बजते हैं, तो लीना जी की वो मनमोहक मुस्कान हमारे दिलों में फिर से ताज़ा हो जाती है।

0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com।
1: जीवन भर

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 3 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम ब्रजमाधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, सावन को महीना तो बीत गयो पर देखो चातुर्मास में उत्सवन की त्योहारन की झड़ी सी लगी रहे।
0: हाँ,
1: भादो मास में सबसे अधिक कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक होए, जाकी तैयारी पहले ते ही आरंभ है जाए। हमारे यहाँ तो सखी खरबूजे के बीज महीना पहले ते छील के रख लिए जाए।
0: हाँ,
1: और फिर जन्माष्टमी पे स्वादिष्ट पाक तैयार की हो जाए।
0: बिल्कुल, देखो मथुरा तो सजनो शुरू है गयो है, कृष्ण जन्मभूमि पे तो रौनक हो ही है, पर नंदगांव में हूँ तो कितेक बढ़िया और कई दिनां तक चलबे बारो नंदोत्सव मनायो जाए। नंदोत्सव में जन्म ते नामकरण संस्कार तक की सभी लीला नंदगांव मंदिर में आयोजित करी जाए। और बहना,
1: हाँ सखी,
0: दही हांडी और शिवलीला देख के तो बड़ो ही आनंद आवे।
1: हाँ और सखी, भादो में शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज को व्रत हु स्वागन करे हैं सौभाग्य की कामना के काजे।
0: और बहना, वाके बाद मनाई जाएगी चट्टा चौथ, जाकू गणेश चौथ हूँ कह मैं, पर ब्रज में तो याकू चट्टा चौथ ही कहो जाए है। याद है बहना,
1: कहा?
0: हमारे स्कूल मोहल्ला में हम डंडाते चट्टा खेलो करते।
1: हाँ हाँ सखी, खूब याद है। डंडा ते डंडा बजाए के चट्टा खेलते और गुड़ और भुने गेहूं की गुड़धानी खाते।
0: बड़ी ही पौष्टिक होई गुड़धानी
1: और स्वाद हु लगे। और सखी, भादो मास की पंचमी यानी ऋषि पंचमी पे हु तो सुहागन स्त्री घास के तिनका ते ऋषि बनाए के पूजा करे हैं।
0: हाँ बहना, वे सप्तऋषि की पूजा करें। सप्तऋषि में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ जी की पूजा होए और व्रती निरोगी भाग्यवान बनवे की कामना करें हैं।
1: और सखी, भादो शुक्ल की षष्ठी पे तो ब्रज में बड़े मेले लगे, क्योंकि ब्रज में रक्षक बलदाव को जन्मोत्सव सबरे ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से मनामे हैं। और सखी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे तो लट्ठा को मेला हु तो रंगजी मंदिर में लगे है।
0: हाँ बहना, या में तो बड़ी अनूठी प्रतियोगिता होए, जा में एक स्तंभ पे मचान बनायो जाए और स्तंभ पे प्रतियोगी को चढ़ाया जाए, तो मचान पे जो गुसाई बैठे हैं ना, वहाँ पे तेल और हल्दी को मिश्रण डाले
1: हाँ,
0: जाते स्तंभ जो है
1: हाँ फिसल
0: फिसल ना आ जाए।
1: हाँ,
0: हाँ, वहाँ पे चढ़ना कितने कठिन हो तो होएगा।
1: बहुत हो है।
0: पर बहना देखो, श्रद्धा में वो ताकत है के हर दुविधा हु पार है जाए।
1: सांची कह रही हो सखी। और सखी, ब्रज में राधाष्टमी पे जो रौनक लगे ब्रज में, वह में हूँ तो बड़ा आनंद आवे।
0: देखो राधा अष्टमी पे तो बरसाना में जन्मोत्सव को आयोजन होए और नंदोत्सव की तरिया ही छठी तक जे उत्सव चले, बधायो गायन होए, समाज होए या ते पूरा बरसाना गूंज उठे, भक्ति को रंग हर ब्रजवासी पे और दर्शकन पे चढ़े के राधे राधे की गूंज चाहूं और सुनाई दे।
1: हाँ सखी, राधा अष्टमी पे तो आनंद बरसे ही है। और ब्रज में भादो मास की चतुर्दशी को भगवान विष्णु को अनंत के रूप में पूजा जाए और पीले रंग के अनंत धागा बाजू में बांधे जाए।
0: और बहना, एक और उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए है।
1: कौन सा सखी?
0: बहना, भादो माह में जो राधा जी की प्रमुख सखी है ना, ललिता जी, उनको ब्याहुलाहु होए ऊंचे गांव में। ऊंचे गांव में उनको बड़ो ही भव्य मंदिर है। कहे हैं कि ललिता जी ही वो सखी हती जिन्होंने कृष्ण और राधा की लीला करवाई। बहना, आप

0: एक गीत याद है,
1: कौन सा सा गीत?
0: मनिहारे को वेश बनायो
1: हाँ
0: ब्रज
1: याद है
0: चूड़ी
1: याद है,
0: बेचन आयो, है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ याद है सखी। वाह, मैं ललिता सखी तो पहल करे हैं और बुला के लावे हैं नटवर को।
0: तो सुनवाई दे या गीत को।
1: और कहा।

0: बताओ अभी आपने या प्यारे से लोकगीत को आनंद लियो। सखी तुम्हें पता है कि श्री राधा जी की अष्ट सखियां थी, वो अलग अलग सेवा करती हैं हिविन की,
1: हाँ
0: और ललिता सखी की सेवा थी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की मिलन की व्यवस्था कराना।
1: और बहना महाराष्ट्र से पहले भगवान शिव ने विनय अपना गुरु बनाया और वा के बाद ही वे गोपी बन के रासलीला में प्रवेश कर पाए।
0: हाँ, और ज्यों तो मान्यता है कि स्वामी हरिदास ललिता जी के अवतार हैं।
1: हाँ बहना, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की भक्ति माधुर्य भाव की हती। विनन्ने निकुंज लीला के पद रचे और सखी भावते राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार सेवा करी। विनके पद केलीमाल पुस्तक में संग्रहित हैं। विनन्ने चतुष ध्रुपद शैली की रचना करी और पद गायकें राधा कृष्ण को रिझायो।
0: हाँ सखी, इन भक्ति शिरोमणि में एक नाम और है,
1: कौन को?
0: वल्लभाचार्य, जिनको पुष्टि मार्ग के संस्थापक के रूप में जाने हैं, जो कृष्णोपासक है और कृष्ण बाल लीला को पूरे भारत में प्रचार किया। बिनकी प्रेरणा ते स्थान स्थान पे श्रीमद् भागवत को पारायण है वे लगो।
1: बिल्कुल बहना, एक बात और के वल्लभाचार्य महान भक्त हैवे के संग संग दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान हते। बिनन्ने ब्रह्म

0: सूत्र पे अणुभाष्य भागवत की सुबोधनी व्याख्या भागवत लीला रहस्य अंतःकरण प्रबोध इन जैसे अनेक ग्रंथन की रचना करी।
1: तो सखी आज स्वामी हरिदास जी और वल्लभाचार्य जी पे एक वार्ता अपने श्रोताओं को सुनवाए दे मैं।
0: बिल्कुल।
1: जाको विषय है ब्रज संस्कृति के प्रमुख स्तंभ स्वामी हरिदास और वल्लभाचार्य और वार्ताकार हैं मदन मोहन शर्मा।
2: अहम भक्त पराधीनो हय स्वतल रेज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्ति जग प्रिय साधवो हृदय मह्यम साधुना हृदय तो हम मदन्यत्य ते जानते नाहम तेभ्यो मना गपी। या प्रकाश तो भगवान कहे हैं कि मैं भक्तन के अधीन हूँ, मुझ में तनक हो आजादी ना है, सीधे साधे सरल भक्त मेरे हृदय में वास करें और मैं उनके हृदय में, यात्र है उनको और मेरा प्रेम एक ही है जाए। भगवत प्राप्ति के संसाधन में भगवान के मंगलमय नाम, उनको संकीर्तन, दिव्य रूप को चिंतन, ऐश्वर्यमयी और माधुर्य लीलान को वर्णन इतना आनंद है जिनको कोई सीमा ना है। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है। यो मद भक्त समय प्रिय भक्तिमान यह समय प्रिय, यह बात श्री कृष्ण ने उद्धव ते कही थी। वाक्य बाद हु यह भी स्पष्ट कियो न था मे प्रियतम आत्मा योग्रन शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च तथा भवान। इन्हीं भावनते ओत प्रोत दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्रामवासी भारद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मण यज्ञनिष्ठ महापुरुष श्री यज्ञ नारायण जी के संकल्प सोम यज्ञ फल स्वरूप सातवीं पीढ़ी में पिता श्री लक्ष्मण भट्ट के यहाँ और माता श्रीमती इल्लामा गारू के यहाँ पे वैश्वानर अवतार श्री वल्लभाचार्य जी को जन्म भयो हो। ये जन्म वैशाख कृष्णा एकादशी सम्मत 1535 में भयो हो। इनको नाम वल्लभ धर्यो और 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत और 13 वर्ष की आयु में वेदांत को अध्ययन करायो। या के बाद श्री विष्णुचित प्रभृति वैष्णवाचार्य थे भक्ति शास्त्र को ज्ञान प्राप्त कियो हो। पूरी बुद्धिमत्ता और विद्वता प्राप्त कर कृष्णदेव राजा के यहाँ विजयनगर में अनेक विद्वत समाज संघ इनको शास्त्रार्थ भयो। सभी विद्वान चकित भये और इन्हें बहुत सौ धन दे के सम्मान कियो और आचार्य जगत गुरु महाप्रभु की उपाधि से विभूषित कियो। या के बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य को श्री रुद्र संप्रदाय के मंगलाचार्य ने श्री कृष्ण कर्णामृत सार अष्टादश अक्षर मंत्र को जाप गोपाल मंत्र की दीक्षा देके पुष्टि मार्ग को अनुग्रह मार्ग भक्ति को लक्ष्य देके प्रचार प्रसार की आज्ञा दे ही। जैसे खुल गई आंखें अबिला के पहचान कीजे और दीजे जो बताये मोय पाऊ निज रूप है कही जाओ भाई ठोर देखो प्रेम लेखो हियो लिए भाव सेवा को मार्ग अनूप है देख के मगन भयो लियो उर्धार हरी नैन भर आये जान्यो भक्ति को स्वरूप है निषिदन लग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन है और पूरन चमत्कार कृपा वाकी अनुरूप है। गोपाल मंत्र अष्टादश अक्षर ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः के प्रभाव से श्री कृष्ण को दर्शन इन्हें वे लग गए हो। जब तक उनकी मान से सेवा मन को लगाए भी बारी लगे सो हमारे ब्रज की संस्कृति है वहां में अपने को रचपच करके करवे लगे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी को मन भक्ति ते ओतप्रोत हैवे लगे हो। श्री कृष्ण की सेवा को भाव को लेके वे तुरंत ही मथुरा के गोवर्धन में और गोवर्धन के पास जतिपुरा गांव आए गए है। वहां की रहनी सहनी देखी और वहां के ब्रजवासियों का हाव भाव देख करके श्री नाथ जी के मंदिर के सेवा संभार में लगे। आठों याम की सेवा पुष्ट मार्ग की अलग रूपरेखा है वहां में ये पूजा करते रहे। वहां के ब्रज की परंपरानुसार श्रृंगार करनो भोग लगानो राग गानो आदि की व्यवस्था करवे लगे। श्रीनाथ जी इनको भाई गए हैं और ये उनको भाई गए हैं। गुरुदेव नाभा जी ने सब प्रकार से पूजा पद्धति ब्रज की संस्कृति के आधार पर समझाई और वो वाई में रंग में रंग गए। जैसे ये मैं स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे धरे और जीवन जी जीवन को दीजिए सो ये ले प्रकाश घर घर में विलास कियो अति ही होलास फल नैनन को लीजिए चातुरी अवधनेक आतुरी न होते कहूं चहूं तिस नाना रोग भोग सुख लीजिए बल्लभ जू नाम लियो प्रथु अब राम रीत गोकुल में धाम जान सुन मन रीजिए। ये श्रीनाथ जी के जो अब नाथ द्वारा राजस्थान में वास कर रहे हैं उनकी सेवा है विलगी है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को जन कल्याण की सेवा और प्रभु की मान से सेवा में बहुत ही आनंद मिले हो। वासो गुरु कृपा और श्रीनाथ जी कृपा सो ब्रज संस्कृति की परंपरा ते मन निर्मल है गयो और जो बात

वो बतावे हैं वो सच्ची है जाइए। एक बार एक संत इनके यहाँ ब्रज दर्शन करवे आए, ब्रज रज को स्पर्श कियो, गिरिराज दर्शन कियो, बरसानो नंदगाम वृंदावन होते हुए जतियो पर आप पहुंच गए, श्री नाथ जी को दर्शन कियो और वल्लभाचार्य जी से मिले, ब्रज की सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानकारी ली, ठाकुर जी संत के बटुआ में विराजमान है, उन्हें चुपचाप जाके पेड़ पर लटकाए दियो हो, जब वो सेवा करवे लगे तभी हमारा बटुआ की जब याद आई तभी उनसे पूछी मैं बटुआ को लाऊं, जब बटुआ लेवे गए तो वहां बहुत से बटुआ दिखाई दिए। यह प्रकार को देख करके उन्हें समझ गए कि इसी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को ही आनंद प्राप्त है रहो। महाप्रभु से पूछने लगे कि महाराज मेरे बटुआ कहाँ, जो देख लो ना इनमें से छांट लो, उनकी कृपा से बटुआ प्राप्त भयो। सो समझ गए कि श्री कृष्ण को जो कथन है वो सत्य है। ब्रज ब्रज वासी नदी गिर पशु पक्षन को संग, ये सब मोको अति प्रिय है ये ही मेरे अंग। श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य अष्ट छाप के कवि श्री परमानंद दास, कुम्मन दास, सूरदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी आदि भय जो श्री नाथ जी के साथ नित्य प्रति खेलो करे। श्री वल्लभाचार्य जी की महालक्ष्मी से विवाह कियो, उनके दो पुत्र प्राप्त भय गोपीनाथ और विठलनाथ, इनसे ब्रह्मसूत्र से अनुभाष्य लिखियो और भागवत के दशम अध्याय की सुबोधनी की टीकाऊ लिखी, चित्रकूट में वाल्मीकि रामायण को पारायण कियो, वहां में श्री राम जी ने स्वयं आकर के इनको दो केलान को प्रसाद दियो, अपने जीवन की अल्पावधि जान करके पत्नी से संन्यास की आज्ञा ली और जब आज्ञा मांगी तो पत्नी ने आज्ञा नहीं दी, वाके पश्चात इनकी कृपा से घर में आग लगी तो पत्नी कहने लगी यहाँ से चले जाओ, बस याकू आज्ञा मान करके घर से निकल गए और वहां जाकर के सन्यासी बन गए और आषाढ़ शुक्ला तृतीया को 1587 में गोलोकवासी है। शिवा के बिहारी मंदिर में श्री राधा जी की आजकल गद्दी है, वो अकेले नहीं रह रहे, राधा जी गद्दी सेवा हो है भी लगी। श्री वल्लभाचार्य जी श्री हरदास जी ब्रज संस्कृति के निम्बा समुदाय के दीक्षित रहे हैं और बाद में वल्लभाचार्य बल्लभ कुल पुष्टि मार्ग की श्रीनाथ जी की मदन मोहन जी चंद्रमा जी की सेवा के अधिकारी बने हैं। श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरदास की, जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी लाल की, अवलोकित रह केल सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिथि पोसे। स्वामी हरदास ब्रज संस्कृति परंपरा के संवाहक हैं, उनकी संगीत कला शास्त्रीय संगीत के अनेक रागन में निबद्ध ही, ओरछा के राजा के यहाँ तानसेन संगीत के मर्मज्ञ विद्वान रहे, उन्हें दीपक राग, मेघमधार राग, ध्रुपद धमार, असावटी राग सब आवे हैं। जब उनने हरदास जी की संगीत कला के बारे में सुनो सोई वृंदावन आए, उनको दर्शन करके उनके मेघ राग गाते हुए मेघमाला वर्षा करवे लगी, वासे स्थान से उनके जाके शिष्य बन गए हैं। और राजा अकबर इन दोनों संगीत कला से प्रभावित होकर के जब उनके संगीत की तान सुने तो राजा अकबर आत्मविभोर रह जाए, देह दशा को भूल जाए। तानसेन ने स्पष्ट कियो कि मैं तो हरदास जी के संगीत के सिंधु के समक्ष एक बिंदु हूँ, न बनू हूँ। स्वामी हरदास रास रस में बखान कौन कर सके, रसिकता छाप जोई आप मत पाई है, लायो कोई शोभा वाको अति मन भोवा, वामे डार्यो है पुलिन ये खोबा ये आइये। हरदास जी ललता सखी के अवतार माने जाए, उनको रसिक श्रोमणि हो कहो जाए, संस्कृति की पूजा पद्धति संगीत भोग राग आरती को जो आनंद भक्त श्रद्धालु समाज को दियो वह अन्यत्र देखने को न्याय मिले है। श्री नाभादासी लिखो है आचरज ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी, और श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो न कारज, और भगवत सब सुख दान प्रकट भय रसिक आचार्य। श्री हरदास जी बांके बिहारी की

0: नैन रूप रस माते खंजन नैन बैन रस माते रूप सुधा सागर की आरती की जय। नव नागर की पान खा तुम उसी का तो मनोहर सुख सुषमागर की आरती की जय। नव नागर की श्री दंपति सखी आरती की जय। नैन सेने उजागर की आरती की जय। नव नागर की ऐसे ही देखते रहो जन्म सफल कर मानो प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो छिन न टरो पल छो न इतो तो रहो एक ही बानो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। या प्रकार से आरती को भाव आज तक चली आ रही है। ये भाव संसार में केवल विश्व में श्री बांके बिहारी की जो आरती प्राणी करे हैं उनको हर प्रकार के सुखन की प्राप्ति है जाए। या प्रकार से ब्रज संस्कृति एवं ब्रज भाषा के प्रचार प्रसार के इन दोनों महानुभावन ने बड़ो योगदान दियो है। ऐसे ही श्री ग्वारिया बाबा अखंडानंद सरस्वती उड़िया बाबा पागल बाबा हरिबोल बाबा मुकुंदरी जी श्री हरिराम व्यास जी आदि ने श्री बांके बिहारी लाल के अनेक प्रकार के गुण गान किए हैं। और वाकई ब्रज की जो पूरी राधा कृष्ण की रास लीलान को जो आनंद है वो परंपरा भी इन रास लीलान के स्वामी श्री मेघ श्याम जी लक्ष्मण स्वामी जी श्री रामस्वरूप जी श्री हरगोविंद आदि के पूर्ण सहयोग दियो। तभी तो यह ब्रज संस्कृति द्वापर से 5253 साल से चली आ रही है। या में उत्तरोत्तर भक्तन को आनंद रसकाचारण को भाव वा प्रकार से इनकी वृद्धि आजू है रही।
1: अभी आप सुन रहे हैं वार्ता ब्रज संस्कृति के प्रमुख स्तंभ स्वामी हरिदास और वल्लभाचार्य। बहना पंडित मदन मोहन शर्मा जी ने वल्लभाचार्य और हरिदास पे तो जानकारी दी, पर देखो जो उनने बात करी मेघ श्याम की राम स्वरूप जी की, तो उन ब्रज के रसकाचार्य ने आज के आधुनिक युग में हूँ ब्रज संस्कृति को प्रचार प्रसार कियो।
2: हाँ।
1: तो विदेशन में हूँ राधा कृष्ण के भक्त भक्ति में रम जामे नाचे हैं विभोर रह जाए।
2: हाँ, और केहू तो श्री कृष्ण की पसंदीदा वस्तु उनको धारण करें। जैसे कोई बंसी वादन सीखे, कोई पीताम्बरी धारण करके नाचे, कोई कृष्ण जैसे तिलक धारण करे, मतलब आज हो कृष्ण भक्त कृष्ण मंदिर में कीर्तन करत वही नाचे हैं
1: और बलिहारी जामे।

बेलियों के लिए हमारे ब्रज में सिंधारा आता है, तो उस सिंधारे में ससुराल से मेहंदी चूड़ियां सब शगुन की चीजें आती हैं। तो ये तो संसार के लिए है,

0: अभी आपने यह मधुर से गीत को आनंद लियो। अब यही के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। मोको यानी के वंदना को
1: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देव।
0: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
3: आइए सुनते हैं नाटक वो आखिरी खत, लेखिका हर्षिता पुरी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
4: कुछ रिश्ते नाम से नहीं बनते, कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों से बनते हैं। कुछ ऐसे ही दिल से बने रिश्तों की कहानी है वो आखिरी खत। ये कहानी एक छोटे कस्बे की है जहां डाकघर ही गांव की सबसे बड़ी खबर होती थी।
5: आ गई बिटिया, आज भी सबसे पहले।
6: काका, डाक छांटने का काम करना है ना, कोई इत्मीनान से बैठने का तो नहीं? अब भला लेट कैसे हो सकती हूँ मैं?
5: ये देख बेटा, जो आज फौज की डाक आई थी ना, उसमें अर्जुन बाबू का खत भी था उनके घर वालों के नाम। आज अर्जुन का जवाबी खत भी आ गया उसके घर से। कल सुबह डाक गाड़ी से पहले भेजना है। एक काम कर, आज रात अपने पास ही रख ले इसे।
6: ठीक है काका, मैं संभाल लूंगी। हूँ, अर्जुन बाबू का खत तो बिना नागा रोज ही आता है काका, पर इस बार लिखावट कुछ जल्दी में लिखी लग रही है।
5: अरे तू तो ऐसे देखती है जैसे लिखावट पढ़ना भी आता हो तुझे।
6: हाँ काका, पता नहीं क्यों इस खत की लिखावट मुझसे बहुत कुछ कहती है।
5: तभी तुम अर्जुन की चिट्ठियों को हमेशा तवज्जो देती रहती हो। हैं? होता है बेटा, ऐसा होता है, कभी कभी लफ्जों में छुपे जज्बात कहानियां बन जाते हैं।
6: ये ना आपका तजुर्बा बोल रहा है काका, आप तो पोस्ट कार्ड को छू के ही नहीं बल्कि सूंघ के बता देते हैं कि उसमें क्या लिखा है। है ना, सही कह रही हो ना?
4: रागिनी को खुद नहीं पता था कि कब वो सिर्फ काम की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से उन खतों का इंतजार करने लगी थी।
6: डाकखाना बंद करने का समय हो गया। क्यों ये पोस्ट कार्ड मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है? क्या ये इसकी सुंदर लिखावट है जो मेरी लगावट की वजह बनती जा रही है? कभी कभी तो दिल करता है कि इस खत के साथ कुछ खता की जाए, कुछ शरारत की जाए। ये जवाबी खत कल सुबह सरहद की तरफ चला जाएगा। क्या हो अगर मैं भी इसके आखिर में कुछ लिख दूं बिना अपना नाम बताए? पर क्या ये ठीक होगा? मैं क्या करूं? सिर्फ एक लाइन। इसमें हर चीज क्या है? हाँ, पता नहीं आप कौन है, मगर आपका खत पढ़कर लगता है जैसे कोई अपना ही खत लिख रहा हो।

उस रात रागिनी ने पहली बार घर वालों के उस जवाबी खत के आखिर में अपनी तरफ से एक पंक्ति जोड़ दी, बिना दस्तखत, बिना नाम, और यहीं से आगाज हुआ उस बेनाम कहानी का।

0: अनाम से रिश्ते का। सैकड़ों मील दूर सरहद के उस छोर पर अर्जुन को घर से एक डाक मिली। कहते हैं ना, दिल की आवाज दिल तक जरूर पहुंचती है। कुछ ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ भी। अरे अर्जुन, घर से खत आया है क्या? दिखा दिखा क्या लिखा है। अरे पढ़ के तो सुना जरा।
1: हाँ घर से ही है। अरे पहले मुझे तो पढ़ने दे। मगर ये किसके लिखा बैठे आखिर में?
0: किसी ने इश्क का पैगाम तो नहीं भेज दिया?
1: अरे नहीं वीरू, नाम तो नहीं है, बस एक लाइन लिखी है आखिर में।
0: अच्छा
1: पता नहीं आप कौन हैं, मगर आपके खत पढ़कर लगता है जैसे जैसे कोई अपना ही लिख रहा हो। अरे किसकी लिखावट है पता नहीं, कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? कौन होगा यार? है वीरू?
0: पता नहीं, कोई भी हो सकता है।
1: हाँ यार कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई मेरे साथ क्यों मजाक करेगा? और इसे एक लाइन ने तो मेरे दिल को छू लिया यार।
0: अरे छुपाओ मत जनाब, अब बता भी दो।
1: अरे नहीं यार वो बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझसे मजाक कर रहा है। हाँ।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जो भी है हम भी इसके साथ मजाक करते हैं।
1: सही कह रहा यार,
0: इसको जवाब लिखते हैं। चल चल लिखना। उस दिन अर्जुन ने भी अपने खत में एक पोस्ट स्क्रिप्ट को जोड़ दिया, एक अनजान लिखावट के नाम। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, अर्जुन के खत में एक पोस्ट स्क्रिप्ट होती और घर वालों के जवाबी खत में रागिनी की एक पंक्ति। ना नाम पता था ना चेहरा देखा था, मगर खतों का सिलसिला बढ़ता गया एक बेलगाम नदी की धार जैसा।
2: आज फिर लिखा है उन्होंने, हर बार लगता है जैसे कोई मुझसे ही बात कर रहा हो।
1: इस सरहद पर हर रात अकेली लगती थी, पर अब उस लिखावट का इंतजार रहता है।
2: काका, आज डाक जल्दी आएगी क्या?
3: तुम तो ऐसे पूछती हो जैसे मैं डाकिया नहीं हवा का परिंदा हूँ, झटपट तुझे खत ला के दे दिया करो। अरे भाई डाक गाड़ी आ रही है बस थोड़ी देर में।
2: कितना इंतजार रहता है उस अनदेखे अनजाने का, क्यों क्यों दिल बांधता जा रहा है प्यारी से बंधन। हर रोज रोज सुबह जब डाक खुलती है मुझे पता नहीं क्यों, मगर दिल बहुत तेज धड़कता है।
1: यहाँ रात के पहरे में जब कुछ नहीं दिखता, बस आपके शब्द ही रोशनी जैसे लगते हैं। आप न जाने कौन है, पर ऐसा लगता है मेरी अपनी है, मेरे बहुत करीब बहुत पास। आपके लिखे ये शब्द हर रात के अंधेरे से भारी लगते हैं।
2: जानते हैं, कल आपका खत पढ़कर सारी रात आसमान को ताकती रही, सोई नहीं पाई। पता है मैंने आसमान में एक तारा देखा और सोचा शायद आप भी उसी तारे को देख रहे होंगे। थोड़ी पागल हूं ना इसीलिए।
0: कुछ दिनों बाद एक और खत आया और इस बार अर्जुन ने आसमान की बात की।
1: जानती हो, आज मैंने वही तारा देखा और सोचा शायद कोई मुझे भी याद कर रहा हो, और चांद को कहा, ओ चंदा जाके मेरे उस चांद से चेहरे को रोशन कर दे ताकि मैं इस स्याह रात में भी उसको देख सकूं, महसूस कर सकूं।
0: अरे यार अब तो तू कवि बन गया लिखते लिखते।
1: अरे नहीं यार, वो वीरू क्या है ना कि कुछ शब्द खुद ब खुद आ जाते हैं।
0: और फिर एक खत

0: ऐसा आया जिसने दोनों के दिल की बात सीधे जुबान पर ला दी।
1: महसूस तो मैं भी आपको करना चाहती हूं अपने पास। अगर अगर कभी आपसे मिलना हुआ ना तो मैं आपका नाम नहीं पूछूंगी, बस यही कहूंगी कि आपका इंतजार मैं हूं, मैं जो आज आपके आपके सामने है। थाम लीजिए मुझे, थाम लीजिए।
2: अगर कभी मिलना हुआ तो मैं भी नाम नहीं पूछूंगा, बस इतना कहूंगा कि आपके शब्दों ने मुझ में वो एहसास जगाया है जिससे मैं अनजान था। ऐसा लगता है आप पास तो हो पर हकीकत में बहुत दूर हो, लेकिन हाँ, आपके खतों ने घर जैसा महसूस कराया है जहां भी रहा।
1: घर जैसा, ओह, यही शब्द काफी है मेरे लिए। दुआ में हाथ उठते हैं कि ये इंतजार बस अब जल्द खत्म हो, बहुत जल्द।
0: नाम अब भी नहीं पता था, मगर इंतजार अब सिर्फ डाक का नहीं रहा, इंतजार था एक दूसरे का। मॉनसून की वो शाम कुछ खास थी, हवा की महक, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू अपने साथ लपेटे थी, मानो अनदेखे प्रियतम प्रियतमा प्रेम अग्नि को बारिश से बुझा देना चाहते हों।
1: इतनी बारिश और इतने सारे खत, जल्दी जल्दी सब निपटा लो। हर लाइन में एक एक चेहरा दिखता है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, फिर भी वो अपना सा लगता है। बस अब इंतजार नहीं होता, क्या क्या कभी हम मिल पाएंगे, देख पाएंगे एक दूसरे को? पता नहीं, ये सब सोच सोच के दिल जोरों से धड़कता है। ऐसे लगता है मानो तुम मेरी नजरों के सामने हो। काश तुम भी होते इस बारिश में मेरे साथ।

0: उसी वक्त सरहद पर एक तारों भरी रात में अर्जुन भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहा था।
1: वीरू, याद है मेरी माँ भी एक गाना गुनगुनाती थी, अजनबी कौन हो तुम।
0: हाँ हाँ, वही वाला। तुम अब भी गुनगुनाते हो क्या?
1: कभी कभी। आज लगा जैसे कोई और भी वो गाना सुन रहा हो मेरे साथ। इस बार चिट्ठी तो लिख रहा हूं पर नाम नहीं मांगूंगा, बस इतना पूछूंगा कि क्या तुम भी मेरी तरह इन शब्दों में घर ढूंढती हो, इंतजार की आग में जलती हो, बारिश की बूंदों में मेरी यादों को भिगोती हो।
2: इनका खत, देखो क्या लिखा है। लिखा है, क्या तुम भी मेरी तरह इन शब्दों में घर ढूंढती हो, इंतजार की आग में जलती हो, बारिश की बूंदों में मेरी यादों को भिगोती हो। हाँ, मैं भी जलती हूँ विरह की आग में उसी तरह। हर बार जब आपका खत आता है।
0: उस रात बिना कुछ सीधे कहे दोनों ने एक दूसरे से वो कह दिया जो शायद आमने सामने कहने की हिम्मत कभी ना होती, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक रात सरहद पर हालात बदल गए, जंग छिड़ गई, मोहब्बत के मायने बदल गए। अब देश से बड़ा कोई महबूब न था।
3: अर्जुन, अर्जुन संभल कर, पीछे हटो। अरे वीरू, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी पोस्ट संभालो, पोस्ट। आज इन सबको हम जवाब देकर भेजेंगे। ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे हम हमारे देश की तरफ आंख उठाने की। वीरू, अर्जुन संभलो, संभलो, तुम दुश्मन के निशाने पर हो।
0: और उस रात के बाद अर्जुन की तरफ से कोई खत नहीं आया। बेचैन सी निगाहें थक भी तो नहीं रही थी, उम्मीद टूटने का नाम नहीं ले रही थी, पर इंतजार था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
2: काका, काका, इस हफ्ते कोई खत नहीं आया, सब कुछ ठीक तो है ना?
4: अरे बिटिया, कभी कभी डाक में देर हो जाती है, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा बेटा।
2: नहीं काका, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल कह रहा है, मैं पता कैसे करूं काका, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
4: अरे बिटिया, जंग छिड़ी है, डाक देर सवेर से आ रही है, पर तुम क्यों घबराती हो? देख, हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे।
0: रात के उस अंधेरे में सरहद का मोर्चा अचानक सुलग उठा था। हर तरफ धूल, धुआं और बारूद की गंध फैल चुकी थी।
3: अर्जुन, अर्जुन बंकर की तरफ बढ़ो, कवर लो।
5: अरे वीरू, वीरू दाई तरफ से देखो, देखो दुश्मन बढ़ रहा है, खबरदार रहो।
3: अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? कहाँ हो अर्जुन? कहाँ हो तुम?
0: वीरू बेतहाशा अर्जुन को ढूंढ रहा था। जंग में बर्बादी के निशान चारों ओर फैले थे। धूल का गुबार जब छटा तो वीरू की निगाह एक जगह जाकर ठहर गई। अरे ये तो अर्जुन है, बुरी तरह से घायल। अर्जुन, अर्जुन उठो, अर्जुन होश में आओ। अर्जुन देखो, देखो मैं वीरू, आंखें मत बूंदो,
6: मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं अर्जुन, अरे उठो यार, उठो, मेरी बात सुनो अर्जुन, उठो।
7: हेलो हेलो अल्फा चार्ली, कमांड पोस्ट कमांड पोस्ट, मेजर अर्जुन बुरी तरह से जख्मी है, मेडिकल टीम फौरन भेजो, रेस्क्यू करना है।
0: उस रात वीरू ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठाया, जीप में लिटाकर रेस्क्यू कैंप तक लाकर भर्ती कराया और मौत के मुंह से खींच लाया। फौजी अस्पताल के उस कमरे में जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर रह गई थी, जिसे मेजर अर्जुन को और गहरा और मजबूत करना था। अपनी हिम्मत से ना जाने कौन सी इच्छा शक्ति थी जो उसे जीवन की ओर खींच रही थी।
4: देखिए, काफी खून बह गया है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं इनके लिए, बेहद नाजुक हालत है इनकी। अगर यथास्थिति मेजर अर्जुन ये 24 घंटे पार कर जाते हैं तो उम्मीद और बढ़ जाएगी। वैसे मेजर अर्जुन बहुत बहादुर हैं, ही मस्ट फाइट बैक, होप फॉर द बेस्ट।
6: डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना?
4: देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, बाकी अब इनकी हिम्मत। अच्छा, इनका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ।
6: हाँ यार, मैं यही हूँ, हिलना मत, आराम से, मैं पानी पिलाता हूँ। थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया।
1: वीरू, मैं यहाँ कैसे, क्या तुम मुझे लेके आए थे यहाँ पर? वीरू, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। मेरी एक आखिरी तमन्ना पूरी करोगे?
6: ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम? तुम ठीक हो जाओगे।
1: देखो, मेरी जेब में एक पुराना खत है, अगर अगर मैं ना बचा तो।
6: मैंने कहा ना, तुम ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी, बस बस हिम्मत मत छोड़ना मेरे यार।
1: तुम साथ हो तो मौत को भी वापिस भेज देंगे मेरे यार, बस वो मेरे खत का इंतजार करती होगी। अरे उस बेचारी को तो कुछ कुछ पता भी नहीं कि, अच्छा अगर मैं खुद ना लिख पाऊं ना तो तुम लिख देना, बस उसे इतना कहना कि मैं ठीक हूं।
6: वादा है मेरा, मैं जरूर लिख दूंगा, अब चुप करके सो जाओ।
0: उस रात वीरू ने एक खामोश सी कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस अनजान लिखावट वाले रिश्ते को बेवजह तड़पने नहीं देगा। वो उस अनाम फरिश्ते को खत जरूर लिखेगा जिसे अर्जुन इस हालत में भी याद कर रहा है और भूला नहीं। दिन बीतते गए, हर सुबह रागिनी डाक घर में डाक छांटती और हर शाम खाली लौट आती। हर दिन आंखें उस खत का इंतजार कर रही थी जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर शाम खाली हाथ घर जाते उसका दिल डूबने लगता था, किसी अनहोनी की आशंका से मन कांप उठता था।

0: काका, काका अब तो जंग भी खत्म हो गई।
1: हाँ बेटा।
0: कोई खत नहीं आया, दिल बहुत घबरा रहा है। अगर अगर कुछ कुछ हो गया तो?
1: ना ना ना बेटिया ना, हालात दुरुस्त होने में समय लगता है बेटा, हिम्मत रखो।
0: काका बस सिर्फ इतना बता दे कि वो ठीक है बस।
1: अरे बिटिया, देखो आज दाग तो आई है मगर लिखावट जानी पहचानी नहीं लगती मुझे।
0: दिखाइए ना काका,
1: देखो
0: मुझे दिखाइए।
1: ये देखो,
0: ये इसे मैं पढ़ती हूँ।
1: पढ़ो।
0: अनाम दोस्त, मैं वीरू हूँ, अर्जुन का साथी सिपाही।
2: अर्जुन जख्मी हो गया था मगर अब ठीक है। वो छुट्टी पर घर लौट रहा है। उसने कहा था अगर वो खुद ना लिख पाए तो आपको जरूर बता दूं। ट्रेन का नाम और समय लिख भेज रहा हूं।
0: हो सके तो मिल लेना।
1: देखा बेटा। हाँ बेटा।
0: काका वो ठीक है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा,
0: वो बिल्कुल ठीक है।
1: देखा बेटिया, मैंने कहा था ना बेटा।
0: काका पता है वो आ रही है। आज आज मेरी दुआ कबूल हो गई। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र है
1: बेटा।
0: ठीक है काका, वो ठीक है, वो आ रही है।
1: अरे बेटा आप तो खुश है ना, मैं ना कहता था सब ठीक होगा। ईश्वर बड़ा दयालु है बेटा।
0: हाँ काका,
1: प्यार करने वालों पे अपनी रहमत जरूर बरसाता है।
0: सच कह रहे।
2: कुछ दिनों बाद कस्बे के छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। यहाँ आज

0: उम्मीदों को पंख मिलने वाले हैं, समय काटे नहीं कट रहा है। रागिनी और रामलाल काका अरसे से बुने किसी सुनहरे सपने के सच होने का इंतजार कर रहे हैं।
1: माफ करना, इस बार खत थोड़ा लेट हो गया।
2: कोई बात नहीं, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, आप जरूर आएंगे एक दिन। संभल के लाइए सामान, हम पकड़ लेते हैं।
1: लेकिन आपने पहचाना कैसे कि मैं ही?
2: नाम नहीं जानती थी, मगर लिखावट से पहचान गई थी कि दिल कैसा है, चेहरा कैसा है।
3: कैसे हो बेटा? ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम ठीक ठाक वापिस आ गए।
2: वैसे अब तो अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ, क्यों नहीं, अब इतने दिनों से तो आपने पूछा नहीं। पर पहले मैं तो जान लूं कि इतनी प्यारी सी सूरत और सीरत को लोग किस नाम से पुकारते हैं।
2: रागिनी है मेरा नाम।
1: मेरा नाम अर्जुन है।
2: आप तो अपने नाम जैसे ही हैं, बिल्कुल बहादुर, किसी से ना डरने वाले और हर बार जीत कर आने वाले।
1: अच्छा रागिनी, मैं आपको एक खत पढ़कर सुनाऊं?
2: जी।
1: जो आप ही ने लिखा था। पता नहीं आप कौन है, मगर आपके खत पढ़कर लगता है जैसे कोई अपना ही लिख रहा हो। यही थी ना वो पहली लाइन?
2: यही थी वो पहली लाइन, और आज भी यही सच है, यही सच।
1: हाँ रागिनी, हाँ यही सच।
0: कभी कभी दो दिल बिना नाम जाने भी एक दूसरे को पूरी तरह जान लेते हैं। ना चेहरा देखा था, ना आवाज सुनी थी, फिर भी हर खत की हर पंक्ति में जानी पहचानी धड़कन छुपी रहती थी। शायद मोहब्बत को कभी नाम की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस एक सच्चे शब्द की जरूरत होती है जो सीधा दिल तक पहुंच जाए।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक वो आखिरी खत। लेखिका थी हर्षिता पुरी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, अर्जुन कौशिक, सुनीता ठुकराल और धर्मवीर गुप्ता।
5: आप सुन रहे थे नाटक वो आखिरी खत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
6: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है, कुछ खो गया है क्या?
7: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
6: अरे क्या खो गया है?
7: इस बोतल का पानी, जो अब नहीं है। तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
6: अरे सीट गर्म हो गई थी।
7: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
6: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
7: जा ढूंढ, आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
6: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
7: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
6: बात तो तेरी काम की लगती है।
7: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने को हैं, अब से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजेश्कियन ने कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेश्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। एक अलग संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों तथा बाजार के प्रबंधन सहित आर्थिक और जनजीवन से जुड़ी चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने भारत क्यों, अभी क्यों रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। श्री मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a two-day visit. The Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. Prime Minister Modi said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defense, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi, Uzbekistan. Mr. Modi said that he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Police has recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Gorkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Darding, 41 in Nuwakot, 31 in Tahun, and 13 in Ruswa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safe locations. Additionally, the search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods. The Ministry of External Affairs yesterday said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Nepal President Ramchandra Podel today expressed gratitude to his Indian counterpart Draupadi Murmu for her concern and the support extended by the government of India following the devastating flash floods in Nepal that left hundreds dead and caused widespread destruction. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. She highlighted India's broad-based growth, reform momentum, and expanding opportunities for long-term investment. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure, technological advancement, and a decade of consistent reforms. 27 people have been reportedly killed following a Russian attack on the Bukha district close to the Ukrainian capital of Kyiv. According to local regional military administration, at least 50 residential buildings had been damaged in the overnight drone attack, which also sparked a large-scale fire that spread to homes and a restaurant. National Sports Day is being celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest sporting icons, Major Dhyanchand. It is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of Tribute, Play and Move. Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम राजकुमार है। ये देव कुमार के पुत्र हैं। निवासी ग्राम उतेरा, पुलिस स्टेशन गोपेश्वर, जिला चमोली। इन्हें अंतिम बार दिनांक 10 जुलाई 2026 को रात्रि 2 बजे ग्राम अकबरपुर में देखा गया। इनकी आयु 50 वर्ष है। इखरा शरीर है, रंग गेहुआ है, आँख कान नाक औसत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं एवं गढ़वाली भाषा बोलते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम अंशुमान है। ये मीना के पति हैं। निवासी E177 पाई प्रथम गुलमोहर स्टेट, पाई प्रथम थाना बीटा 2, गौतम बुद्ध नगर। हाल पता बिरौंडी, चक्रसेनपुर, थाना सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 27 जून 2026 को इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 42 वर्ष है। कद 5 फीट 8 इंच है। शरीर की बनावट औसत है। चेहरा गोल है एवं रंग सांवला है। इन्होंने अंतिम बार सफ़ेद पैंट एवं सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई युवती का पूरा नाम कशक है। ये विनय मेहरा की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 7 जुलाई 2026 को सेक्टर 8 सुअर मार्केट के पास नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। कशक की आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट मजबूत है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना प्रभारी थाना फेस 1 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम प्रदीप है। इन्हें अंतिम बार दिनांक 14 जुलाई 2026 को हरौला सेक्टर 5 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। प्रदीप की आयु 25 वर्ष है। शरीर की बनावट मजबूत है एवं कद 5 फीट 5 इंच है। चेहरे का रंग गोरा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 1 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम अरुण है। ये सुनील के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 21 जुलाई 2026 को इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 28 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। अरुण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम चिराग है। इनका पूरा नाम चिराग यादव है। ये अजयपाल यादव के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार C77 सेक्टर 82 नोएडा में देखा गया। इनकी आयु 25 वर्ष है।

की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 5 इंच है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम प्रेरणा है। ये राहुल कुमार की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार सिटीटेक स्टेडियम सोसाइटी सेक्टर 77 में देखा गया। इनकी आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 113 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में लापता युवती का पूरा नाम नंदिनी है। ये श्रीराम निवास की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है। कद 4 फीट 7 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 5,000 रुपये की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: दिन कर सकते हैं। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में आवश्यकता है इन दो पदों को भरने की। उपनिदेशक सतर्कता पाठ्यक्रम तथा सहायक निदेशक कार्यालय प्रबंधन। पात्रता शर्तों के विवरण और शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, तैनाती के स्थान एवं वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.istm.gov.in। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में आवश्यकता है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के पद को भरने की। योग्यता, अनुभव, आयु तथा अन्य नियम और शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन संस्थान की इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है www.sgpgims.org.in। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय नागरिकों से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में सदस्य के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सदस्य को 5,00,000 रुपए का समेकित मासिक वेतन देय होगा। उन्हें आवास तथा सरकारी वाहन की सुविधा का अधिकार नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र, अर्हता शर्तों, अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग इन पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए 80 रिक्तियां उपलब्ध हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक नियमों, शर्तों, योग्यता, आरक्षण, वेतन और तैनाती के स्थान के विषय में जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है upscionline.nic.in। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट upscionline.nic.in पर जाएं और चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना के साथ विस्तृत भर्ती विज्ञापन आप उस पर देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता क्रम में सूची सहित परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग की वेबसाइट का पता है www.upsc.gov.in। कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, संस्थानों, केंद्रों में उपलब्ध सहायक प्रोफेसर के शिक्षक पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विषयों और विभागों का विवरण इस प्रकार है: अरबी, जैव रसायन, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा, अर्थशास्त्र, शिक्षा, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विदेशी भाषाएं, भू सूचना विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, इकबाल संस्कृति एवं दर्शन संस्थान, विधि, आजीवन अधिगम, फारसी, राजनीति विज्ञान, उर्दू एवं प्राणी विज्ञान। अनिवार्य अर्हताओं, पदों के आरक्षण तथा अन्य नियम और शर्तों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन और सूचनाएं आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.kashmiruniversity.net। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रेनू कटारिया।
2: हेलो हेलो, यस हेलो वैष्णवी, एंड हेलो टू एवरीवन हु इज लिसनिंग अस एंड आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेनू कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय ब्यूटिफुल एंड क्यूट लिटिल को होस्ट वैष्णवी। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट वैष्णवी।
1: जी बिल्कुल।
2: Prime Minister Narendra Modi embarks on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia.
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता, भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई।
2: US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela.
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने कहा ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है।
2: नेशनल स्पोर्ट्स डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी पेज ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद एंड सल्यूट्स डेडिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स।
1: और उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
2: And now, dear listeners, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we are going to talk about National Sports Day.

0: Today is August 29, a day when the entire nation celebrates the spirit of sports, fitness, determination, and of course the legendary hockey player Major Dhyan Chand.
1: रेनू खेल जो है वो केवल मेडल, ट्रॉफी और टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है। ये हमें अनुशासन, मुश्किलों का सामना करने, टीम के साथ मिलकर काम करने यानी टीम वर्क और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का हौसला सिखाते हैं।
0: वेरी ट्रू वैष्णवी, एंड वेदर इट इज अ चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल, अ टीनेजर रनिंग ऑन एन एथलेटिक्स ट्रैक, एन एडल्ट पिकिंग अप अ बैडमिंटन रैकेट और अ सीनियर सिटीजन एंजॉयिंग अ मॉर्निंग वॉक, स्पोर्ट्स ट्रूली बिलोंग्स टू एवरीवन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। 29 अगस्त को भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
0: जी, हिज नेम इज सिनोनिमस विद एन एरा व्हेन इंडियन हॉकी डोमिनेटेड द वर्ल्ड। ध्यानचंद वाज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज ओलंपिक गोल्ड विनिंग कैंपेन्स इन 1928, 1932 एंड 1936।
1: अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने सैकड़ों गोल किए और असाधारण कौशल, अनुशासन और खेल भावना के प्रतीक बन गए।
0: एंड यस प्लीज कैरी ऑन।
1: रेनू, अगर हम वैसे ही ध्यानचंद के बारे में बात हो ही रही है तो हम अक्सर ये जानते ही हैं कि सुना भी है कई बार कि उनके खेल की इतनी सटीक, मतलब ये होता था गोल की लोग सोचते थे कि कहीं उनके स्टिक में किस तरह का मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है कि बॉल उसी के साथ जैसे वो खेलते हैं उसी तरफ।
0: वेरी ट्रू, एंड यस वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट दिस कि उनकी स्टिक को एक बार जो है देखा गया था कि कहीं उसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं है। तो यहाँ पर क्यों ना वी हैव अ स्मॉल स्निपेट फ्रॉम प्रसार भारती जहाँ पर मेजर ध्यानचंद अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो लेट्स लिसन इन टू दैट फर्स्ट।
1: बिल्कुल।
2: रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय एक मारने के, अभी ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों
3: ने। काफी इम्प्रूवमेंट्स उनके,

0: तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंटी तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता.
1: And you know, that is why National Sports Day is not simply about remembering a sporting hero. We have heard Major Dhyanchand speak about this himself over here. It is about remembering the values he represented: dedication, excellence, humility, and a never give up attitude.
2: वैसे तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत आधिकारिक रूप से वर्ष 2012 में हुई थी. हर साल ये दिन देश की खेल उपलब्धियों का जश्न मनाने और लोगों को शारीरिक गतिविधियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है.
1: एंड दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स इंडियाज रिच स्पोर्टिंग हेरिटेज एंड एनकरेजेस पीपल टू मेक स्पोर्ट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डेली लाइव्स. वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पोंडेंट.
3: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
4: Aaj National Sports Day ke avsar par.
3: The occasion of National Sports Day, a 1 hour sports activity has been organized across the country to promote the fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा.
3: मिस्टर मेघवाल सेड ही प्लेज बैडमिंटन एवरी डे. ही सेड स्पोर्ट्स हेल्प पीपल रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग स्ट्रेस अवे. द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विद द रिजल्ट्स इंक्रीजिंगली विजिबल ऑन द ग्लोबल स्टेज. इंडियाज परफॉर्मेंसेज एट मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज ग्रोइंग स्ट्रेंथ अक्रॉस ओलंपिक पैरालंपिक एंड मल्टी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklena Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: And Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi also extended his greetings to all sports lovers. The Prime Minister said that their dedication, passion and determination makes the nation proud.
5: Sports mein koi loser nahi hota. Sports mein sirf winners और लर्नर्स होते. स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल, स्पिरिट यूनिवर्सल. स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है. स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है. देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर. खेलो इंडिया जैसे अभियान गांव, गरीब, आदिवासी और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के सपने साकार कर. 2014 में हमने टॉप यानी टीओपीएस यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था. इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया.
2: रेणु, लेकिन खेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: ये बता देते हैं हम आपको. फॉर स्टार्टर्स, वैष्णवी, स्पोर्ट्स कीप आवर बॉडीज हेल्दी. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स, हेल्प मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल. एंड दिस इज वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू अस इंडियंस. हमने देखा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी मसल डीजेनरेशन होती जाती है. सो unless and until we don't keep ourselves fit through sports, चाहे वो morning walks हो, चाहे आप थोड़ा yoga कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी sport खेल रहे हैं, we cannot maintain a healthy lifestyle.
2: बिल्कुल, और शारीरिक सेहत तक ही नहीं

0: बल्कि ये हमारे मन को भी स्वस्थ रखते हैं। इससे हमें तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीत के साथ साथ हार को भी स्वीकार करना सीखने में मदद मिलती है।
1: एंड देन देयर आर लाइफ लेसंस आल्सो वैष्णवी ओवर हियर ऑन अ स्पोर्ट्स फील्ड यू लर्न दैट सक्सेस रेयरली कम्स ओवरनाइट। आपको बहुत ही परसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करना होता है। सो लेट्स लिसन इनटू दिस इंस्पिरेशनल डायलॉग इन द वॉइस ऑफ ऋतिक रोशन फ्रॉम द मूवी वॉर।
2: मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो दौड़ो खेलो लड़ो सब कुछ, पर एक बार मैच खत्म हो जाए ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है देन यू आर अ विनर।
0: रेणु कितनी सही बात कही है इस मूवी में और कितना इंस्पिरेशनल है। खेल हमें अभ्यास करना सिखाते हैं, हार को स्वीकार करना सिखाते हैं, कोच के बात सुनना और टीम के साथियों पर भरोसा करना सिखाते हैं, और सबसे जरूरी बात, खेल हमें असफलता के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ना सिखाते हैं।
1: एंड दैट इज आई थिंक द वेरी वेरी कोर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑफ डिसिप्लिन, एंड दैट इज रेजिलियंस, दैट इज टीम वर्क, एंड दैट इज व्हाई स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर एथलीट्स बट फॉर द सोसाइटी एज अ होल।
0: बिल्कुल, अगर खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो देश का खेल जगत तेजी से बदल रहा है।
1: एब्सोल्युटली, फ्रॉम एथलेटिक्स एंड शूटिंग टू बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हॉकी एंड सेवरल अदर डिसिप्लिन्स, इंडियन एथलीट्स आर इंक्रीजिंगली मेकिंग द प्रेजेंस फेल्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज।
0: बिल्कुल, जैसे हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स ने भी देश को जश्न मनाने का एक और मौका दिया। रेणु, अगर हम ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के भारत में प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कुल 29 पदक जीते थे जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहा।
1: एंड हियर बॉक्सिंग प्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलरली स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। इंडिया वन 7 बॉक्सिंग गोल्ड मेडल्स, इज बेस्ट एवर बॉक्सिंग गोल्ड हॉल एट अ सिंगल कॉमनवेल्थ गेम।

0: मेजर ध्यानचंद ने दुनिया को दिखाया कि खेल के प्रति समर्पण और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। आज भारतीय खिलाड़ियों की नई पीढ़ी भी दुनिया को बता रही है कि भारत क्या कर सकता है। खेल के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक और स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक भारत की खेल यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब देश के अलग अलग मैदानों में नई पीढ़ी सपनों के पीछे दौड़ रही है तो उनमें कहीं ना कहीं उस जादूगर की छवि भी दिखाई देती है जिसने एक सदी पहले हॉकी की स्टिक से भारत का नाम दुनिया के खेल मानचित्र पर दर्ज किया था।
1: एंड हियर वैष्णवी, इट इज नॉट अबाउट द बिगेस्ट विक्ट्री विच इज नॉट ऑलवेज अ गोल्ड मेडल बिकॉज स्पोर्ट्स टीचर्स आर समथिंग दैट स्टेज विद अस लॉन्ग आफ्टर द फाइनल विसल। So dear listeners and all the elderly people also all listening to us, please play hard and stay healthy. And please ask yourself, not the question, can I become a champion, but what sport or physical activity can I make a part of my life?

0: रेणु, अब समय है कार्यक्रम के आगे बढ़ाने का और अगले पड़ाव पे जाने का। अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है।
1: एंड वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन रूट टू उज़्बेकिस्तान फॉर अ टू डे विजिट। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट ताशकंद एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान मिस्टर शफकत मिर्जियोयेव।
0: उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों, गानों, टीवी सीरियल की दीवानगी तो है ही, इसके अलावा लोगों में भारतीय भाषा को सीखने का भी बहुत उत्साह है।

0: आम बड़ी संख्या में छात्र हिंदी पढ़ते हैं और तमाम अध्यापक भी भारत में पढ़ाई कर चुके हैं। जनवरी 2023 में चार उज्बेक हिंदी विद्वानों ने नाडी यानी फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज की निलुफर खोदजेवा को विदेश मंत्री द्वारा हिंदी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में डॉक्टर नीलुफर ने बताया कि कैसे हिंदी के प्रति वे आकर्षित हुई, उन्होंने किस तरीके से प्रेमचंद के साहित्य पर अपनी शोध किया और आज वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ रही हैं, वहां के हिंदी विभाग की डायरेक्टर हैं।
1: मेरे लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये भारत की समृद्धि, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं और यहाँ के लोगों को समझने का एक माध्यम है। हिंदी ने मुझे भारत से जोड़ा है और मेरे जीवन तथा मेरी शैक्षणिक यात्रा में इसका एक विशेष स्थान है। मेरी शैक्षणिक और शोध यात्रा भी हिंदी तथा भारतीय साहित्यकार से गहराई से जुड़ी हुई है। मैंने महान हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद की रचनाओं के उज्बेकी अनुवादों पर पीएचडी की है। मेरे शोध का मुख्य विषय प्रेमचंद की रचनाओं के हिंदी से उज्बेकी अनुवाद का भाषिक और शैलीगत अध्ययन रहा है। इसके साथ ही हिंदी उज्बेकी अनुवाद, अनुवाद कला और दोनों भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में भी मैं निरंतर कार्य करती रहती हूँ। आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी सीखने वाली नई पीढ़ी इस भाषा को केवल एक विदेशी भाषा के रूप में ना देखें, बल्कि इसके माध्यम से भारत को, उसकी संस्कृति और साहित्य को और गहराई से समझे।
0: ताशकंद में भारतीयों के संगठन के चेयरमैन और एक स्थानीय फार्मा कंपनी के अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी ने दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं से व्यापार का माहौल काफी बेहतर हुआ है।
2: उज्बेकिस्तान की सबसे खासियत यह है कि यहाँ के लोग हम लोग को अपना संबंधी मानते हैं, हम लोग का संबंध 8 साल पुराना मानते हैं, तो 8 साल से हम लोग का संबंध बना हुआ है। तो ये चीज जरूर कहूंगा कि उज्बेकिस्तान से अच्छा माहौल, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, चाहे सीएस कंट्रीज की बात करें, आज के दिन में उज्बेकिस्तान से अच्छा निवेश का माहौल दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, जहां तक बात है आपस व्यापार की, जो हम लोग का एक जो आंकड़ा बताए, ये आंकड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत कम सेक्टर के लोग पूरा कर रहे हैं, जिसमें फार्मा है, टेक्सटाइल है, लेकिन बहुत बड़ा जो सेक्टर यहाँ का है, मिनरल्स है, माइंस है, एग्रीकल्चर है, वहां भी भारतीय अपना निवेश नहीं कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में भारतीयों का निवेश शुरू हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो व्यापार के आंकड़ा है ये दुगना से बढ़ के तिगुना भी हो सकता है।
3: Now let's move on to Goa. Goa's freedom struggle is a proud chapter in the nation's history shaped by the courage and sacrifice of countless freedom fighters. A new publication by the Goa Archives honors 74 brave men and women who laid down their lives in the struggle against Portuguese rule. Here's a closer look.
4: The Goa Department of Archives has released Martyrs of Goa, a coffee table book remembering 74 freedom fighters who gave their lives against Portuguese rule. The book was unveiled by Defence Minister Rajnath Singh at Patra Devi during the dedication of the Hutatma Smriti Smarak. Compiled by Archives Director Balaji Shenoy, it records the stories of Satyagrahis and underground activists. Among those remembered is Raya Bala Mapari of Asanora, who died in police custody in 1955. Amir Chand Devi Prasad Gupta was also killed after being assaulted during the August 15 March that year. The book recalls Tulsiram Balakrishna Hirve, who led 127 protesters at Terekhol Fort and held on to the tricolor despite being shot at. The archives said the book will help preserve these sacrifices for future generations. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwadi News, Padji.
0: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल।
3: यस वैष्णवी, हॉकी इंडिया हैज अनाउंस्ड अ कैश अवार्ड ऑफ 50 लाख रुपीस फॉर द इंडियन विमेंस हॉकी टीम फॉर देयर हिस्टोरिक फिफ्थ प्लेस फिनिश at the FIH Hockey Women's World Cup 2026 in Belgium and the Netherlands, India defeated world number 5 Germany 3-1 in Amstel Wien on Thursday. It is India's best World Cup finish since the team secured 4th place in the inaugural edition in 1974. FIH Hockey Women's World Cup 2026 final between Netherlands and Argentina will take place

0: भारतीय सेना के इतिहास में कुछ वीरों की पहचान उनके पद से नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस से होती है। मेजर सुधीर कुमार वालिया ऐसे ही जाबाज सैनिक थे। आज ही के दिन 1999 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के दौरान वे शहीद हुए। ये अभियान कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान उन्होंने आतंकवादियों को डटकर मुकाबला किया और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सेना मेडल और बार्टो सेना मेडल भी मिला। आगे बढ़ते हैं। करगिल युद्ध की वीरगाथा में मेजर मनोज तलवार का नाम साहस और बलिदान के साथ लिया जाता है। भारतीय सेना में रहते हुए उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से मोर्चा संभाला। 13 जून 1999 को टुरटुक क्षेत्र में एक सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि सैनिक के लिए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है।
1: जी बिल्कुल। एंड टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग डीना वॉशिंगटन हु वाज एन अमेरिकन सिंगर एंड पियानिस्ट हु हैज बीन साइटेड एज द मोस्ट पॉपुलर ब्लैक फीमेल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द 50s। एंड हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स बाय डीना वॉशिंगटन हु गेव हरसेल्फ द टाइटल ऑफ क्वीन ऑफ द ब्लूज़।

0: आज जन्मदिन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर के राधाकृष्णन का। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में भारत ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिमेम्बर द किंग ऑफ पॉप And I think, Vaishnavi, you must be now knowing who is this legend that I'm going to talk about. Mm-hmm. And he is no other than Michael Joseph Jackson, who was an American singer, songwriter, and dancer. And he was regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century and one of the greatest entertainers in the history of music. Jackson's contributions to music, dance, and fashion, along with his publicized personal life, made him a global figure in popular culture over 4 decades. Here, we're going to listen to the Jackson 5, I Want You Back, wherein Michael Jackson first began his singing career.

0: with Lionel Richie. Jackson co-wrote the charity single We Are the World, which raised money for the poor in the US and Africa. And let's listen into this another beautiful song, We Are the World.
1: There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand.
2: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और रेनू को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेफ के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास और कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाढ़ के बाद भारत सरकार की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषयों से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सेवा से संबंधित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर महाहड़ताल की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी के श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa William.

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोकरंजनी लेकर के, जिसमें कि हमारे जो श्रोता हैं जानकारी के साथ साथ लोक संगीत का आनंद भी लेते हैं। नीलम बहन, हमारा जो ग्रामीण पर्यटन है भारत में रोजगार सृजन और पलायन रोकने का एक प्रमुख साधन बन रहा है। स्थानीय कला, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के माध्यम से होम स्टे, गाइडिंग, हस्तशिल्प बिक्री और स्थानीय भोजन के व्यवसायों में हमारे गांव के युवा, महिलाएं, इनके लिए आय के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और साथ ही ये व्यवसाय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका को भी बढ़ावा देता है।
1: बिल्कुल, पर्यटक अब गांव के अनूठे अनुभव के लिए होम स्टे पसंद कर रहे हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण निवासियों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के इतिहास, कला और संस्कृति से परिचित स्थानीय गाइड पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं। स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों को सीधे पर्यटकों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब यही है कि हमारे ग्रामीण पर्यटन में रोजगार की अपार संभावना है। नीलम बहन, ग्रामीण पर्यटन के बारे में और भी बातें अपने श्रोताओं को बताएंगे, लेकिन हमारे श्रोता लोक संगीत का भी इंतजार करते हैं, तो आइए सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं सूबे सिंह कपासिया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। कलाकार थे सूबे सिंह कपासिया।
1: तो हमारे श्रोताओं ने ज़रूर इस देशभक्ति गीत का आनंद लिया होगा। और आज के कार्यक्रम लोकरंजनी में हम बात कर रहे हैं ग्रामीण पर्यटन की। तो बहुत सी बातें आप जान चुके होंगे ग्रामीण पर्यटन के बारे में। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि गांव की संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और खेती की गतिविधियों का अनुभव कराने के माध्यम से भी आय सृजन संभव है। गांव तक पहुंचने और गांव में घूमने के लिए परिवहन सेवाओं की मांग भी रोजगार के अवसर बढ़ाती है। हमारे ग्रामीण पर्यटन न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करता है।
0: बिल्कुल शशि भाई, ग्रामीण पर्यटन स्वदेशी रूप से निर्मित कलाकृतियों, हस्तशिल्प, वस्त्रों, स्मृति चिन्हों और खाद्य उत्पादों के साथ साथ लोक कथाओं, वास्तुकला और अन्य कई चीज़ों को प्रदर्शित करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। इससे लोगों की आय बढ़ती है।
1: और हरे भरे गांव, छोटी छोटी गलियों, जैविक उत्पादों और सबसे बढ़कर लोगों की गर्मजोशी से भरा ग्रामीण परिवेश उन लोगों के लिए एक ताजगी भरा और सुकून देने वाला बदलाव है जो लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी में फंसे रहते हैं। तो श्रोताओं, ये तो आपने जाना ग्रामीण पर्यटन के बारे में, और आइए इसी क्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं रेणु बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप रेणु बर्मन से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: नीलमहन पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है और निरंतर उसकी उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। ऐसे में हमें जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हम जल बचाकर भविष्य के समाज और अपनी संतान के लिए सुरक्षित कल सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है शशि भाई, जल जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और समस्त जीव जगत के लिए जल बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन पीने योग्य स्वच्छ जल सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और वर्षा के बदलते स्वरूप के कारण अनेक क्षेत्रों में जल संकट बढ़ रहा है। इसलिए आज जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं, आप चाहे घर पे रहें, बाहर जाएं, लेकिन जल संरक्षण का ध्यान ज़रूर रखें और आवश्यकता अनुसार ही जल का उपयोग करें, बेवजह पानी बर्बाद ना करें। तो नीलम बहन, ये तो बात रही जल संरक्षण की, और आइए इसी क्रम में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं कालूराम यादव और सतीश यादव।
2: जल संरक्षण बहुत जरूरी, सब समझो नर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे उपदेश, कलाकार थे कालू राम यादव और सतीश यादव।
1: और इसी उपदेश के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी में। मैं हूं विदुषी वत्स और मेरे साथ हैं आज हेमंत।
5: नमस्कार। खेल खिलाड़ी वो कार्यक्रम जहां हम आप तक पहुंचाते हैं खेल जगत की हर बड़ी खबर, खिलाड़ियों की हर बड़ी उपलब्धि और खेल की दुनिया से जुड़ी वो कहानियां जो हमें प्रेरणा देती हैं।
4: लेकिन आज का खेल खिलाड़ी कुछ खास है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ

0: खेलों की खबरों का दिन नहीं है, आज का दिन है खेल को सलाम करने का दिन, खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करने का दिन और उस महान खिलाड़ी को याद करने का दिन जिसने भारतीय खेलों की दुनिया के मंच पर एक अलग पहचान दिलाई। आज है राष्ट्रीय
1: राष्ट्रीय खेल
0: खेल दिवस
1: दिवस।
0: और राष्ट्रीय खेल दिवस के इस बेहद खास मौके पर खेल खिलाड़ी में सभी की ओर से आप सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल विदुषी, और आज का दिन समर्पित है भारतीय हॉकी के उस जादूगर को जिनका नाम लेते ही हॉकी की स्टिक, गेंद और मैदान पर बिखरता जादू आंखों के सामने आ जाता है। नाम मेजर ध्यानचंद, एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ एक महान हॉकी खिलाड़ी कहना शायद उनके योगदान को छोटा कर देना होगा। उन्होंने उस दौर में भारत का प्रतिनिधित्व किया जब भारत हॉकी की दुनिया में सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रही थी, और मेजर ध्यानचंद उस स्वर्णिम दौर के सबसे चमकदार सितारों में से एक बने।
0: जी हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि आज 29 अगस्त को जब पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है तो ध्यानचंद जी को याद करना महज एक परंपरा नहीं है, ये उस विरासत को याद करना है जिसने भारत की कई पीढ़ियों को खेल की तरफ देखने का एक नया नजरिया दिया है। ये उस जुनून को याद करना है जिसमें जीत से ज्यादा मायने रखती है खेल के प्रति निष्ठा। ये उस खिलाड़ी को याद करना है जिसने हॉकी के मैदान पर अपने खेल से ऐसी छाप छोड़ी कि दुनिया उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानने लगी।
1: तो आइए आज मेजर ध्यानचंद की इसी यादगार यात्रा की करते हैं शुरुआत।
0: अगस्त 1905 इलाहाबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम था ध्यान सिंह। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर भारतीय हॉकी का सबसे बड़ा नाम बनेगा और दुनिया उसे हॉकी के जादूगर के नाम से जानेगी। सेना में रहते हुए हॉकी उनके जीवन का हिस्सा बनी और रात दिन के अभ्यास ने के खेल को एक अलग ऊंचाई दी। कहा जाता है कि रात में चांद की रोशनी में अभ्यास करने के कारण ही उनके नाम के साथ चंद जुड़ गया और ध्यान सिंह बन गए ध्यान चंद। '26 में न्यूजीलैंड के दौरे ने दुनिया को पहली बार भारतीय खिलाड़ी ध्यान चंद की प्रतिभा से परिचित कराया। इसके बाद आया 1928 का एम्स्टरडैम ओलंपिक्स, भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता नीदरलैंड्स को उनके ही होम ग्राउंड पे हराकर। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी की प्रतिभा प्राप्त की। सभी सोच में पड़ जाते कि एक बार गेंद जो ध्यानचंद के पास पहुंची तो उनसे उसे वापस ले पाना मानो करीबन नामुमकिन हो जाता। उनके खेल से प्रभावित होकर उस दौर की एक अखबारी रिपोर्ट ने लिखा, This is not a game of hockey, but magic. Dhyan Chand is in fact the magician of hockey. यहीं से दुनिया के सामने ध्यान चंद के हॉकी के जादूगर होने की वो छवि और मजबूत हुई जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। चार साल बाद जब 1932 में भी पूरी दुनिया 1929 में हुई महामंदी से लड़ रही थी, जहां कई देश ओलंपिक खेलने आ भी नहीं पा रहे थे, वहीं भारतीय हॉकी टीम और फेडरेशन के जज्बे और मेहनत के चलते टीम 42 दिन की समुद्री यात्रा शुरू कर अमेरिका को निकली। जहां जहां पोर्ट पर शिप रुकी वहां वहां भारतीय हॉकी टीम ने एग्जीबिशन मैचेस खेले, जहाँ सबसे आगे रहे मेजर ध्यानचंद, उनके छोटे भाई रूप सिंह और कप्तान लाल शाह बखारी। उन्होंने हर पोर्ट पर मैच खेल न केवल पैसे इकट्ठे करे, साथ साथ पूरी दुनिया को अपने टैलेंट से प्रभावित किया और करते करते वे पहुंचे लॉस एंजेलिस।
2: The 1932 Olympics at Los Angeles. The scene is the Coliseum and the world's outstanding athletes are here.
0: यहाँ रचा गया एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड, जहाँ भारत ने पहली बार अमेरिका को अमेरिका में ही 24 एक से हराया। ध्यानचंद ने अकेले 8 गोल किए। अब दुनिया सिर्फ भारतीय हॉकी को नहीं उसके इस जादूगर को भी पहचानने लगी थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड किसी भी टीम के विरुद्ध जड़ा गया जिस

0: 2003 तक भी कोई नहीं तोड़ पाया। ध्यानचंद जी की ड्रिबलिंग, गेंद पर नियंत्रण और स्टिक से गेंद को साधने की कला ऐसी थी कि उनके खेल को देखकर लोग उसे जादू कहने लगे। उनके बारे में कई ऐसे किस्से मशहूर हुए जिनमें उनकी हॉकी स्टिक तक जांचे जाने की बातें शामिल थी, लेकिन इस जादू के पीछे कोई रहस्य नहीं था। था तो सिर्फ असाधारण हुनर, अनुशासन और वर्षों की मेहनत। बर्लिन ओलंपिक्स। इस बार ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। फाइनल में सामने था मेजबान जर्मनी और स्टेडियम में 40,000 लोग।
1: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany.
0: जो मैच पहले 14 अगस्त को होना था वो हुआ 15 अगस्त को। हाफ टाइम तक भारत केवल एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद जी ने अपने स्पाइक से वो मोजे उतार कर खेलना शुरू करा। दबाव था, हजारों दर्शकों की निगाहें थी, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 8-1 से हराकर लगातार तीसरा ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया।
1: Final result was India 8, Germany 1.
0: ध्यानचंद जी की कहानी अब सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं रह गई थी, वह भारतीय खेल इतिहास की एक लेगेसी बन चुके थे। और शायद उनकी महानता को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि हम उन्हें सिर्फ दूसरों की जुबानी ना सुने। हमारे पास उनकी अपनी आवाज में दर्ज प्रसार भारती द्वारा एक दुर्लभ बातचीत भी है, एक ऐसे खिलाड़ी की आवाज जिसके खेल को दुनिया ने जादू कहा।
2: हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट लड़कों को खिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटो स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, जब मैं 6 थी, मैं बर्लिन में गया, फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को, वो स्क्रीन के ऊपर उसको शो करते थे। और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलाना।
0: ध्यानचंद जी सिर्फ अपने समय के महान खिलाड़ी नहीं थे, उनका खेल दूसरे देशों के खिलाड़ियों के लिए भी सीखने का जरिया बना। उनके दौर में विदेशी टीमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और टेक्निक को देखकर सीखती थी। आगे चलते हुए मैदान से दूर होने के बाद भी ध्यानचंद जी ने हॉकी से अपना रिश्ता कभी खत्म नहीं किया। उन्होंने कोचिंग के जरिए खेल से अपना जुड़ाव बनाए रखा। हॉकी के मैदान पर दुनिया उन्हें जादूगर के नाम से जानती थी, लेकिन सेना की वर्दी में उनकी पहचान थी मेजर ध्यानचंद। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सेवा करते हुए उन्होंने हॉकी को भी उसी अनुशासन के साथ जिया। 1956 में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसी वर्ष में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आज 29 अगस्त को पूरा देश उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन हमें सिर्फ एक महान खिलाड़ी की उपलब्धियों को याद नहीं दिलाता, बल्कि उस सोच को भी याद दिलाता है जिसमें खेल देश की पहचान, युवाओं की ताकत और स्वस्थ समाज की नींव बनाता है। इसी सोच और खेलों के महत्व को लेकर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं।
3: आज मेजर ध्यानचंद जी की 121वीं जन्म जयंती। मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है, लाखों की संख्या हर गली में, मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। चलो हम सब लोग हर वीक 1 घंटे खेल के मैदान में रहे और अपने स्वयं को फिट रहे।
0: वही केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस और खेलों की अहमियत को लेकर अपने विचार साझा किए।
4: आप सबको बधाई नेशनल स्पोर्ट्स डे की, मेजर ध्यानचंद जी का 121वां जन्म जयंती का दिवस। मैं तो वैसे शुरू से ही कबड्डी के मैदान से शुरू किया हमने हमारा जीवन, खेल अगर शुरू करें तो फुटबॉल की ओर।

0: मैं डेली बैडमिंटन खेलता हूँ। दो विषय मेरे जीवन के महत्वपूर्ण है, सुबह संगीत, शाम को खेल। और खेल से आदमी फिट भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो नेशनल स्पोर्ट डे पे जो एक घंटा खेल को देने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हम फिट तो इंडिया फिट, और विकसित भारत बनाने की राह में भी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण।
1: करीब एक सदी बाद भी मेजर ध्यानचंद हमारे बीच हैं। उनके नाम में, उनके खेल की कहानियों में और उन लाखों बच्चों के सपनों में जो आज भी मैदान पर उतरते हैं। दुनिया ने उनके खेल को जादू कहा, इसलिए वो कहलाए हॉकी के जादूगर। वर्दी में रहे तो अनुशासन और सेवा की पहचान बने मेजर ध्यानचंद, और जिन खिलाड़ियों ने उन्हें करीब से जाना उनके लिए वो थे दद्दा। लेकिन शायद किसी खिलाड़ी की असली विरासत उन उपलब्धियों से भी आगे होती है। 6 अगस्त 2021 को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यानी जिस नाम ने कभी हॉकी के मैदान पर देश का मान बढ़ाया था, वही नाम आने वाली पीढ़ियों के सबसे बड़े खिलाड़ियों को सम्मानित करने लगा। और शायद किसी खिलाड़ी की महानता को मापने का सबसे खूबसूरत पैमाना यही है कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम सिर्फ याद न किया जाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जाए। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर उस महान खिलाड़ी को नमन जिसने हमें सिखाया कि खेल में महानता सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि खेल को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जीने में है। मेजर ध्यानचंद, आपको हमारा नमन।
2: हॉकी के जादूगर की बातों से अब चलते हैं उस खेल के जादू की तरफ जो चल रहा है हॉकी वर्ल्ड कप में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित FIH हॉकी विश्व कप 2026 ने विश्व हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। खेल के इतिहास में ये पहला ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से एक ही समय सीमा के भीतर और सह मेजबानी के तहत किया जा रहा है। इस वैश्विक खेल महाकुंभ की संयुक्त मेजबानी हॉकी की दो सर्वकालिक महाशक्तियों बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा की जा रही है, जहां नीदरलैंड के एमस्टलवीन स्थित प्रतिष्ठित वैगनर स्टेडियम और बेल्जियम के ब्रेरवे स्थित स्टेड जस्टिन पीटर्स में दुनिया की शीर्ष 16 टीमें विश्व विजेता बनने के इरादे से उतरी थीं। इस टूर्नामेंट की भूमिका केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि ये आधुनिक हॉकी में बढ़ती गति, तकनीकी ड्रिबलिंग और यूरोपीय तथा एशियाई देशों के बीच समाप्त होते फासले को प्रदर्शित करने का एक सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन चुका है, जहां हर एक क्वार्टर में बदलती रणनीतियां खेल को और अधिक रोमांचक बना रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में पुरुष वर्ग में 7वें और 8वें स्थान के क्लासिफिकेशन का महामुकाबला बेल्जियम के ब्रेरवी स्थित वेल्फिसियस हॉकी एरिना में खेला गया, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम और 2020 ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम की टीमें प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए आमने सामने थी। मैच की शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच आक्रामक हॉकी देखने को मिली। भारत के युवा फॉरवर्ड अभिषेक नैन ने मैच के शुरुआती 6वें मिनट में ही बेल्जियम के सर्किल डिफेंस में सैंत लगाते हुए एक शानदार फील्ड गोल दागा और भारत को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी। बेल्जियम ने इस झटके से उबरने के लिए अपनी आक्रामक गति को बढ़ाया और दूसरे क्वार्टर में रोमन डुबेकोट के मैदानी गोल के बदौलत स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। तीसरे क्वार्टर का खेल और अधिक आक्रामक हो गया जब बेल्जियम के फॉरवर्ड हुगो लेवेशियर ने भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए 2-1 की बढ़त बनाई, लेकिन ठीक उसी समय भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 31वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को एक शक्तिशाली ड्रैग फ्लिक के जरिए गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में डालकर भारत को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। खेल के आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त नाटक देखने को मिला। बेल्जियम के आर्थर डी स्लोबर ने एक बेहतरीन काउंटर अटैक पर गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया, और जब ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से निकल चुका है, ठीक मैच के अंतिम मिनट में भारत को एक महत्वपूर्ण पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अत्यधिक दबाव की स्थिति में बेल्जियम के दिग्गज गोलकीपर विंसेंट वानाश को छकाते हुए अपनी फ्लिक से गेंद को सीधे नेट में दे मारा और स्कोर 3-3 की बराबरी कर मैच को पेनल्टी शूटआउट में खींच दिया। पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम के खिलाड़ियों ने गजब का मानसिक संतुलन दिखाया और भारत के शुरुआती 2 प्रयासों को नाकाम करते हुए शूटआउट को 4-3 से अपने नाम कर लिया। इस दिल तोड़ने वाली हार के साथ भारतीय पुरुष टीम विश्व कप में 8वें स्थान पर रही। पुरुषों के सेमीफाइनल चरण के मैचों में गति, तकनीक और यूरोपीय दबदबे की एक नई परिभाषा देखने को मिली, जहां दोनों मुकाबलों ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। नीदरलैंड के वीन स्थित ऐतिहासिक वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने मेजबान और दुनिया

0: की सबसे आक्रामक टीमों में से एक नीदरलैंड को 4-3 से हराकर पूरे डच प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। मैच के शुरुआती हाफ में नीदरलैंड ने कोएन बीजेन के 22वें मिनट के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में स्पेन के स्टार स्ट्राइकर जॉस बास्टेरा का ऐतिहासिक तूफान देखने को मिला। बास्टेरा ने डच रक्षा पंक्ति के परखच्चे उड़ाते हुए मैच के 41वें, 50वें और 55वें मिनट में 3 अद्भुत गोल दागकर टूर्नामेंट की सबसे शानदार और यादगार हैट्रिक पूरी की। उनके ठीक बाद पेपे कुनेल ने 51वें मिनट में एक और गोल जोड़कर स्पेन को 4-1 से आगे कर दिया था। अंतिम क्षणों में नीदरलैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए जिम जानसेन और जोप डी मोल के जरिए 2 गोल दागे, लेकिन स्पेन के मजबूत रक्षकों ने आखिरी सेकंड्स तक अपनी 4-3 की बढ़त को सुरक्षित रखते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी और दक्षिण अमेरिका महाशक्ति अर्जेंटीना के बीच रणनीतिक और शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाली हॉकी खेली गई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक यूरोपीय डिफेंसिव ग्रिड का प्रदर्शन किया, जिसके कारण अर्जेंटीना की फॉरवर्ड लाइन को सर्कल में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मैच का पहला गोल जर्मनी के जस्तुस ने 33वें मिनट में एक रिबाउंड गेंद पर किया। अर्जेंटीना ने वापसी के लिए लगातार आक्रमण किए और 46वें मिनट में उनके ड्रैग फिलकर थॉमस डोमेने ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। जब मैच पेनल्टी शूटआउट की तरफ बढ़ता दिख रहा था, तभी 54वें मिनट में जर्मनी के पॉल फिलिप फॉकमैन ने डी के दाहिने छोर से एक शानदार रिवर्स फिलिप मैदानी गोल दागकर जर्मनी को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इस जीत के साथ जर्मनी ने लगातार दूसरी बार पुरुषों के विश्व कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया, जहां उनका सामना स्पेन से होगा। महिला वर्ग की बात करें तो टूर्नामेंट एमस्टलवीन और ब्रेरवे दोनों शहरों में अपने चरम रोमांच पर पहुंच चुका है, जहां मेडल मैचों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए होने वाले कांस्य पदक मैच में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम की टीमें आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले में 0-1 से हार झेलनी पड़ी थी, जिससे उनका स्वर्ण पदक का सपना टूटा, लेकिन वे अब खाली हाथ लौटने के मूड में नहीं है। वहीं बेल्जियम की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस कांस्य पदक को जीतकर इतिहास रचना चाहेगी। दूसरी ओर महिला विश्व कप का महाफाइनल कड़ाके की प्रतिद्वंद्विता के बीच डिफेंडिंग चैंपियन नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाना तय हुआ है, जो पिछले 2022 के फाइनल का एक रीमैच है। नीदरलैंड की महिला टीम अपने घरेलू मैदान और अविश्वसनीय डच दर्शकों के समर्थन के साथ खिताब को बरकरार रखने के लिए प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। हालांकि अर्जेंटीना के लॉस लियोनास टीम को कम आंकना आत्मघाती होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर अपनी मजबूत रक्षात्मक रणनीति और गजब के काउंटर अटैक कौशल का परिचय दिया है। महिला वर्ग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इस टूर्नामेंट में एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा है। क्लासिफिकेशन चरण में 5वें और 6ठे स्थान के मुकाबले में कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत ने शक्तिशाली जर्मनी को 3-1 से हराकर विश्व कप के इतिहास में पिछले 52 वर्षों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया है। भारत की ओर से नवनीत कौर ने 2 बेहतरीन गोल दागे, जिसने इस पूरे वैश्विक आयोजन में भारतीय हॉकी के वापसी की एक नई गाथा लिख दी है। अपने और अपनी टीम के प्रदर्शन पे क्या कहा नवनीत कौर ने, आइए सुनते हैं।
1: इट्स ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट एशियन गेम्स है, उसमें और अच्छा करेंगे। टीम ने आपस में बात की कि अभी हम अटैकिंग कर रहे हैं, बट सर्कल में जाके इतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम सर्कल में जाके काम रहेंगे और ट्राई करेंगे कि हम पीसी क्रिएट कर सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पीसी अच्छा है और उसके लिए हमें पीसी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो चीज टीम ने की भी है। हम सर्कल में गए हैं कि शॉर्ट रन गोल लेना और पीसी क्रिएट करना है।
0: जी अभी दूसरी अब बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल मैच की, जो वुमेन्स हॉकी 2026 का मुकाबला चल रहा है, बेल्जियम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला चल रहा है, जहां पर बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। अब देखना ये कि बेल्जियम इस मैच को जीतती है ऑस्ट्रेलिया, वो आने वाला समय बताएगा। साथ ही बात करते हैं आज के फाइनल मैच की, जो खेला जाएगा नीदरलैंड बनाम और अर्जेंटीना, जो खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे।
2: हेमंत, अब समय है अपने श्रोताओं को टेनिस की खबरें देने का। टेनिस के साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन यानी यूएस ओपन का मुख्य दौर कल यानी 30 अगस्त से न्यूयॉर्क में शुरू होगा और 13 सितंबर तक चलेगा। साल के इस आखिरी ग्रैंड स्लैम में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच खिताब के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मेन्स सिंगल्स यानी पुरुष एकल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर के दाहिने घुटने पे चोट के कारण टूर्नामेंट से हटने के बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। उनकी गैर मौजूदगी में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर को पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में शीर्ष वरीयता मिली है। वहीं गत चैंपियन कार्लोस

0: अल्कराज दूसरे वरीय खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे। हालांकि अल्कराज 4 महीने के ब्रेक के बाद प्रतिस्पर्धा टेनिस में वापसी कर रहे हैं। दूसरी ओर 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक भी ड्रॉ में इसी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे सेमीफाइनल में अल्कराज और जोकोविच की संबंधित और संभावित भिड़ंत पर सभी की नजरें रहेंगी। घरेलू दर्शकों के बीच अमेरिका के टेलर फ्रिट्स, बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो भी बड़ी उम्मीदों के साथ उतरेंगे। अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी 23 साल से चले आ रहे ग्रैंड स्लैम खिताब के सूखे को खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। वुमेन सिंगल यानी महिला एकल की तस्वीर कुछ अलग है। 2 बार की गत चैंपियन आयराना लगातार तीसरा अमेरिकी ओपन खिताब जीतकर इतिहास रचने की कोशिश करेंगी। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ईगा और अमेरिकी स्टार कोको गॉफ भी खिताब की मौजूद दावेदार हैं। वहीं एलिना के पास सम्बालेंका से विश्व नंबर एक का स्थान छीनने का मौका है। महिला डबल्स यानी वुमेन डबल्स में इस बार खास आकर्षण रहेगा, जहां टेनिस की दिग्गज बहनें सेरेना और वीनस विलियम्स को विशेष वाइल्ड कार्ड के जरिए एक साथ खेलने का मौका मिला है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं भारत की भी। इस बार अमेरिकी ओपन के पुरुष और महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं होगा। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले एकल खिलाड़ी सुमित नागल क्वालिफाइंग दौर में ही बाहर हो गए। पहले दौर में उन्हें शीर्ष वरीय फ्रांसीसी खिलाड़ी आर्थर ने 6-3, 7-6 से हराया। नागल की हार के साथ इस साल अमेरिकी ओपन के एकल मुख्य ड्रॉ में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। हालांकि पुरुष डबल्स में भारत की चुनौती मजबूत रहेगी। अनुभवी ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। उनके साथ यूकी भांबरी भी पुरुष डबल्स के मुख्य ड्रॉ में उतरेंगे। भांबरी इससे पहले इस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं और इस साल करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 18 डबल्स रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। श्रीराम बालाजी भी पुरुष डबल्स में भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। अपनी तकनीकी दक्षता और मजबूत डबल्स खेल के लिए पहचाने जाने वाले बालाजी अंतरराष्ट्रीय साझीदारों के साथ चुनौती पेश करेंगे। इस तरह पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी और श्रीराम बालाजी के प्रदर्शन पर भारतीय प्रशंसकों की खास नजर रहेगी। महिला एकल का फाइनल 12 सितंबर को जबकि पुरुष एकल का फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। यानी न्यूयॉर्क में कल से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन एक बार फिर दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों, बड़े मुकाबलों और कई रिकॉर्ड्स का गवाह बनने के लिए तैयार है।
1: यूएस ओपन के बाद चलते हैं टेबल टेनिस की तरफ। चेकिया के उमागा स्पोर्ट्स सेंटर में 24 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित WTT फीडर ओलमोवाक टेबल टेनिस टूर्नामेंट भारतीय खेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 28 अगस्त 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबलों में भारत के उभरते हुए स्टार पेडलर अंकुर भट्टाचार्य ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए दोहरा खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय टेबल टेनिस की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए अंकुर ने न सिर्फ पुरुष एकल का खिताब जीता बल्कि पुरुष युगल में भी भारत का तिरंगा लहराया। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में भारत के अंकुर भट्टाचार्य ने स्लोवेनिया के अनुभवी खिलाड़ी डेनी कोजुल को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। पहला गेम हारने के बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार मानसिक मजबूती दिखाई और लगातार तीन गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक एकल खिताबी जीत से ठीक पहले अंकुर भट्टाचार्य ने हमवतन साथी आकाश पाल के साथ मिलकर पुरुष युगल का फाइनल भी जीता। भारतीय जोड़ी ने पोलैंड के मिकोलज और माटुष सांतोषी की जोड़ी को 3-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। अंकुर का यह डबल धमाका वैश्विक मंच पर भारतीय टेबल टेनिस के स्वर्णिम भविष्य का प्रतीक है। टूर्नामेंट के महिला वर्ग में जापान की खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। जापान की रिने मेंडे ने भी प्रतियोगिता में दोहरा खिताब हासिल किया। महिला एकल के फाइनल में रिन मेंडे ने अपने ही हमवतन खिलाड़ी मुसुज ताकिया को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती। इसके बाद महिला युगल के फाइनल में इन दोनों जापानी खिलाड़ियों के ने एक साथ जोड़ी बनाकर थाईलैंड की मजबूत जोड़ी ओरावान और सुथासिनी को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं मिश्रित युगल के फाइनल में स्लोवानिया वाकिया के लुवी मिरार पिस्टेज और पोलैंड की नतालिया बाजोर की जोड़ी ने सिंगापुर के इजाक क्विक और मिंग यिंग लॉय को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। समग्र रूप से ये टूर्नामेंट भारत और जापान के युवा खिलाड़ियों के नाम रहा।

0: चलिए अब रुख करते हैं स्क्वाश कोर्ट का, जहां भारत के लिए आई है खिताब की खुशखबरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेले गए बुडापेस्ट ओपन 2026 के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। विश्व रैंकिंग के 94वें स्थान पर कब्जा और 8वीं वरीयता प्राप्त वेलवन ने फाइनल में हंगरी के नंबर एक खिलाड़ी और 9वीं वरीयता प्राप्त बालास फारकस को सीधे 3 गेमों में हराया। वेलवन का मुकाबला और उनके मुकाबले कुछ इस तरह रहे, 11-4, 11-2, 11-3। ये मुकाबला उन्होंने सीधे तीनों गेमों में अपने नाम किया है। यह उनका पहला पीएसए कॉपर लेवल खिताब है और इसके साथ ही उन्होंने पीएसए स्क्वाश टूर पर अपना 11वां खिताब भी हासिल कर लिया है। हालांकि फाइनल तक वेलवन का सफर बेहद खास रहा। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी और टूर्नामेंट के शीर्ष वरीय मलेशिया के एनएफएन से हुआ। मौजूदा एशियाई खेलों के चैंपियन को वेलवन ने सीधे गेमों में 11-2, 11-9, 11-8 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद उनका सेमीफाइनल का मुकाबला भी भारतीय के साथ था। वेलवन के सामने थे तीसरे वरीयता प्राप्त वीरचोट रानी। ये टूर्नामेंट का उनका सबसे बड़ा मुकाबला रहा। पहला गेम गंवाने और मुकाबला बराबरी पर पहुंचने के बाद भी वेलवन ने निर्णायक मौकों पर शानदार खेल दिखाया और 5 गेमों में 9-11, 11-8, 11-7, 1-11 और 12-10 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। और फाइनल में उन्हें बिना कोई गेम गवाए फारकास को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बुडापेस्ट में मिली ये जीत वेलवन सेंथिल कुमार के लिए सिर्फ एक और खिताब नहीं, बल्कि बड़े मंच की ओर बढ़ते उनके सफर के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: स्कॉस की खबरों के बाद अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। दुबई के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है महिला एशिया कप। क्रिकेट जगत में महिला सशक्तिकरण और एशियाई देशों की बढ़ती खेल स्पर्धा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। T20 इंटरनेशनल प्रारूप में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के रोमांच को बढ़ाने के लिए प्रतिभागी के लिए 8 टीमों को 2 मजबूत समूहों में विभाजित किया गया है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में जगह मिली है, जहां उसके साथ चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, थाईलैंड, हांगकांग, चीन जैसी टीमें शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में गत चैंपियन श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मेजबान यूएई को रखा गया है, जिसमें इंडोनेशिया की टीम पहली बार इस बड़े मंच पर अपना ऐतिहासिक पदार्पण कर रही है। टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में थाईलैंड ने हांगकांग की टीम को हराकर अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की है। आज यानी 29 अगस्त 2026 को प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला मेजबान यूएई और मजबूत श्रीलंका के बीच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाना है, जो ग्रुप बी के समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मैदान पर उतर रही भारतीय टीम इस बार बड़ा रिकॉर्ड 8वां खिताब जीतने की मुख्य दावेदार के रूप में टूर्नामेंट में शामिल हुई है। हालांकि जेमिमा रोड्रिक्स की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अनुपस्थिति भारतीय मध्यक्रम के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती होगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी, जिसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा।
0: घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि आज इस खास सफर को यहीं विराम देना होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस विशेष मौके पर खेल खिलाड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। खेल खिलाड़ी के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शाहनवाज खान और पूरी टीम के साथ आज फिर हम आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। खेल से जुड़े रहिए, खेल को सलाम करते रहिए। मैं विदुषी वत्स और मेरे साथी हेमंत आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a two-day visit. The Prime Minister will reach Tashkent this evening at the invitation of President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम और डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टेक और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर केंद्रित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 27 अगस्त गुरुवार को विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन

0: किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाड़ियों से संवाद किया। इस आयोजन में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने स्वागत संबोधन में कहा,
1: इस विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को भारत का उज्जवल वर्तमान माना और भविष्य भी कहा और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का काम किया है। आपके नेतृत्व में देश ने पहली बार स्पोर्ट्स को केवल एक एक्टिविटी नहीं बल्कि नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा है। इसी विजन को ग्राउंड पर मजबूती देने के लिए आपने 2023 में माय भारत जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हमारे युवाओं के पास एनर्जी, आइडियाज, पैशन और सेवा की भावना तो थी, लेकिन उन्हें आवश्यकता थी सही डायरेक्शन, मेंटरशिप और अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की। आज माय भारत इसी आवश्यकताओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पूरा कर रहा है। देश भर में 2,66,00,000 से अधिक युवा से जुड़ चुके हैं और कैरियर के साथ राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के माध्यम से आपने युवाओं को आइडियाज को सीधे पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा है। आज यह एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस का संगम आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज से हमारी हर मेहनत में भारत होगा, हमारे हर सपनों में भारत होगा, हमारी हर जीत में भारत होगा, और जब हम वर्ल्ड पोडियम पर खड़े होंगे तब भी सबसे ऊपर हमारा भारत होगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ आज इस शुभ अवसर पर देश के करोड़ों युवाओं को आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिले, इसी कामना के साथ मैं देश की युवा शक्ति की ओर से आपका खेलो इंडिया संवाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।
0: इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
2: मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलेंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन माँ भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूँ, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूँ, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, नई

0: टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं, खेलों के आयोजन की, उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई है। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है, इसलिए इस संवाद में खुलकर अपने आइडियाज सामने रखिए। युवा शक्ति की ये भागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, वंदे मातरम।
1: 22 अगस्त शनिवार को सी सुब्रमण्यम सभागार कन्वेंशन सेंटर NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टेक और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्रियों सहित प्रशासकों, नीति निर्धारकों ने भाग लिया और अपने लक्ष्यों की प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने बताया,
2: भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की है। एक तो एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता की 10,41,00,000 किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास बननी है। तो सभी राज्य उसमें तेजी से काम कर रहे हैं, कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कुछ को और तेजी लाने की आवश्यकता है। फार्मर आईडी के साथ साथ फार्मर से जुड़ी सारी संपत्तियों का ब्यौरा होता है, जिनमें जमीन भी होती है। तो कुछ राज्यों में लैंड पार्सल का काम कम हुआ है, तो उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है, विवरण पूरा हो। गाँव के नक्शे भी लगभग 5,00,000 गांव के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 5,00,000 से थोड़े ज़्यादा ही, और कई जगह डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम भी कई राज्यों ने प्रारंभ कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र में 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को बांटने में सफलता प्राप्त की, तो फसलों की खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर काम किया, कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य सैचुरेट करना, मतलब इस काम को 100% पूरा करना। तो आज अलग अलग राज्यों ने समय सीमा बताई है कि हम 3 महीने में, हम 2 महीने में। यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं कि वहाँ कम्युनिटी लैंड जैसे कॉन्सेप्ट है, तो वो SOP बना रहे हैं। दूसरा, दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अभी दालें हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मुझे बताती हुई प्रसन्नता है कि पहले वर्ष में ही हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में सफलता प्राप्त करना प्रारंभ किया है। हमको एक तो दलहन का क्षेत्र बढ़ाना है, राइस फैलो इलाका जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ धान के बाद भी दाल लगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी एरिया बढ़ाना है, एक क्षेत्रफल बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन बढ़ाना है और तीसरे उत्पादकता बढ़ानी है। तो तीनों में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मतलब अलनीनो के प्रभाव के बावजूद भी, पिछले साल से 1% से ज़्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है और रबी के सीजन में, और क्योंकि दलहन की मुख्य खेती हमारे रबी के सीजन में होती है खरीफ से ज़्यादा, क्योंकि चना हो, मसूर हो, बाकी दालें ये हमारी रबी की फसल में पैदा होती है, उसके लक्ष्य भी तय किए।
3: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज

0: शनिवार है तो आपके मन के मुताबिक आज आपको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 29 अगस्त है और आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस और साथ ही मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती, और इसके अलावा आज के दिन परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की।
1: बिल्कुल शशि भाई, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ और अनुशासित जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। भारत में खेलों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और खिलाड़ियों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 29 अगस्त यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और ये दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आप ये तो जानते ही हैं कि उन्हें भारतीय हॉकी का महान खिलाड़ी माना जाता है और उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके शानदार प्रदर्शन और गोल करने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया।
1: बिल्कुल, और उन्होंने अपने खेल और समर्पण से देश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया और उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
0: बिल्कुल, आज के समय में बच्चों और युवाओं के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेने से शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। खेल हमें हार को स्वीकार करना और जीत में विनम्र रहना सिखाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं देकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, खेल और राष्ट्र निर्माण, खिलाड़ी अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश का नाम विश्व भर में रोशन करते हैं। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां देशवासियों में गर्व और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करती हैं। इसीलिए खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो हम तो अपने बहन भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप खेलों की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खेलों से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी अच्छा होता है, और अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा होती है तो हो सकता है आगे चल के आप हमारे देश का नाम रोशन करें। तो ज़रूर खेलों की तरफ आप विशेष ध्यान दें। और बहन भाइयों, इसके साथ ही आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक विशेष दिन मनाने का अवसर नहीं है बल्कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश देता है।
1: बिल्कुल, और हमें मेजर ध्यानचंद जी जैसे महान खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर नियमित खेल कूद को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, मजबूत मन और अनुशासित जीवन के लिए खेल आवश्यक है। यदि देश का युवा स्वस्थ और खेलों के प्रति जागरूक होगा तो भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, तो हम इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को शत शत नमन करते हैं। और इसके साथ ही बहन भाइयों, आपको बता दें कि आज परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, जो कि आज ही के दिन यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के परीक्षण के दुष्प्रभावों और विनाशकारी प्रभावों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना।
1: बिल्कुल, और इस दिवस का पहला आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था। ये दिवस परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट के कारण लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी और हानिकारक प्रभावों को रोकने का प्रयास करता है। इसके साथ ही ये एक परमाणु मुक्त दुनिया बनाने का आह्वान करता है।
0: बिल्कुल, तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन प्रोग्राम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार,
2: मैं गांव पनियार से विनोद टेलर बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सत्यजीत सागर की सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार,
3: नमस्ते जी, मैं कल्याण सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: सत्यदेव सागर को जी, अच्छी सी रागनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, खजान सिंह, रामबती, चंद्रकांत।

0: गुप्ता, अजय कुमार, मोहन, आरव, लिव्यान।
1: हेलो ग्राम संसार।
2: सर जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
1: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सचदेव सागर को सुना देना सर जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम है सर?
1: हाँ बोल दीजिए।
2: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: मैं सोनू का जी।
1: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज सत्यदेव सागर को सुनना चाहेंगे।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: देख नाम है?
1: हाँ बोल दीजिए।
3: मेरे पिताजी अमन वर्मा से, मेरी मम्मी है फूलवती कोटा होटल। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार। नमस्कार शशि भाई।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: राम दौड़ा है, जिला मंदरगढ़ से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
1: पंडित जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सुनवाओ जी, सत्यदेव सागर जी को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: पोता पोती हैं जी?
1: हाँ, नाम बोल दीजिए।
4: वानी शर्मा है जी, भव्य भारद्वाज है जी, यश भारद्वाज है जी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई राम राम।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जितेंद्र सोलंकी, गांव का महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
1: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज सुनना चाहेंगे सत्यदेव सागर को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: नाम बोलो जी।
1: हाँ बोल दीजिए।
5: नकली संजना, अंशका, टिंकल, कन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, श्री मेघराज सोलंकी, माता जी श्रीमती निर्मला देवी, गांव करकोरा से सतवीर सिंह बैद जी, श्याम चौहान, गजेंद्र प्रधान जी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सत्यदेव सागर से ये देशभक्ति गीत।

ककड़ी और खरबूजे भिंडी खूब उगाता हरी हरी सब्जी पैदा करके जन जन तक पहुँच।

देश के वीर किसान हमारे पशुपालन भी करते, दूध घी मक्खन से सबकी इच्छा पूरी करे थे। बेटों जैसा प्यार सभी ये सब पशुओं से करते।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं ब्रजपाल बोल रहा सर, गांव राम सावरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा सर।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: मनोज चौहान को सुना दिया जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: एक नाम लूंगा सर,
0: हाँ बोल दीजिए।
1: हमारे बड़े भाई हैं रणजीत से बसे सर, बता राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार साहब।
0: नमस्ते जी।
2: मैं रामचंद गांव डोला बागपत से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: मनोज चौहान जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: जो एक नाम है जी, मेरी लड़की छाया है, उसके लड़का है तरुण है और प्रिया है। बड़ा लड़का मेरा प्रदीप है, पुत्र का जो मंजू है, रोहन है, नंदिता है, सम्मान है।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम साहब जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज मनोज चौहान को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो सुशी भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गाँव बरहाना जिला बलिंग।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: मनोज चौहान को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और मेरे साथ आरती भारती स्वाति मिसेस कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: विश्वकर्मा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: सर मनोज चौहान जी को सुनना चाहेंगे सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर मनोज चौहान से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इंद्रवीर तेवतिया, गाँव फुलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: जयवीर सिंह की गाई हुई रागिनी सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम लेने चाहूंगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: उमित तेवतिया, प्रिंस।

0: साक्ष्य निष्कर्ष हमारी बुआ जी है राजवीरी और गांव डालमपुर से वीरपाल सिंह, खुशियालपुर से मास्टर शेर सिंह मोदी और पंडित रतन लाल।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार
2: जी, भाई राम
1: राम। राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: हीरा लाल बोल रहा हूँ, गाँव मुलेठा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश।
1: हीरा लाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जयवीर जी सुनवा दें।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
2: मेरे भाई काशीराम और पोता हिमांशु।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
3: ये सार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
1: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: जयवीर सिंह को सुनना चाहूंगा, और साथ में सुनने वाले हैं बनवारी लाल यादव गामड़ी वाले और शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा महेंद्रगढ़ से, रावल सैनी सार से। राम राम
1: जी। राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम जी।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं चंद्रपाल जाखड़ बोल रहा जी।
1: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: जयवीर को सुनवा दो जी।
1: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: हरिंदर बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव बोर से।
1: हरिंदर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: जयवीर को सुनवा दियो जी, गणेश नोवे सुने।
1: जरूर सुनवाएंगे
5: जी। नमस्कार।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: अशोक कुमार सिन्हा।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: जयवीर सिंह को।
1: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर जयवीर सिंह से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 01123467331 और दूसरा नंबर है 01123467332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आए भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, किसान वाणी।

0: आठ वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में, और आज लेकर आए हैं विशेष जानकारियां और नए नए विषय।
4: जी हाँ, और अरविंद, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे पशुपालक भाइयों और बहनों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
3: बिल्कुल सीमा, हमारे देश में लाखों किसान और पशुपालक गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पशुधन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। ऐसे में पशुओं को स्वस्थ रखना न केवल पशुपालक की आय के लिए जरूरी है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
4: बिल्कुल, इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि LHDCP संचालित किया जा रहा है। अरविंद, सबसे पहले हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि ये जो पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, ये है क्या?
3: सीमा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पशुओं में होने वाली जो गंभीर और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण करना है। इसके अंतर्गत बड़े स्तर पर टीकाकरण, रोगों की निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना और पशुपालकों तक पशु स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना शामिल है।
4: बिल्कुल, और अगर हम बात करें उन प्रमुख बीमारियों की जिनके नियंत्रण पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है,
3: तो वो जो है खुरपका, मुंहपका यानी कि FMD, बोवाइन ब्रुसोलोसिस, भेड़ और बकरियों में होने वाला PPR तथा शूकरों में होने वाली क्लासिकल स्वाइन फीवर जैसी प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण पर काफी जोर दिया जाता है।
4: बिल्कुल, और अगर खुरपका, मुंहपका का नाम तो हमारे पशुपालक अक्सर सुनते ही रहते हैं, ये बीमारी पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी उत्पादकता को भी प्रभावित कर सकती है।
3: इसीलिए FMD के खिलाफ बड़े स्तर पर नियमित टीकाकरण कराया जाता है। सरकार ने साल 2030 तक FMD को नियंत्रित और समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह PPR को भी वर्ष 2030 तक नियंत्रण और समाप्त करने का लक्ष्य है।
4: और अगर हम बात करें कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, तो अरविंद, कई बार पशुपालक सोचते होंगे कि जब उनका पशु बिल्कुल स्वस्थ है तो टीका लगाने की क्या जरूरत है।
3: बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नियमित और निर्धारित समय पर टीकाकरण से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बीमारी फैलने की संभावना कम होती है। इसीलिए किसान मित्रों को अपने क्षेत्र में चलाए जा रहे सरकारी टीकाकरण अभियान में अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाना बहुत ही जरूरी है।
4: एक सवाल और आ रहा है अरविंद हमारे जहन में कि आजकल जो पशुओं के कान में एक टैग भी लगा दिए जाते हैं, इसका क्या महत्व है?
3: जी हाँ सीमा, इसका महत्व है कि पशुओं की पहचान और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं उनको रखना। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किस पशु को कौन सा टीका कब लगाया गया और उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी क्या है, तो एक मेडिकल रिकॉर्ड पूरा इकट्ठा रहता है। पशुओं की पहचान के लिए ईयर टैगिंग और उनके स्वास्थ्य तथा टीकाकरण से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की गई है। सीमा, एक और महत्वपूर्ण पहल है मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी कि मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई।
4: मतलब पशु चिकित्सा सेवाएं केवल पशु चिकित्सालय तक ही सीमित नहीं रहेंगी।
3: बिल्कुल, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों के दरवाजे तक अब पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था की गई है,
4: और ये सुविधा खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए उपयोगी हो सकती है जहाँ पशु को लेकर दूर स्थित पशु चिकित्सालय तक जाना मुश्किल होता था।
3: तो उम्मीद है दोस्तों कि जानकारी आपके काफी काम आएगी और आपके पशुधन और स्वस्थ रहेंगे और इसी तरह से आपकी आय और जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती रहेगी।
4: बिल्कुल, और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक और उपयोगी विषय की ओर जो हमारे किसान मित्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
3: जी हाँ, और हमारा आज का विषय है पूसा संस्थान की किसान उपयोगी प्रौद्योगिकियां। इसमें विशेषज्ञ है डॉक्टर मंजीत सिंह नैन, आप प्रधान वैज्ञानिक है कृषि प्रसार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
5: किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसानों की सेवा में तत्पर रहते हैं, और इसी प्रकार का एक कृषि संस्थान है जिसे हम पूसा के नाम से जानते हैं, और वो किसानों के लिए नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास करता रहता है। अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने कौन कौन सी नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है इसकी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनजीत सिंह नैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: तो डॉक्टर

0: आप सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताइए कि जो पूसा संस्थान है इसका किसानों के लिए क्या महत्व?
1: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में हम IRI भी कहते हैं, ये
0: जी
1: देश का एक प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों में से एक है और ये नई दिल्ली में स्थित है। फसल सुधार, बागवानी, पौध संरक्षण, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि प्रसार जैसे अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रयोगशाला में केवल प्रयोग करना नहीं, इसका वास्तविक उद्देश्य है कि अनुसंधान से विकसित तकनीक, किस्में, ज्ञान किसान के खेत तक पहुंचे और किसान की आय, उत्पादकता और संसाधन उपयोग में दक्षता आए। इसलिए IRI की प्रौद्योगिकियों को हम तीन शब्दों में समझ सकते हैं, अनुसंधान से खेत तक और खेत से किसान की आय तक।
0: जी रक्षा, बिल्कुल सही आपने कहा कि अनुसंधान से खेत तक और खेत से किसान की आय तक। लेकिन हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसने अब तक किसानों के लिए कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो विकसित की हैं?
1: देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्कूल मोड में काम करता है। हमारे यहाँ 7 स्कूल हैं, हर एक स्कूल का अपना अपना अलग कार्य है, जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फसल सुधार।
0: जी
1: फसल सुधार का विद्यालय है, उसमें बेहतर किस्में, गुणवत्ता पूर्वक बीज उपलब्ध कराना, ये उसका कार्य है। दूसरा स्कूल है हॉर्टिकल्चर साइंस यानी उद्यानिकी स्कूल, इसमें फल, सब्जी, फूल, संरक्षित खेती, कटाई उपरांत प्रबंधन की तकनीकें विकसित करना है। तीसरा स्कूल है प्लांट प्रोटेक्शन स्कूल। प्लांट प्रोटेक्शन माने जैसे कीट, रोग, खरपतवार, अन्य जैविक समस्याओं के समाधान के साथ काम करता
0: जी डॉक्टर, क्या मृदा सुधार या जल प्रबंधन पर भी कार्य हो रहा?
1: है। ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्कूल है जो मृदा सुधार, जल का संरक्षण, उर्वरकों का रख रखाव, कृषि यांत्रिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के जैसे पानी, मिट्टी, हवा, इनके बेहतर उपयोग पर केंद्रित है।
0: तो ये तो डॉक्टर साहब आपके संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी भी तकनीक हैं जो किसान के खेत के लिए उपयोगी हों?
1: लगभग सारी की सारी जो हमारी तकनीकें हैं वो किसानों के लिए ही हैं। किसान के लिए जब फसल उत्पादन करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किस्म का चुनाव। अगर अच्छी खेती के बावजूद भी किस्म उपयुक्त ना हो तो किसानों को अपेक्षित उत्पादन कम मिलता है और अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ कदम हैं, जैसे सही फसल का चुनाव, सही किस्म का चुनाव, गुणवत्ता पूर्वक बीज, सही समय पर बुआई, संतुलित पोषण, जल प्रबंधन, कीट व रोगों का ठीक से प्रबंधन और कटाई उपरांत समन्वय बाजार।
0: कहने का मतलब यह है कि जब किसान खेत की तैयारी करता है, बीज खरीदता है, तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना है, जब बिजाई करता है तो उसकी सावधानी रखनी है कि उसका जमाव ठीक से हो, और फसल जब तैयार होती है तो उसमें किसी तरीके की कीट बीमारियां लगती हैं तो उसको भी प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब, पूसा संस्थान किसानों के बीच बहुत प्रचलित है बासमती धान के लिए, तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपसे विस्तार में जानना चाहूंगा तो आप बताएंगे किसान भाइयों को?
1: देखिए, बासमती धान के बारे में कहा जाता है कि बासमती धान के जनक पूसा संस्थान ही है। यहाँ बासमती धान की बहुत सारी महत्वपूर्ण किस्में बनाई हैं, जिसमें से पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, 1718, 1882, 1769 और पूसा बासमती 1985 जैसी बहुत सारी किस्में हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश का जो निर्यात है केवल बासमती किस्मों का 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये किसी भी एक फसल द्वारा जो निर्यात का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा, और इनमें से बहुत सारी किस्में अलग अलग अवधि की हैं, रोग रोधिता के लिए जानी जाती हैं, कुछ किस्में डायरेक्ट सीडेड राइस जैसी परिस्थितियों के लिए भी उपयोगी हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने किस्मों की बात करी तो हमारे किसान भाई कहते हैं कि इनका बीज बहुत महंगा मिलता है, क्या इसकी बीज की गुणवत्ता का पता चल जाए तो किसान भाई को ये लगता है कि जो हमने बीज खरीदा है वो ठीक है?
1: देखिए, बीज किसी भी फसल प्रौद्योगिकी या फसल उत्पादन के लिए बीज शुरुआती कदम है। और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीजों की बात करें तो यहाँ सीड क्वालिटी, सीड की टेस्टिंग, उसके ट्रीटमेंट

0: उसके प्राइमिंग और सीड के एनहांसमेंट, इन सारी चीज़ों पर अनुसंधान किया जाता है। किसान को हमेशा प्रमाणित और गुणवत्तापूर्वक बीज देने की कोशिश की जाती है और सलाह भी दी जाती है कि यदि पूसा संस्थान से ना लें, कहीं और से भी लें, तो गुणवत्तापूर्वक बीज ही लेना चाहिए। और गुणवत्ता जानने के लिए बीज की अंकुरण क्षमता, उसकी शुद्धता और रोग मुक्तता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही फसल एवं अनुशंसा के अनुसार बीज उपचारित करना चाहिए। याद रखिए, अच्छा बीज आदि सफलता की नींव है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से हम बासमती धान के द्वारा देश को काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लेकिन धान के साथ एक जो हमारी पराली पैदा होती है, तो उसका प्रबंधन किस तरीके से किसान भाई करें, और क्या इसके लिए पूसा संस्थान द्वारा कोई तकनीक विकसित की गई है?
0: वैसे तो पराली प्रबंधन के बहुत सारे तरीके अनुसंधान के आधारित पर किए गए हैं, लेकिन पूसा संस्थान का एक बहुत ही आयाम वाला तकनीक है जिसको हम पूसा डिकम्पोजर कहते हैं। पूसा डिकम्पोजर एक माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो धान की कटाई के उपरांत खेतों में बची हुई पराली को जलाने के बजाय उसे जैविक रूप में विघटित कर सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर में सूक्ष्म जीवों का कंसोर्सियम होता है जो क्रॉप रेजिड्यू डिकम्पोजिशन को तेज करने में मदद करता है। तो किसानों के लिए तो ये संदेश कहा जा सकता है कि पराली को कचरा नहीं, खेत की संपत्ति माने, ताकि उसको डिकम्पोज होने के बाद खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: जी रक्षा, अगर किसान भाई पराली जलाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे बहुत से पोषक तत्व वो भी जल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो डिकम्पोजर की बात रही, क्या कोई जैविक नियंत्रण भी है, कोई ऐसी तकनीक विकसित की गई है संस्थान द्वारा?
0: जो पूसा डिकम्पोजर है ये जैविक ही है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज से ही डिकम्पोजिशन होता है। उसके अलावा यदि आप पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, बेलिंग, ये भी कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिसका प्रयोग हमारे पंजाब और हरियाणा में काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो रही फसलों की बात, और बहुत से हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादन करते हैं, क्या सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में संस्थान द्वारा कोई तकनीकों का विकास किया गया है?
0: सब्जी उत्पादन संस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियों पे काम किया जाता है, जैसे टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और बहुत सारी फसलें हैं जिनकी विकसित किस्में की गई हैं और किसानों के प्रयोग के लिए अवेलेबल है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं, नई तकनीक को अपना के अगर सब्जी उत्पादन करें, एक तो अच्छी गुणवत्ता के जो भी हमारे खाने वाले हैं उन्हें मिलेगी, और उसके साथ साथ किसान भाई की आमदनी भी बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सब्जियों के विकास में संस्थान ने काफ़ी कार्य किया है, उस तरीके से क्या जो फल उत्पादक किसान भाई हैं उनके लिए भी कोई तकनीक संस्थान द्वारा विकसित की गई है?
0: यदि किस्मों की बात करें तो किस्मों में पूसा संस्थान की मैंगो की बहुत सारी वैरायटी बहुत फेमस हैं। उसके अलावा नींबू वर्गीय फसलों में हमारे बहुत सारी किस्में हैं। बात करें अमरूद की, पपीते की, इन सब फसलों पे हमारे संस्थान में काम होता है और बहुत सारी किस्में किस क्षेत्र में लगाना है, वो मिट्टी की कैसी स्थिति है, इसके अनुसार किस्में हमारे पास अवेलेबल।
1: किसान भाई कब लगाएं, उसको कितनी दूरी पे लगाएं, क्या इसके लिए भी संस्थान द्वारा जानकारी समय समय पर किसानों को?
0: समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा लगभग हर फसल के लिए खेत दिवस मनाते हैं जिसे फील्ड डे कह सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंगो डे हुआ था, उससे पहले फ्लावर डे संस्थान में फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। फरवरी या मार्च के हमारे यहाँ पे एक कृषि विज्ञान मेला होता है जिसे पूसा कृषि विज्ञान मेला बोलते हैं।
1: जी,
0: लाखों लोग उसमें सहभागिता करते हैं।
1: जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि फल और सब्जियों की बहुत सी किस्में संस्थान द्वारा निकाली गई हैं और किसान भाई उनका उत्पादन भी करते हैं, लेकिन देखने में आता है किसान मेहनत करके अच्छी किस्मों को प्रयोग करके उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान हो जाता है काफ़ी मात्रा में, जैसे कटाई उपरांत नुकसान होता है या कहीं बाजार ले जाता है तब उसकी सब्जियां और फल खराब हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि इनको ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके?
0: किसान

0: की आय केवल खेत के उत्पादन से ही नहीं, बल्कि उत्पाद के सुरक्षित रूप तक बाजार तक पहुंचने को भी तय करती है। IRI ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें दो महत्वपूर्ण तकनीकों की बात मैं करना चाहूँगा।
1: जी,
0: एक तो छोटे किसानों के लिए पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर,
1: ये क्या होता है?
0: ये एक तकनीक है जिससे बिना ज़्यादा एनर्जी लगा

0: कमरा बनाते हैं, वातावरण को कंट्रोल करते हैं, और उसमें कुछ समय तक आप तोड़ी हुई फसलों को, खासतौर से सब्जियों की फसलों को संरक्षित कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक पूसा सन फ्रिज है, जिसमें आप वातावरण में जो हमारी सौर ऊर्जा है उसका दोहन करके एक ऐसा फ्रिज जो 2 टन तक सब्जियों को कम से कम 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रख सकता है। इसलिए बाजार में जो फोर्स्ड मार्केटिंग कई बार करनी पड़ती है कि उत्पादन ज्यादा हो गया और आपको बाजार भाव नहीं मिल रहा, तो पूसा सन फ्रिज जो है उस पे कुछ सरकारी राहत भी अवेलेबल है और उसकी तकनीक हमारे पास अवेलेबल है, जिसके माध्यम से बड़ा किसान या संयुक्त रूप से FPO के माध्यम से उसको लगा सकते हैं और काफी बड़े स्तर पे इसका भंडारण किया जा सकता है और कोई एनर्जी नहीं लगती, सूर्य की ताप से उसमें एनर्जी ग्रहण करता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से छोटे किसान होते हैं और उनके पास जो खेत की भूमि है वो बहुत छोटी जोत, क्या उनके लिए कुछ कृषि यंत्र ऐसे विकसित किए गए हैं?
0: हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक कृषि अभियांत्रिकी करके एक विभाग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसका काम ही कृषि मशीनरी और प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज के पर अनुसंधान करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बहुत सारी यंत्र प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी मशीनरी बनाई गई है, जिससे श्रम का भी बचाव होता है। छोटे किसान व्यक्तिगत रूप से मशीन खरीदने के बजाय कई बार ये भी अनुशंसित किया जाता है कि FPO के माध्यम से या कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसान खरीद सकते हैं, समूह में खरीद सकते हैं, जिससे लागत घटे और किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।
1: अब आजकल ड्रोन काफी चर्चा में है, ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग के बारे में भी आपके संस्थान द्वारा कुछ किया जा रहा है?
0: हमारे यहाँ एक कृषि भौतिकी विभाग है जो ड्रोन पे काम कर रहा है और ड्रोन को रिमोट सेंसिंग से जोड़ के फसल निगरानी के लिए, फसलों में आने वाले कीट और रोगों के पहले से जानकारी लेने के लिए, फसल में जो भी स्ट्रेस होता है या तनाव होता है उसके आकलन के लिए, इनपुट एप्लीकेशन, उन सब के लिए ड्रोन का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है और आगे भी इसके तकनीक का विकास कर रहे हैं। जैसे सटीक कृषि या परिशुद्ध खेती या प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसमें ड्रोन का और आज इन तकनीकों का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है, जहाँ जितनी आवश्यकता वहाँ उतना ही इनपुट।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हर तरफ जिक्र हो रहा है जलवायु परिवर्तन का, और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों की क्या मदद कर सकते हैं?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन हेतु कृषि क्षेत्र में बहुत सारी फसलों की किस्में बनाते हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें हों, उन पे काम हो रहा है। कोई स्ट्रेस टॉलरेंट है, स्ट्रेस से हमारा मतलब है अधिक सर्दी या अधिक गर्मी। जैसे हम कहते हैं कि गेहूं की कोई किस्म टर्मिनल हीट है, टर्मिनल हीट मार्च के महीने में ही आपके गर्मी ज्यादा बढ़ गई, तो टर्मिनल हीट टॉलरेंट, उसको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ क्रॉप फिजियोलॉजी पे काम करते हैं, कुछ जेनेटिक्स और रिसोर्स एफिशिएंसी पे अनुसंधान हो रहा है, जिसके तहत बहुत सारी तकनीक विकसित की गई हैं, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज, दूसरा बुआई के समय में बदलाव, मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित एडवाइजरीज, पानी को बचाने वाली तकनीक, या कुछ ऐसी फसलों का चुनाव जो से क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो सके, विविधीकरण, इन सब चीजों पे अनुसंधान हो रहा है, तकनीकें विकसित हैं। यदि किसान चाहें तो अपनी स्थिति के अनुसार तकनीक का चुनाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर मनजीत सिंह नैन जी, किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं अपने संस्थान की तरफ से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कम लागत, कम जोखिम, कम संसाधन उपयोग, अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक आय, यही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मिशन।
1: डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे ये महत्वपूर्ण चर्चा, और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मंजीत सिंह नैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग से हमारे साथ रहे। इतनी सुंदर जानकारी के बाद अब वक्त है एक बहुत ही सुंदर सी रागिनी का, तो आइए सुनते हैं ये रागिनी।
3: राजन रे तेरी लाती गात में दर्द कुढ़ाला कर गे अपने।

0: और इस खूबसूरत रागनी के बाद चलते हैं मनमोहक मौसम की तरफ, और कहाँ कैसा मौसम रहेगा कल आइए जान लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में बारिश के जो आसार हैं वो बहुत कम हैं। आसमान में हल्के बादल रहेंगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है जिसमें उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। और हम अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो लगभग 34 से 36 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है, और वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। और सीमा मौसम के बाद ही अब आगे चलते हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के बारे में, जो कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए इस समय।
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वो सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें, फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें।
0: इस मौसम में किसानों को सलाह है कि अगर टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो उसे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर करें। किसानों को यह भी सलाह है कि इस समय सरसों साग, पूसा साग एक, मूली वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक ऑल ग्रीन तथा धनिया पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर करें।
1: और साथ ही साथ अगर हम फलों में बात करें आम, नींबू, अमरूद की, तो नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंधन करके इनकी रोपाई जल्दी से जल्दी

0: और सीमा, अब हम बढ़ते हैं कुछ बाजार भाव की तरफ, जान लेते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के आधार पर क्या हैं कुछ फल और सब्जियों के भाव।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम बात करें प्याज की, तो वो लगभग 30 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं टमाटर 36 रुपए प्रति किलो की दर से, बैंगन 25 रुपए और खीरा 30 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और वहीं अगर आप भिंडी खाना चाहते हैं तो वो 50 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और फलों के क्या भाव चल रहे हैं सीमा अभी?
1: अगर हम फलों की बात करते हैं और उसमें सेब की बात करें, तो सेब लगभग 180 रुपए प्रति किलो का हिसाब चल रहा है इस टाइम बाजार में। और साथ ही साथ अगर केले की बात करें तो 25 रुपए दर्जन, और अमरूद 80 रुपए किलो, मौसम्बी 41 रुपए प्रति किलो, और पपीता 30 रुपए प्रति किलो। और इसके अलावा हम अगर अनानास की बात करें तो 70 रुपए प्रति किलो, और तरबूज 17 रुपए प्रति किलो के भाव से आपको मिल सकता है।
0: तो दोस्तों, ये थी मौसम, बाजार और मौसम आधारित कृषि सलाह। उम्मीद है ये उपयोगी रहेगी जब आप अपनी खेती बाड़ी में और इसका इस्तेमाल करेंगे।
1: और किसान भाइयों, कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com पर। इस पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें किसी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी इस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आपकी ईमेल का हमें रहेगा इंतजार। तो दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। समय शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कसलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने NNRL, NIRL, NCRTC, Renewables लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। CNG की कीमत में 3.89 रुपए की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लगभग 60% बिजली की जरूरत को अब कैप्टिव सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने NNRL, NIRL, NCRTC Renewables लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: इस सौर संयंत्र का विकास NNRL द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन में किया जाएगा। संयंत्र में उत्पन्न बिजली उत्तर

0: प्रदेश राज्य ग्रिड के माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्थित एनसीआरटीसी के रिसीव सब स्टेशनों पर पहुंचाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रुपए है। संयंत्र से मिलने वाली बिजली से नमो भारत कॉरिडोर बिजली खर्च में लगभग 25% की कमी आने का अनुमान है। इस परियोजना से हर वर्ष लगभग 1,77,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। यह परियोजना ऊर्जा लागत को कम करने के साथ साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह पहल भविष्य के शहरी और क्षेत्रीय ट्रांजिट नेटवर्क के लिए एक मॉडल का काम करेगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि वर्तमान में इस कॉरिडोर पर लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी आयुक्त संजीव खेरवार ने आज राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विश्व बैंक की टीम ने टोक्यो, न्यूयॉर्क और बार्सिलोना में अपनाए जा रहे विभिन्न प्रबंधन मॉडलों की जानकारी दी। श्री खिरवार ने कहा कि दिल्ली के लिए समयबद्ध, व्यापक और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति जरूरी है, जिसमें कौशल संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक निस्तारण शामिल है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन करीब 15,000 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। श्री वाही ने कहा कि फिलहाल लगभग 4 से 5 लाख टन कचरा शेष बचा है और इसे जल्द हटाने के लिए कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंडफिल साइट पर कचरे से ईंधन संयंत्र लगाने का कार्य भी जारी है। श्री वाही ने बायो माइनिंग कार्यों में तेजी लाने के लिए लैंडफिल साइट पर अतिरिक्त मशीनें लगाने के आदेश दिए। दिल्ली भाजपा ने आज दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मेहनत, संस्कृति और प्रगति में पूर्वांचल समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वांचल के विकास, सम्मान और अवसरों को मिली नई गति से ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में दिल्ली में ये विश्वास और मजबूत हो रहा है। श्रीमती गुप्ता ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अपने सेवाभाव, सक्रियता और जनसंपर्क के जरिए दिल्ली के पूर्वांचल समाज की अपेक्षाओं और हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखेंगे तथा जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करेंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक के दौरान ये घोषणा की गई। श्री मल्होत्रा ने बताया कि इस अभियान के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल होंगे, वही दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा इसके नोडल मंत्री होंगे। अभियान की शुरुआत अगले महीने की 17 तारीख को रक्तदान शिविर से होगी। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान राजधानी में परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान 1,635 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बारापुला एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर

0: शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। IGL ने कहा कि कीमत बढ़ने के बावजूद दिल्ली में CNG उपभोक्ताओं के लिए अब भी सबसे किफायती ईंधन विकल्पों में शामिल है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण पश्चिम एशिया संकट के फिर से गहराने को बताया है। कंपनी के अनुसार तनाव बढ़ने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते LNG की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक LNG कीमतें संकट से पहले के स्तर की तुलना में करीब दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा सर्दियों का मौसम नजदीक आने के कारण यूरोप में प्राकृतिक गैस का भंडार बढ़ाने और फिर से भरने की जरूरत भी बढ़ गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा ढांचे के अंतर्गत बायोगैस उत्पादकों को प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट लगभग 1,478 रुपए दिए जाते हैं, जबकि गोबरधन योजना के अंतर्गत संशोधित क्रय मूल्य 2,110 रुपए है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि में वर्तमान समय और ठहराव के अनुसार विस्तार करने का निर्णय लिया है। इनमें हजरत निजामुद्दीन प्रयागराज, इंदौर हजरत निजामुद्दीन, भावनगर शकुरबस्ती, ओखा शकुरबस्ती, कोटा हजरत निजामुद्दीन, हरिद्वार साबरमती समेत कई स्पेशल रेलगाड़ियां शामिल है। यात्री रेलवे मदद हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा रेलवे पूछताछ वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय में से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों को द्वारका जिले के उत्तम नगर इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान चारों विदेशी नागरिक भारत में अपने वैध प्रवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस के अनुसार FRR2 द्वारा स्थापन प्रक्रिया पूरे करने के दौरान चारों को दिल्ली के शाहजहांबाग स्थित सेवा सदन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली सरिता विहार उपमंडल में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। ये आयोजन सरिता विहार, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और कालिंदी कुंज पुलिस थाना क्षेत्रों में किया गया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की सुनवाई प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का शीघ्र निपटान और पारदर्शी समाधान करना है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों

0: का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
0: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों के जुनून और दृढ़ संकल्प के समर्पण को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने NNRL, NIRL, NCRTC Renewables Limited के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा। सामईन की खिदमत में फरहीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, अल्फाज को तरतीब देकर वज़न के साथ पेश करने को ही शायरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि शायरी में बुलंद ख्याली और रमजियत भी ज़रूरी है। यानी जो बात शेर में कही गई है उसका लहजा शायराना हो, ज़ाहरी तौर पर जो शेर का मफहूम समझ में आ रहा है उसके हकीकी मायने उससे किसी कदर बुलंद हों और क़ारी या सामे अपने बेदार जहन से फौरन समझ जाए कि शेर में जो बात कही गई है वो किन माने में कही गई है। यही शेर की खूबी भी है। यह भी हकीकत है कि शायरी ऐसा फ़न है कि किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जज्बात और एहसासात के नतीजे में किसी शख्स पर इल्हाम की शक्ल में उतरती है। वो जज्बात खुशी और मुसर्रत के भी हो सकते हैं और अफसरदगी के भी। समय आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के मुशायरे की निजामत कर रहे हैं जनाब तसनीफ हैदर।
1: आकाशवाणी के इस मुशायरे में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शहबाज रिजवी, उसामा जाकिर, विपुल कुमार और खाकसार तसनीफ हैदर। आइए इस मुशायरे की इब्तिदा करते हैं शहबाज रिजवी साहब के कलाम से। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कलाम हम सबको

0: सुनाए।
1: बहुत शुक्रिया तसनीम भाई। एक गज़ल से चंद अशआर समाप्त करें। धूप ढल जाती है, साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
0: वाह,
1: रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, दिन निकलता है तो चेहरे पे जमाल आता है।
2: वाह वाह वाह,
1: दिन
2: वाह,
1: निकलता है
2: तो
1: तो चेहरे पे
2: जो
1: जमाल आता है। पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। पहले जम जाता है आँखों के दरीचे में कहीं, फिर मेरे खून में यकदम से उछाल आता है। जंगलों से जो गुजरता हूँ तो आती है सदा,
0: वाह,
1: पेड़ पौधों को भी रोने का कमाल आता है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर,
0: आए है।
1: मैं चला जाता हूँ
0: सयाद
1: का साथी बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है।
0: अरे वाह वाह, फिर से पढ़िए,
1: पीछे
0: फिर से।
1: पीछे मेरे सयाद का जाल आता है।
0: क्या,
1: मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर,
0: क्या बात है।
1: पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है। धूप ढल जाती है, साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
2: वाह वाह, क्या अच्छी गजल है।
1: बहुत शुक्रिया। और एक गजल
0: बहुत
1: देंगे कि ए मेरी बादे सबा, चल तो ज़रा ज़ेरे नगी,
2: मेरी बादे सबा,
1: चल तो ज़रा ज़ेरे नगी, शहरे इफलाक से लौटे हैं अभी खाक नसी।
0: क्या बात
2: वाह
0: है,
2: वाह,
0: अच्छे बहुत अच्छे।
1: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
0: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
1: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग, बस चिरागों को समझते हैं सितारों को नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: बस चिरागों को समझते हैं सितारों को नहीं। ये जो रोने की सदा आती है दीवारों से,
0: ये जो रोने की सदा आती है दीवारों,
1: मेरी आवाज़ पे आवाज़ लगाती हो कहीं,
0: हाँ
1: मेरी आवाज़ पे आवाज़ लगाती हो कहीं, हाथ छूटा तो कलेजे से लगी हिजर की धूप,
0: हाथ छूटा
2: हाथ
0: तो
2: छूटा
0: कलेजे से
2: तो
0: लगी
2: कलेजे
0: हिजर की
2: से
0: धूप,
2: लगी हिजर की
1: धूप,
2: धूप।
1: रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमीन,
0: क्या
2: वाह
0: बात
1: वाह
0: है,
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: रंग
2: बहुत
1: बिखरे
2: अच्छा
1: तो
2: शेर
1: नजर आई
2: है।
1: मुझे मेरी
2: मेरी
1: जमीन,
2: जमीन,
1: ख्वाब टूटा तो खुले आँख के शह पर मुझ पे, ख्वाब टूटा
2: टूटा
1: तो खुले
2: खुले आँख
1: आँख के
2: के
1: शह
2: शह
1: पर
2: पर
1: मुझ
2: मुझ
1: पे,
2: पे,
1: नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं,
0: क्या
2: वाह
0: बात,
2: वाह वाह वाह।
1: नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं, याद रहता ही नहीं मुझको तेरे घर का पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं अपना खुदा अपनी जबीं।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल देखें कि तहलील हुए जाते हैं आवाज़ के सम में,
0: तहलील हुए जाते हैं
2: तहलील हुए
0: आवाज़ के
2: जाते
0: सम
2: हैं
0: में,
2: आवाज़ के सम में,
1: तायर तो चले आए थे गंदुम के भरम में,
0: टायर तो चले
1: हाय
0: आए थे
1: हाय
0: गंदम
1: वाह,
0: के भरम
1: तायर
0: में,
1: तो
0: वाह वाह,
1: चले आए थे गंदुम के भरम में,
0: बहुत अच्छा शब्द।
1: आवाज़ लगाती है मुझे मेरी खामोशी, आवाज़ लगाती
0: लगाती है
1: है
0: मुझे
1: मुझे
0: मेरी
1: मेरी
0: खामोशी,
1: खामोशी, और शोर मचाती है सबा दीदे नम में,
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह,
0: बहुत
1: और
0: अच्छा।
1: शोर मचाती है सबा
0: सबा दीदे
1: दीदे नम
0: नम में,
1: में, तन्हाई चली आई थी एक रोज़ मेरे घर, अब खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में,
0: आए है वाह
1: अब
0: वाह वाह,
1: खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में, जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब,
0: जो लोग मुझे
1: जो
0: ढूंढने
1: ढूंढने
0: निकले
1: निकले
0: थे
1: थे
0: उन्हें,
1: उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में।
0: अरे वाह, फिर
1: वाह
0: से पढ़िए,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह
1: क्या
0: वाह,
1: जो लोग मुझे
0: जो
1: ढूंढने
0: ढूंढने
1: निकले
0: निकले
1: थे
0: थे
1: उन्हें
0: उन्हें
1: अब,
0: अब,
1: सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में, हम कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार लगाते, हम
0: हम
1: कैसे
0: कैसे
1: यहाँ ख्वाब के
0: के
1: अंबार
0: अंबार लगा,
1: लगाते, आंखें तो लगा रखी थी वीरान शिकम में,
0: वाह वाह
2: वाह
0: वाह वाह,
1: आंखें तो लगा रखी थी। और आखिर में गज़ल और देख लें कि ज़मीन से देखते रहते हैं आसमान का दुख,
0: से देखते
1: हमारे दुख से बड़ा तो नहीं जहान का दुख,
0: दुख, वाह वाह वाह,
1: बदन सराय से आती है बेनवा चीखें, हमारी रूह में पिन्हा है इस मकान का दुख,
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
1: हमारी
0: बहुत अच्छा।
1: रूह में पिन्हा
0: पिना
1: है
0: है
1: इस
0: इस
1: मकान
0: मकान
1: का
0: का
1: दुख,
0: दुख,
1: दिखाए फिरते रहो सबको चाक दामानी,
0: दिखाए
1: दिखाए फिरते
0: फिरते
1: रहो
0: रहो सबको
1: सबको चाक
0: चाक दामानी,
1: दामानी, छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख,
0: वाह वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह वाह,
1: छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का
2: नशिस्ते
1: दुख। नशिस्ते ख़त्म हुई और चिराग बुझने लगे,
0: खत्म
1: नशिस्ते
0: हुई और
1: ख़त्म
0: चिराग
1: चिराग
2: बुझने
1: बुझ
2: लगे,
1: समझ में आएगा किसको चिराग दान का दुख,
0: क्या बात,
1: ज़रूरतों के मुताबिक घटे बढ़ाए गए, मकान दिल से जुड़ा है यहाँ।

0: जमान
1: का
0: का
1: दुख।
0: दुख। चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे,
1: चढ़ो
0: उतरने
1: पहाड़।
0: वाले से पूछो कभी ढलान का
1: क्या
0: दुख।
1: बात
0: हाय
1: है,
0: हाय
1: अरे
0: हाय
1: वाह
0: हाय,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: अच्छा शेर।
1: बहुत अच्छा।
0: चढ़ो पहाड़ तो पत्थर
1: पत्थर भी
0: भी
1: पाँव
0: पांव
1: चूमेंगे,
0: चूमेंगे,
1: वाह,
0: उतरने वालों से
1: से
0: पूछो
1: पूछो
0: कभी
1: कभी
0: ढलान
1: ढलान
0: का
1: का। बहुत
0: दुख।
1: अच्छे थे भाई, वाह वाह।
0: दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही,
1: दरख्त काटने
0: दरख्त
1: वालों
0: काटने
1: कभी सुनो,
0: काटने वालों
1: कभी
0: कभी सुनो
1: सुनो
0: तो
1: तो
0: सही,
1: सही।
0: परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख।
1: क्या
0: हाय
1: बात है,
0: हाय,
1: वाह भाई,
0: परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख। ये गजल आप देखें। मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है,
1: मैं खुश
0: मैं
1: हूँ मेरे
0: खुश हूँ
1: पास
0: मेरे
1: ये
0: पास
1: तन्हाई
0: ये
1: बहुत
0: तन्हाई
1: है,
0: बहुत
1: मुझको
0: है,
1: हाय
0: मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है।
1: हाय हाय, वाह वाह वाह।
0: मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है, उस आँख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले,
1: आँख से
0: उस
1: कहता हूँ
0: आँख से
1: मेरा दिल न
0: कहता हूँ
1: टटोले।
0: मेरा
1: वाह
0: इस
1: दिल न
0: दिल में
1: टटोले,
0: चुभे तीर की गहराई बहुत है। हाय
1: वाह वाह
0: हाय,
1: वाह वाह।
0: इस दिल में चुभे
1: तीर
0: तीर की
1: की
0: गहराई
1: गहराई बहुत
0: बहुत
1: है,
0: है, वाह
1: वाह।
0: वाह वाह वाह। पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा,
1: ओहो, पत्थर पे
0: पत्थर पे उगा
1: उगा रखा
0: रखा है
1: है
0: इस
1: दिल
0: दिल
1: का
0: का
1: सबूचा।
0: सबूचा, खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है।
1: हाय हाय
0: हाय
1: हाय
0: हाय
1: हाय,
0: हाय,
1: वाह
0: खिलने के लिए
1: वाह
0: दर्द
1: वाह
0: को
1: वाह
0: पुरवाई बहुत है। कब
1: वाह।
0: मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ, कब मैंने कहा तुझसे
1: मुझसे मेरे
0: मेरे सर
1: सर
0: पे
1: पे रहे
0: रहे
1: हाथ,
0: हाथ, को तेरे चादर
1: चादर
0: की
1: की
0: चौथाई
1: चौथाई।
0: बहुत है। उस शोक के हाथों से जला भी हूँ बुझा भी, अपना है कभी वो कभी हरजाई बहुत
1: बहुत
0: है। तुम
1: है,
0: चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो,
1: हाँ,
0: तुम चाहो तो एक
1: एक फूल
0: फूल
1: मुझे
0: मुझे फेंक
1: फेंक के
0: के मारो,
1: मारो।
0: देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत है।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: अरे
0: वाह
1: वाह, फिर
0: वाह
1: से
0: भाई,
1: पढ़ो भाई,
0: बहुत।
1: वाह वाह
0: तुम
1: वाह।
0: चाहो तो एक फूल
1: फूल
0: मुझे
1: मुझे
0: फेंक
1: फेंक के
0: के मारो,
1: मारो, क्या कहने भाई साहब,
0: देखो मेरी
1: मेरी
0: मिट्टी
1: मिट्टी
0: अभी
1: अभी
0: पथराई
1: पथराई
0: बहुत
1: बहुत।
0: बहुत
1: क्या
0: अच्छा शेर।
1: बहुत अच्छे भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह। जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्श कदम में। सामईन, अभी आप सुन रहे थे शहबाज़ रिज़वी को, बड़े ही उम्दा अशआर से उन्होंने हमें नवाजा। अब मैं यहाँ मौजूद शौरा की इजाज़त से अपना कलाम पढ़ना चाहूँगा। मतला पेश खिदमत है। न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
0: न तेरे
1: न
0: पास कोई
1: कोई
0: सर
1: संग
0: है
1: है
0: न
1: न
0: संग
1: सर
0: साई,
1: साई, न तेरे पास कोई संग है न सर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई,
0: वाह वाह वाह,
1: चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई। निकल के देख कभी वहशतों के सहरा से,
0: निकल के देख कभी
1: निकल
0: वहशतों
1: के
0: के
1: देख
0: सहरा
1: कभी
0: से।
1: वहशतों के सहरा से, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साई,
0: हाय हाय हाय
1: तुझे
0: हाय,
1: बनाना है सचमुच
0: सचमुच
1: का
0: का
1: एक
0: एक
1: घर
0: घर साईं,
1: साई,
0: क्या सच्चा
1: और
0: शेर है।
1: ज़रा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, ज़रा
0: जरा
1: सी
0: सी ठेस
1: ठेस
0: से
1: से
0: मिल
1: मिल
0: जाएगा ये
1: जाएगा ये
0: मिट्टी
1: मिट्टी
0: में,
1: में, तेरा बदन है कोई कांच का हुनर साई, और
0: वाह
1: कदम में डूब का खतरा, कदम में पार का रंग,
0: वाह हाय
1: कदम
0: हाय,
1: में डूब का खतरा,
0: कदम में
1: कदम में
0: पार का
1: पार का रंग,
0: रंग,
1: यही किनारे दरिया यही भंवर साई,
0: वाह वाह
1: यही
0: वाह,
1: किनारे दरिया
0: यही
1: यही
0: भंवर
1: भंवर
0: साईं,
1: साई। और खुद अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, खुद अपने
0: अपने
1: आप
0: आप को
1: को
0: पहचानना
1: पहचानना ज़रूरी
0: जरूरी
1: है,
0: है।
1: खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साई,
0: वाह वाह
1: खुद
0: वाह वाह,
1: अपने आप से थोड़ी
0: थोड़ी
1: सी
0: सी
1: बात
0: बात
1: कर
0: कर
1: साई।
0: साईं,
1: और शिकस्ते ज़ात भी उम्दा, शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते
0: शिकस्ते
1: ज़ात भी
0: जात भी
1: उम्दा,
0: उम्दा, शिकस्ते
1: शिकस्ते
0: दुनिया
1: दुनिया भी,
0: भी,
1: मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साई,
0: वाह वाह
1: मिला है
0: वाह,
1: जो
0: जो
1: भी
0: भी
1: मोहब्बत
0: मोहब्बत
1: के
0: के
1: नाम
0: नाम
1: पर
0: पर
1: साई।
0: बहुत अच्छे।
1: और एक दूसरी गज़ल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है,
0: उसी
1: दिल उसी
0: शख्स के
1: शख्स के
0: ध्यान में
1: ध्यान
0: है
1: में
0: मेरा,
1: है, वो जो मसरूफ़ इम्तिहान में है,
0: वाह, वो जो
1: दिल उसी
0: मसरूफ
1: शख्स के
0: इम्तिहान
1: ध्यान
0: में,
1: में
0: वो
1: है,
0: जो
1: वो जो
0: मसरूफ
1: मसरूफ़ इम्तिहान
0: इम्तिहान
1: में
0: में
1: है,
0: है,
1: खूब रूई में खाल खाल एक तिल,
0: खूब रुई में
1: खूब
0: खाल
1: रूई
0: खाल एक
1: में
0: तिल,
1: खाल
0: वाह
1: खाल एक
0: तिल
1: तिल,
0: तिल,
1: नाक के ऐन दरमियान में है, खूब
0: वाह
1: रूई में खाल खाल एक तिल, नाक के ऐन दरमियान
0: दरमियान
1: में
0: में
1: है,
0: है।
1: और बात से कबल बुए खुश का हुनर,
0: बात
1: बात
0: से
1: से
0: कबल
1: कबल
0: बुए
1: बुए
0: खुश
1: खुश
0: का
1: का
0: हुनर,
1: हुनर, उन लबों के गुलाबदान में है,
0: वाह
1: उन
0: वाह वाह
1: लबों के गुलाबदान में है, और एक हरे रंग की परी शायद,
0: वाह, एक
1: एक
0: हरे
1: हरे
0: रंग
1: रंग
0: की
1: की
0: परी
1: परी शायद,
0: शायद,
1: मेरे ख्वाबों के आसमान में है,
0: बहुत अच्छा,
1: और एक गुलाबी तरंग का अफसूं,
0: एक
1: एक
0: गुलाबी
1: गुलाबी
0: तरंग
1: तरंग
0: का
1: का अफसूं,
0: आसमान,
1: उसकी भीगी हुई जबान में है,
0: बहुत अच्छा,
1: नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी मेरा
0: मेरा
1: सुकून
0: सुकून
1: तसनीफ,
0: तसनीफ,
1: उसी आगोश मेहरबान।

0: कान में है। गजल कुछ यूं है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस
1: किस
0: बहारा
1: बहाना
0: से
1: से
0: होकर आए थे, कौन
1: कौन सी
0: सी
1: फसल
0: फसल
1: हो
0: हो गए
1: गए
0: हैं
1: हैं।
0: हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम।
1: वाह वाह वाह वाह
0: कोई
1: वाह,
0: भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल
1: वाजिबुल
0: कत्ल
1: कत्ल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: हैं
1: हैं।
0: हम। और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं।
1: भी
0: कुछ भी
1: कहते
0: कहने से डरते
1: रहते
0: रहते
1: हैं,
0: हैं,
1: बात
0: बात
1: इशारों
0: इशारों में
1: में
0: करते
1: करते
0: रहते
1: रहते हैं।
0: हैं। भीड़ की नज़र हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम।
1: वाह वाह वाह
0: भीड़
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: नज़र हो गए हैं हम,
1: खौफ की
0: खौफ की
1: नस्ल
0: नस्ल हो गए
1: हो
0: हैं
1: गए
0: हम।
1: हैं।
0: और उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह। उसकी
1: उसके
0: सब
1: बददिमागियों
0: बददिमागियों पर
1: पर
0: हम
1: हम
0: हुस्न
1: हुस्न
0: को
1: को
0: दे
1: दे
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं
0: बस तरजीह।
1: तरजीह।
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो गए हैं हम।
1: वाह वाह वाह,
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो
1: दुश्मने
0: गए
1: अक्ल
0: हैं
1: हो गए
0: हम।
1: हैं।
0: और डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी।
1: वाह,
0: डालियों
1: डालियों
0: पर
1: पर
0: फुदकने
1: फुदकने
0: वालों
1: वालों
0: को
1: को
0: किसने
1: किसने
0: दी
1: दी है
0: है सजाए
1: सजाए
0: यकसमती।
1: यकसमती।
0: बंदरों की सिफात वाले थे, भेड़ की नकल हो गए हैं हम।
1: वाह वाह
0: कुछ
1: वाह वाह, भेड़
0: बंदरों की सिफात वाले थे, भेड़ की
1: की
0: नकल
1: नकल
0: हो गए
1: वाले
0: हैं
1: हैं
0: हम।
1: हम।
0: कुछ एक अशार और पढ़
1: क्या
0: देता हूँ। गजल के चंद अशार यूँ हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी,
1: जुर्म है राहे
0: राहे
1: अदब
0: अदब
1: में
0: में
1: ये
0: जुर्म
1: हुनर
0: है
1: पाना
0: राहे
1: भी।
0: अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी।
1: वाह वाह वाह
0: अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी।
1: वाह,
0: इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना
1: इतना
0: बेफहम
1: बेफहम
0: हूँ
1: हूँ
0: बेरंग
1: बेरंग
0: हूँ
1: हूँ
0: बेफायदा
1: बेफायदा
0: हूँ,
1: हूँ।
0: कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी।
1: वाह वाह
0: कि
1: वाह,
0: समझना
1: इतना मुझे
0: मुझे बेकार
1: बेकार है
0: है
1: समझाना
0: समझाना भी।
1: भी।
0: और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन,
1: वाह, तुझसे
0: तुझसे
1: मुमकिन
0: मुमकिन
1: हो
0: हो तो उस सांस पे
1: उससे
0: कर
1: कर
0: रक्स
1: रक्स
0: बदन।
1: बदन।
0: जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी,
1: वाह,
0: जिसको आता हो किसी दीप सा जल
1: जल
0: जाना
1: जाना
0: भी।
1: भी।
0: काहली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा,
1: वाह,
0: काहली मेरी
1: काहली मेरी
0: तबीयत है
1: तबीयत है।
0: अमल इश्क मेरा, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी।
1: वाह वाह वाह
0: कुछ
1: वाह
0: न
1: वाह, हो
0: होने से ही होगा
1: गया यहाँ
0: यहाँ
1: हो
0: हो
1: जाना
0: जाना
1: भी।
0: भी।
1: अभी क्या,
0: और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये
1: क्या
0: सलीका ये
1: ये अदा
0: अदा
1: और
0: और
1: ये
0: ये
1: बातों
0: बातों
1: का
0: का रचाओ।
1: रचाओ।
0: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी,
1: वाह वाह वाह,
0: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा
1: तेरा
0: दीवाना
1: दीवाना
0: भी।
1: भी।
0: और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा,
1: वाह वाह
0: लहर
1: वाह,
0: खाती हुई
1: हुई
0: साड़ी
1: साड़ी
0: की
1: की
0: कसम
1: कदम
0: जाने
1: जाने
0: अदा।
1: अदा।
0: तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी, तेरी
1: वाह
0: पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो अपनी गज़ल के अशआर सुनाएं।
1: मैं एक गज़ल से इत्तला करता हूँ, पेश खिदमत है। अपने
0: ऐसा
1: नूर को मिट्टी कर
0: और
1: और
0: मेरी
1: मेरी
0: मिट्टी
1: मिट्टी पानी
0: पानी कर,
1: कर। मौला मेरी मूरत को
0: सोला
1: सोला
0: आने
1: आने मनमानी कर।
0: मेरा
1: और मेरा नाम ठिकाना हो
0: नाम ठिकाना हो।
1: सब खुश आवाज़ परिंदों का।
0: क्या बात है। मेरा
1: मेरा
0: नाम
1: नाम
0: ठिकाना
1: ठिकाना
0: हो
1: हो, मेरा नाम ठिकाना हो
0: सब
1: सब
0: खुश
1: खुश
0: आवाज
1: आवाज़
0: परिंदों
1: परिंदों
0: का।
1: का। मेरी जात को जंगल कर
0: हाँ
1: और जंगल कोहिस्तानी कर।
0: क्या बात है
1: वाह
0: भाई।
1: जी,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो मेरा होना
0: मेरा
1: अपने होने की पहचान बनाकर गूंद।
0: मेरा होना अपने होने
1: पहचान
0: की पहचान
1: बनाकर
0: बनाकर गूंद
1: गूंद। मेरा होना अपने
0: अपने होने।
1: होने की पहचान बनाकर गूंद। मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
0: क्या बात है
1: वाह
0: भाई। वाह
1: क्या
0: वाह वाह वाह।
1: वाह,
0: बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद। मेरी मिट्टी चाक पे धर
0: क्या बात है।
1: और कुन की कारस्तानी कर। और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट।
0: क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या तेरा दिल
1: क्या तेरा
0: बहलाएगी
1: दिल बहलाएगी
0: सूखे घुटनों की
1: सूखे
0: चटपट।
1: चटपट घुटनों की चटपट। मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
0: क्या बात
1: वाह,
0: है। बहुत ही अच्छे भाई। वाह
1: मन
0: वाह।
1: में प्रेम का रस भर मौला हर
0: सजदा
1: सजदा
0: नूरानी।
1: नूरानी कर। और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई।
0: हाय हाय हाय।
1: वाह,
0: चाह की गहराई का जवाब दे। वाह वाह
1: और या तो कम कर
0: वाह।
1: दिल की तह में
0: हर एक
1: हर एक
0: चाह
1: चाह की
0: की
1: गहराई।
0: गहराई।
1: या फिर

0: मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर।
1: क्या बात
0: वाह
1: है भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह।
0: या तो कम कर दिल की तह में हर
1: हर
0: एक
1: एक चाह
0: चाह की
1: की गहराई,
0: गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी
1: लाफानी
0: लाफानी
1: कर।
0: कर। और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा, पीले रेगिस्तान से सुनकर
1: नीले पानी
0: नीले
1: की
0: पानी की
1: गाथा,
0: गाथा, चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है, बाबा खत्म कहानी कर।
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
1: बाबा खत्म
0: बाबा
1: कहानी।
0: खत्म कहानी कर। एक और गज़ल के कुछ
1: जी बाबा,
0: शेर।
1: साथ में भाई।
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूं मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूँ
1: क्या
0: मैं।
1: बात है भाई,
0: वाह।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
1: एक नदी के तूफानों
0: तूफानों
1: का
0: का
1: चौकीदार
0: चौकीदार,
1: भी
0: एक
1: हूँ।
0: नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं।
1: आए,
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
0: एक
1: फिर से
0: नदी के
1: पढ़िए।
0: तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
1: वाह वाह वाह,
0: एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं,
1: वाला
0: और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु।
1: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: मेरे
1: मेरे
0: ख्वाब
1: ख्वाब की
0: की कोख से जन्मी
1: तू नवजात
0: तू
1: शिशु,
0: नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
1: क्या
0: वाह।
1: बात है, वाह वाह वाह, बहुत
0: तेरी
1: अच्छा, क्या
0: किलकारी
1: जबान
0: से
1: है, वाह वाह,
0: फूट रही ज्वाला हूँ मैं,
1: क्या बात है।
0: और मेरी आँख में टूटने वाली एक किरण है तू,
1: मेरी आंख
0: मेरी
1: में
0: आँख
1: टूटने वाली
0: मेरी आँख में टूटने वाली एक
1: एक
0: किरण
1: किरण
0: है
1: है तू,
0: तू,
1: वाह।
0: तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं।
1: हाय हाय, वाह
0: वाह।
1: वाह, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह
0: मेरी आँख में टूटने वाली एक किरण है तू,
1: वाह वाह।
0: तेरे ख्वाब
1: ख्वाब
0: में
1: में
0: गढ़ने
1: गढ़ने वाला
0: वाला
1: एक
0: एक
1: भाला
0: भाला हूँ
1: हूँ मैं।
0: मैं। और एक और गजल के चंद शेर।
1: जी, मैं
0: अपने तेवर थाम संवरिया,
1: तेवर थाम सवरिया,
0: कांप कांप बल खाए सड़क।
1: क्या बात है,
0: वाह।
1: अपने
0: अपने तेवर
1: तेवर
0: थाम
1: थाम सवरिया,
0: संवरिया,
1: कांप कांप बल,
0: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह।
1: वाह। पड़े
0: और पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल,
1: पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में
0: पड़े
1: धूल,
0: पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साए के पीछे पीछे चलती जाए सड़क।
1: हाय हाय,
0: वाह।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: और चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते सोच रहे हो,
0: चलते चलते मत सोचो।
1: वाह वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत सोचो,
0: चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते मत
0: चलते
1: सोचो,
0: चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह।
1: वाह वाह वाह।
0: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवानों को चूमने वाले, दीवारों
0: दीवारों को चूमने
1: को,
0: वाले तुझ पर कमरे तारी हों,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे
0: कमरे
1: तारी हों,
0: तारी,
1: वाह वाह,
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ
1: तुझ पर
0: पर कमरे तारी हों, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह।
1: बहुत अच्छे भाई,
0: घर
1: क्या
0: को
1: बात,
0: लौटने
1: क्या
0: वाले
1: लहजा है, वाह,
0: तुझको रस्ते में मिल
1: मिल
0: जाए
1: जाए
0: सड़क।
1: सड़क, हाँ।
0: एक और गजल है। दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो
1: दिल हारो, वाह वाह
0: दिल
1: वाह,
0: हारो,
1: क्या बात है, बहुत अच्छे बता
0: दुनिया भर से ऊब गए हो,
1: रहे, आओ पधारो,
0: आओ पधारो
1: दिल
0: दिल
1: हारो,
0: हारो, खुद से भी बेजार हुए हो,
1: क्या बात है,
0: मौका मारो
1: दिल हारो,
0: दिल
1: वाह
0: हारो।
1: वाह, बहुत
0: वाह
1: अच्छे भाई, वाह
0: वाह।
1: वाह वाह,
0: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब,
1: क्या बात है, हर बंदूक
0: क्या,
1: की काली
0: हर
1: नाल की,
0: बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल
1: लाल गुलाब,
0: गुलाब, हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो
1: वाह वाह वाह,
0: दिल
1: दिल
0: हारो।
1: हारो, क्या
0: बहुत
1: बात है भाई,
0: अच्छा,
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: कमाल
0: अच्छा।
1: की गजल है, क्या शेर
0: जो
1: है।
0: भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो।
1: है,
0: वाह
1: जो
0: वाह।
1: भी धड़कता दिल मिल जाए
0: जो भी धड़कता दिल मिल जाए
1: उससे
0: उससे
1: टूट
0: टूट
1: के
0: के
1: प्यार
0: प्यार
1: करो,
0: करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो
1: दिल
0: दिल
1: हारो,
0: दिल
1: वाह
0: हारो।
1: वाह,
0: और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो,
1: क्या बात है, वाह वाह, दिन निकले तो
0: दिन
1: सूरज
0: निकले तो सूरज
1: सूरज की
0: की हर
1: हर एक
0: एक किरण
1: किरण का
0: का
1: मुंह
0: मुंह
1: चूमो,
0: चूमो, और रातों

0: को चांद का कोमल नूर निहारो,
1: दिल
0: दिल
1: हारो। वाह
0: हारो।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है उसामा, कमाल, बहुत अच्छा।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है।
1: क्या बात है, सच्चाई है बिल्कुल। वाह,
0: पहली दूसरी
1: तीसरी
0: तीसरी
1: दुनिया
0: दुनिया
1: सब
0: सब
1: माया।
0: माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो
1: दिल हारो।
0: दिल हारो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत

0: कमाल के अशआर सुनाए और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल की आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाए।
1: कुछ ये है।
0: इरशाद।
1: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं,
0: खाने सोख्ते दिल का मकी को
1: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं कोई
0: कोई
1: नहीं।
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं
0: कोई
1: कोई
0: नहीं, क्या
1: नहीं।
0: बात है, वाह वाह।
1: चांद चेहरे भी चमकते हैं, गुलो सुंबल भी,
0: चांद चेहरे भी चमकते हैं,
1: चांद
0: गुलो
1: चेहरे भी
0: सुंबल
1: चमकते हैं, गुलो
0: गुलो
1: सुंबल
0: सुंबल भी,
1: भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगीं कोई
0: कोई
1: नहीं।
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह,
0: है, वाह वाह।
1: एक आवाज़ लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: एक आवाज लगाता हूँ कोई
1: एक
0: है भी
1: आवाज़
0: यहाँ,
1: लगाता हूँ
0: एक
1: कोई है भी,
0: आवाज़ लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
1: एक आवाज़ सी आती है कहीं कोई
0: क्या
1: नहीं।
0: बात है भाई,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: शेर है
1: वाह,
0: भाई, बहुत अच्छा,
1: एक आवाज़ लगाता हूँ
0: क्या
1: कोई
0: बात
1: है
0: है
1: भी
0: भी, बहुत
1: यहाँ,
0: अच्छा,
1: एक आवाज़
0: आवाज
1: सी
0: सी
1: आती
0: आती
1: है
0: है
1: कहीं
0: कहीं
1: कोई
0: कोई नहीं, वाह
1: नहीं,
0: वाह वाह।
1: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर,
0: एक
1: एक
0: आलम है
1: एक
0: फरावानी
1: आलम है फरावानी
0: मर्दों
1: मर्दुम
0: से
1: से
0: मगर,
1: मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह
1: वाह
0: विपुल,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: मैं जहाँ
0: क्या
1: जिसको
0: शेर है,
1: बुलाता
0: बुलाता
1: हूँ
0: हूँ वही
1: वहीं
0: कोई
1: कोई
0: नहीं,
1: नहीं।
0: अच्छा है भाई,
1: वाह,
0: वाह वाह वाह।
1: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
0: सवाद शाम में
1: शाम
0: सब
1: में
0: वैशियों
1: सब
0: का जलसा हो,
1: सवाद
0: कभी
1: शाम में सब वैशियों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो।
0: आए
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: है,
1: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
0: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तान
1: सुना
0: उसकी,
1: रहे हैं
0: मुझे
1: मुझे
0: लोग
1: लोग
0: दास्तान
1: दास्तां
0: उसकी,
1: उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
0: क्या
1: वाह
0: बात है, वाह
1: वाह
0: वाह, अरे
1: वाह
0: वाह
1: वाह, सुना
0: वाह, गजब
1: रहे
0: भाई भाई,
1: हैं
0: वाह वाह वाह,
1: मुझे लोग
0: क्या बात है,
1: दास्तां
0: बहुत
1: उसकी,
0: अच्छी है, क्या
1: इस
0: बात,
1: एतमाद से
0: इस
1: जैसे
0: एतमाद
1: जैसे
0: से
1: किसी
0: किसी
1: ने
0: ने
1: देखा
0: देखा,
1: हो,
0: क्या बात है भाई, वाह वाह,
1: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हों,
0: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते
1: किसी
0: हैं,
1: का रंज उदासी की तान लेता हो,
0: हाय हाय,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह, किसी कनार की खुशबू से शेर खुलने लगे, कि
0: हाय हाय,
1: बात बात नहीं हो बस एक इशारा हो।
0: क्या
1: वाह
0: बात है
1: वाह
0: भाई, बहुत
1: वाह,
0: अच्छा,
1: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम,
0: अब आ गए हैं कि
1: अब आ गए
0: आखिर
1: हैं
0: कि
1: कि
0: आखिर
1: आखिर
0: तेरी
1: तेरी
0: गली
1: गली
0: का
1: का
0: भरम,
1: भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो।
0: क्या बात,
1: वाह
0: अरे वाह,
1: वाह
0: फिर से
1: वाह
0: सही,
1: अब
0: वाह
1: आ
0: वाह
1: गए
0: वाह,
1: हैं कि
0: वाह वाह,
1: आखिर
0: आखिर
1: तेरी
0: तेरी
1: गली
0: गली
1: का
0: का भरम,
1: भरम,
0: वाह वाह वाह,
1: कहीं किवाड़ की
0: वाह वाह,
1: दस्तक ही से न खुलता
0: क्या
1: हो।
0: बात है भाई,
1: बहुत
0: क्या
1: अच्छा,
0: जबान है, बहुत अच्छे भाई,
1: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ,
0: मैं ये समझ के लगे गुल से बात
1: मैं
0: करता हूँ,
1: ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो।
0: क्या बात, बहुत
1: वाह,
0: अच्छा,
1: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में,
0: इस धमक से तू अगर पांव रखेगा मुझ में,
1: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में, फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझ में।
0: क्या बात है,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: अच्छा,
1: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज,
0: क्यों ना कुछ शोर उठाऊं तो वो खामोश
1: क्यों न कुछ
0: मिजाज,
1: शोर उठाऊं कि वो
0: कि वो
1: खामोश
0: खामोश
1: मिजाज,
0: मिजाज,
1: बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझ में।
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि
0: क्यों
1: वो खामोश
0: खामोश मिजाज,
1: मिजाज,
0: वाह वाह वाह,
1: बे इरादा ही सही ध्यान तो
0: ध्यान तो
1: देगा मुझ
0: देगा, क्या
1: में,
0: बात,
1: घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में।
0: क्या बात,
1: वाह
0: वाह अरे
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: हाय हाय,
1: घर में चलते हुए डरता
0: डरता हूँ
1: हूँ कि
0: कि
1: कोई
0: कोई
1: साया
0: साया आके
1: आके
0: टकराएगा,
1: टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में,
0: बहुत अच्छे भाई,
1: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
1: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझ में।
0: क्या बात
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: हाय हाय
1: वाह,
0: हाय हाय
1: वक्त
0: हाय,
1: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
0: वक्त
1: वाह,
0: झाड़ेगा नए हिजर के
1: वक्त
0: मौसम,
1: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझ में।
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है, वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह, अरे
1: और
0: क्या
1: एक
0: शायर है,
1: लम्हा
0: वाह वाह
1: कोई
0: वाह, बहुत
1: आन
0: अच्छा शेर,
1: गिरेगा
0: दोबारा
1: मुझ
0: पढ़ो
1: में।
0: यार, बहुत अच्छा शेर,
1: वक्त
0: मुकर्रर, हाय
1: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
0: हाय हाय, वक्त
1: और
0: झाड़ेगा,
1: एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझ
0: और एक
1: में,
0: लम्हा कोई आन गिरेगा,
1: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
0: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद
1: एक
0: का,
1: ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
0: वाह,
1: सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझ
0: आए
1: में।
0: हैं,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह, क्या बात, फिर से बड़ी, वाह वाह
1: एक
0: वाह,
1: ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
0: आए हैं,
1: सांस में नाद जो अटका है बजे

0: खिंचेगा मुझ में,
1: क्या बात है,
0: मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर,
1: मेरे नाजुक
0: मेरे
1: मेरी
0: नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर, ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझ में।
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: बहुत बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह,
0: आँखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए,
1: आँखों की स्याही बढ़ती है ख्वाब
0: ख्वाब
1: रकम
0: रकम
1: करने के
0: करने के
1: लिए।
0: आँखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए, इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए।
1: वाह वाह वाह,
0: मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में
1: कई
0: कई बादल
1: बादल उड़ते
0: उड़ते
1: फिरते
0: फिरते
1: हैं।
0: हैं, कई नदियाँ बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए।
1: वाह वाह
0: अरे
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: कई
1: वाह,
0: नदियाँ बहती रहती हैं
1: मेरी
0: मेरी
1: खाक
0: खाक को
1: को नम
0: नम करने
1: करने
0: के
1: के
0: लिए।
1: लिए। हाय हाय,
0: तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है,
1: वाह, किन बागों का हुस्न लिए
0: तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती
1: तपती
0: रेत
1: रेत
0: पे
1: पे
0: बैठा
1: बैठा
0: है,
1: है।
0: अरे आहुए मस्ती होश में आ एक दश्त है रम करने के लिए।
1: हाय
0: वाह
1: हाय
0: वाह
1: हाय,
0: वाह, कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है,
1: कहता है वो जालिम सब्र
0: कहता है
1: करो,
0: वो जालिम सब्र
1: सब्र
0: करो
1: करो
0: क्या
1: क्या
0: तेग के
1: तेग के
0: नीचे
1: नीचे
0: गर्दन
1: गर्दन है।
0: है, और एक इशारा होता है मुझे गर्दन खम करने के
1: अरे वाह
0: लिए।
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया,
1: बात
0: बहुत
1: है, क्या बात।
2: सामईन, आप सुन रहे थे विपुल कुमार को। इसी के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब शहबाज रिजवी, जनाब उसामा जाकिर और जनाब विपुल कुमार, साथ में खाकसार तसनीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको ये मुशायरा पसंद आया होगा। शुक्रिया।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे से महजूज़ हो रहे थे, मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे जनाब तसनीफ़ हैदर। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। श्रोताओं, अभी आप जुड़े हुए थे कार्यक्रम मुशायरा से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथ में कुमार सानू, फिल्म दुश्मन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म दिल से उदित नारायण की आवाज़ में ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म दिल से और महालक्ष्मी की आवाज़ साथ में उदित नारायण, और इस गीत को लिखा गुलजार ने और खूबसूरत संगीत दिया ए आर रहमान ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और मैं हूँ आपके साथ चेतना। फिलहाल वक्त रात्रि के 8:40 हो चुके हैं। आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। चित्रा की आवाज़ है, तुम बिन फिल्म से ये गीत है, लेकिन आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक

0: संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
3: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
5: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी

0: को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57

0: पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop, more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following a Russian attack on Bucha district of Ukraine. And red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. Heavy rainfall also likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand and parts of northeastern states. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his 4th visit to the Central Asian country.
3: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two

0: times and improved its tally to 69 in 2018 and scripted history by winning a record 107 medals in 2023. Initiatives such as Khelo India, the Target Olympic Podium Scheme and the Khelo India Rising Talent Identification are strengthening the sporting ecosystem and helping athletes prepare for competition at the highest level. With Saklain Akhtar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Hockey India has announced a cash award of 50 lakh rupees for the Indian women's hockey team for their historic fifth place finish at the FIH Hockey Women's World Cup 2026 in Belgium and the Netherlands. India defeated world number 5 Germany 3-1 in Amstelveen on Thursday. It is India's best World Cup finish since the team secured fourth place in the inaugural edition in 1974. Captain Salima Tete's team lost only one match in the tournament. India held higher-ranked China, England and Australia to draws. The team also recorded a 6-1 win over South Africa. The India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The Weather Department also forecast heavy rainfall tomorrow in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal. Moderate to heavy rainfall is also expected tomorrow in places over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Vidarbha. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people including 287 Indian nationals still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following Russian attack on Bucha district of Ukraine and red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहती कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज में भारत के वसी बाजार और तवील मुद्दती सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। इस साल जुलाई तक बहुत छोटे पैमाने पर आपाशी की स्कीम फी बूंद ज्यादा फसल के तहत 115 लाख हेक्टेयर अराजी का इहाता किया गया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं और पीर तक उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वस्ती एशियाई मुल्क उज़्बेकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मौजूदगी में यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश किए। दोनों रहनुमा बाहमी फायदे के तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामा निगार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खसूसी तौर पर सजाया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पूरा शहर भारत के परचम और इस्तकबालिया बैनरों से सजा हुआ है क्योंकि उज़्बेकिस्तान को वज़ीर आज़म मोदी के चौथे दौरे का बेसब्री से इंतजार था। ताशकंद में मुकीम भारतीय बिरादरी भी वज़ीर आज़म मोदी के खसूसी इस्तकबाल के लिए जमा हुई। कल सदारती महल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। ये ताल्लुकात सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों पर कायम हैं और मजबूत अवामी रवाबित से मजीद मुस्तहक

0: जानिब से किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत न सिर्फ एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर भी उभरा है जिसे एक कौम के तौर पर अपनी तहजीबी विरासत, सकाफत और सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आज जब भारत जब कुछ कहता है तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। वजीर दिफा ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली ये हुई है कि मुल्क अब न सिर्फ यके आलमी जाब्तों पर मजीद अमल नहीं करता बल्कि वो ये जाब्ते बनाने में ताउन भी करता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान तालीम के मेयार और आम आदमी तक उसकी रसाई के मामले में बहुत बेहतरी हुई है। हुकूमत ने कहा है कि फी बूंद ज्यादा फसल स्कीम के तहत इस साल जुलाई महीने तक 115 लाख हेक्टेयर जरिए अराजी पर बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी की जा रही है। इस पहल का मकसद काश्तकारी की सतह पर पानी के किफायती और कम से कम इस्तेमाल को फरोग देना है। ये स्कीम मरकज के जेर सरपरस्ती बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी के तौर पर जनवरी 2026 में शुरू की गई थी। साल 2015-16 से 2021-22 तक इस स्कीम को बाजाबता तौर पर फीबून ज्यादा फसल के नाम से जाना जाता था और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक कलीदी हिस्से के तौर पर नाफिज किया गया था। इस स्कीम के तहत हुकूमत बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी से मुतालिक निज़ाम नस्ब करने के लिए हर मुस्तफीद किसान को 5 हेक्टेयर तक की माली इमदाद फराहम करती है। छोटे किसानों को 55% और दिगर किसानों को 45% तक माली इमदाद फराहम की जाती है। आज यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक बूचार डिस्ट्रिक्ट पर रूस के एक हमले के बाद कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 50 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जिसके बाद बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरा में भी आग लग गई। यूक्रेन के सर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि धमाके के बाद माइला के गांव में एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा है। बयान में यह भी कहा गया है कि बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए देखभाल के मरकज और रिहायश इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज़ के लिए ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के मकामात पर भी कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड और विदर्भ में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने अंडमान व निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। खेलों की भारत की सरकर्दा शख्सियत मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में खेलों का कौमी दिन मनाया गया। खेलों के मामले में भारत की मालामाल विरासत का जश्न मनाने और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेलों को मुस्तकिल तौर पर शामिल किए जाने पर जोर देते हुए ये मनाया जाता है। मज़ीद तफसील हमारे नामनगार से।
1: हुकूमत मुल्क के खेलों के एक निज़ाम में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है जिससे आलमी सतह पर नुमाया नतज नज़र आ रहे हैं। खेलों के अहम बैन अवी मुकाबले जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और मुख्तलिफ खेलों में भारत की बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार हो रहा है। मरकजी बजट 2026-27 में नौजवानों की उम्र खेलों की वजारत को 4,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुख्तस किए गए जबकि सन 2013-14 में ये महज 1,200 करोड़ रुपये थे। भारत के ओलंपिक सफ़र में हालिया बरसों में अक्सर तब्दीली आई है। मुल्क ने सन 2016 में रियो में 2 तमगे, 2020 में टोक्यो में 7 तमगे, 2024 में पेरिस में 6 तमगे जीते। पैरालंपिक खेलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। एशियन गेम 2014 में मुल्क ने 57 तमगे जीते, 2018 में इनकी तादाद 69 रही और 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 तमगे जीतकर तारीख रकम की। दिल्ली से सखलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के साबिक वजीर आला रामकृष्ण हेगड़े की सदसाला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने रामकृष्ण हेगड़े को एक मुदब्बिर सियासतदान करार दिया जो लामरकजियत, 3 सतही हुक्मरानी, मजबूत विफाकी निज़ाम और लोक आयुक्त को मजबूत बनाने के पुरजोर हामी थे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े सरकारी ओहदे को आवाम के एतमाद की एक जिम्मेदारी समझते थे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीख मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज़्यादा के तस्दीकशुदा खाम तेल के जखायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण, सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है। और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां,

0: और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा, और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से, और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ है।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जेनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलिली आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलिलू वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैराशोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट, और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था

0: ब्रेन रॉट ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है, और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहां गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।

0: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएँ एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसीलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों

0: साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
1: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
0: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
2: दुनिया से आगे खुद तक, अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
3: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेट शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
4: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
3: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन,

0: मुख्य तकनीकी पहचान है।
1: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
0: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: इन द क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के हैं, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कर ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वरा है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ एंड पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड रही, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊँ, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनी अट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए

आइए एक नज़र डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं अनुशासन समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कम्पोजर भी हैं।
1: बॉर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, Dr. Mandapa Kasharada was initiated into music at an early age. She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komandiri Krishnamacharyulu. Dr. Mandapa Kasharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Pattanam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by श्री महादासु नीलाद्री राव on the violin, श्री सुसरापु सुब्रमण्यम on the मृदंगम and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam.
0: Dr. Mandapa Kasharada aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se jo ki Adi Taal mein nibaddh hai.
1: Dr. Mandapa Kasharada begins her presentation with Bhaktuni Charitramu, a composition of Tyagaraj.

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया मालवगौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी, जो कि मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam, Misra Chaputalam.

0: अब सुनिए शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादा सुनीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपाल अय्यर की रचना नीदोच्चारण पंकजमुले, जो कि आदिताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरल कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वाज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री सुसरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapa Kasharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam, Aditalam.

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे

0: पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज के कार्यक्रम में आपके साथ चेतना, रहेंगे आपके साथ रात्रि 12 बजे तक। फिलहाल हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ के साथ।

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए। हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम आप सभी का फेवरेट, जी हाँ, फिल्म संगीत का। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। और आज की रात को, आज के प्रोग्राम को खास बनाने के लिए मेरे पास वो नगमे हैं जो सीधे और सीधे आपके दिल के करीब होंगे। कुछ पुरानी यादें, कुछ मीठी मीठी बातें और ढेर सारा सुकून। तो चलिए, दिन की तमाम चिंताओं को खिड़की के बाहर फेंक दीजिए, एक लंबी सी सांस लीजिए और खो जाइए इस सुहानी रात में और साथ में ये सुरीले गीतों के।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म याद रखेगी दुनिया से, मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ और साथ में साधना सरगम रही। संगीत दिया इस गीत को आनंद मिलिंद ने। आइए सुनते हैं ये एक विशेष सूचना।
1: कानून का ज्ञान सब तक पहुंचाएंगे,

जी हाँ श्रोताओं, वक्त देखिए कितनी तेज़ी से दौड़ता है। लग रहा है अभी तो मिले थे और देखिए वक्त कितनी जल्दी जल्दी दौड़ता है। रात का पहर कितना अजीब होता है ना, दिन भर की आपाधापी और रात सिर्फ होती है थम जाने के लिए। हमारे अंदर का शोर बाहर आने लगता है और बाहर का शोर जो है ना वो कम होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश कोई हो जिससे हम दिल की बात कह सकें, या फिर कोई शांति से हमारी बातों को सुन दे, ऐसा भी होता है। और आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं, आपके दिल में है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे संदेश भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर iprradiodelhi@gmail.com पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का।

जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज़ साथ में किशोर कुमार की आवाज़ में आपने इस गीत को सुना, और रात का पहर कुछ जहन में कुछ पंक्तियाँ सी छोड़ जाता है। दिन की रोशनी में तो सब मुस्कुरा लेते हैं साहब, बात तो तब है जब रात के अंधेरे में भी कोई याद करके मुस्कुरा ले।

और आज के कार्यक्रम में हम गीत प्ले कर रहे हैं एक एक करके आपकी फरमाइश के ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की फरमाइश को पूरा कर पाऊँ इस कार्यक्रम में, लेकिन अगर पूरी नहीं भी हो पाती है किसी गीत की फरमाइश तो भाई नाराज़ मत होइएगा।

आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। लेते हैं आपके संदेश। इब्राहिम सिंह का हमारे पास संदेश आया है, ये हमें सुनते हैं। चीर मेरी कुरा से अकाल रही से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, नारायण प्रसाद लहरे और दिनेश प्रसाद लहरे, इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भी भेजी है। भाई मैं सर्च करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मिलता है इंद्रभान जी मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और छोटे अंसारी जी का मेरे पास बेहद खूबसूरत संदेश आया है, लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आपको भी अंसारी साहब, और लिख रहे हैं कि बुधवार के दिन आपने आने का वादा किया था लेकिन आज तो शनिवार है, शुक्रिया आने के लिए। बहुत खूब, आपका संदेश देखते ना मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो इसलिए कि आपको याद था कि मुझे बुधवार को आना है लेकिन मैं वेंसडे को ना आकर मैं शनिवार को आ गई। लेकिन आप इंतज़ार करते हैं, इसके लिए शुक्रिया।

अनिल ताम्रकर जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण, पवन यादव, सुनील, विपिन, रंजन, लालू, सोना, मोना और साथ में सौम्या और उनके फैमिली के सभी मेंबर हमें सुन रहे हैं। और ये हमें सुनते हैं शिवाजी चौक कटनी से। इन्होंने मदर इंडिया फिल्म का एक गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। बिल्कुल, जीतू प्रसाद जी भी लगातार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और ये हमें सुनते हैं थाना रोड बक्सर से। आशीष, सतीश, आयुष और सानवी गुप्ता हैं इनके साथ में। इसी के साथ साथ हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा हमेशा की तरह जुड़े रहते हैं कार्यक्रम से। ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हैं इनके साथ में। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज इनके साथ कार्यक्रम को सुनते हैं। और इसी के साथ साथ हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है। देखते हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत आप प्ले कर दीजिए। माजी दलित मुफ्ती भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और ये हमें श्रीनगर से सुन रहे, J&K से, और लिख रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहें, खुश होंगी। बिल्कुल, और लिख रहे हैं कि आज रुतबा का बर्थडे है तो हमारी तरफ से रुतबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और लिख रहे हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत प्ले कर दीजिए। तो ज़रूर मैं प्ले करूँगी, आज उनका बर्थडे है। और अपनी बात भी लिख कर उन्होंने भेजी है और लिखा है कि मेरे शब्द हैं ये, माई ओन कोट, लिख रहे हैं कि ये आपका होना है जो हमारे दिलों को खुश रखता है। आप नहीं तो गुलशन में बुलबुल नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दोस्ताना से, किशोर कुमार की आवाज़ साथ में आशा भोसले, और इस गीत को लिखा यश जौहर ने। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे, और समय जो है वो 11:35 हो चुके हैं रात्रि के। तो अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज सकते हैं, आप अपने दिल की बात लिखकर भेज सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा। आइए सुनते हैं एक विशेष सूचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और ये मदर इंडिया फिल्म से गीत था, शमशाद बेगम की खूबसूरत आवाज़ और साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब।

जी हाँ श्रोताओं, हम भी यही चाहते हैं कि आप आइए और अपने संदेशों को हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपकी बातों का, आपके संदेशों का। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:42 हो चुके हैं और देखिए ना, समय कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। ऐसा लगा है कि अभी तो आपसे मिले थे। छोटे अंसारी जी संभल से हमें मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं कि चेतना जी दुआ सलाम करना आपको भूल गया था। खैर आपका संदेश आ गया जी, दुआ सलाम अपने आप हो गई। बोधराज खोरवाल जी लगातार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और सरगम गीत से ये सुनना चाहते हैं, सरगम फिल्म से गीत सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से हमें सुनते हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और इनके साथ है भानु प्रकाश। नवी हसन जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया। नवी हसन अब्बासी हैं ये, शहनाज अब्बासी, नवेश सुहेल, अनियम रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हमें सुनते हैं ज़ुबेर अली खां, सबीहा अंजुमन खां, और तहे दिल से शुक्रिया भेज रहे हैं आपका। हम भी शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे कि आप इतनी शिद्दत से हमें सुनते हैं और इतने खूबसूरत संदेश हम तक पहुंचाते हैं। विनय भान, डॉक्टर विनय भान कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और ये हमें सीपी से सुनते हैं, दिल्ली से, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। इन्होंने अपने संदेश को भेजा है, लिखते हैं कि आप आ गए अच्छा लगा और बस आप थोड़ा थोड़ा जल्दी आया करिए। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी आने की, लेकिन वाकई में आप सभी का प्यार है जो इतनी जल्दी भी आप तक हमें खींच लाता है। और इन्होंने भी गीत की रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाई है और लिख रहे हैं कि आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, दुआ करेंगे आपके लिए, शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेश के लिए। तो चलते हैं अगले संदेश की तरफ। सुदर्शन मुखी जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अनीता सिमरन शांति नगर सोनीपत से हमें सुनते हैं और लिख रहे हैं कि चेतना जी सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका, सुरीली आवाज़, सुंदर प्रस्तुति और सदाबहार गीत, सुहाना लग रहा है कार्यक्रम और सब

बड़ी वाली बधाई आपको भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। दिलावर खान जी ने भी लगातार अपने संदेशों की जो है ना झड़ी लगा दी है, एक के बाद एक मैसेज। और ये हमें सुनते हैं रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो और इनके साथ हैं अलीजा नायाब। मुकेश बाटा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, ये हमें पटियाला से सुनते हैं। नासिर शेख जी ने भी बहुत सारे हमें फूल भेजे हैं। आपकी पेशकश सुंदर है, लाजवाब प्रोग्राम है। शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेश भेजने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। प्रकाश वर्मा जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे संदेश हैं। दिलावर खान जी लिख रहे हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद रखो। बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ साथ सतीश अनेजा जी ने भी बेहद खूबसूरत पंक्तियां हम तक पहुंचाई हैं, ये हमें चंडीगढ़ से सुनते हैं। लिखते हैं कि चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, बहुत उड़ गए हैं ऊँचे आसमानों में यारो, चलो ज़मीन पर कहीं हम सता ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का ज़िंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों में हम एक गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजारा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात में हम सुबह ढूंढते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, वाकई में दिल को छूने वाली ये पंक्तियाँ रहीं। नासिर शेख जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ संजय साहू पोटे कला से हमें सुन रहे हैं। नंद किशोर घाटे जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सरफुद्दीन अंसारी जी ने भी बिहार बक्सर से हमें अपना संदेश भेजा है। इनके साथ फातिमा खातून, सुमित रमेश साहू जी और डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम और दिनेश दानिश अंसारी जी हैं। आप सभी का शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रति जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें भी भेजना ना भूलें। इंतज़ार में हूँ।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

जी हाँ दोस्तों, दिल तो बिल्कुल अभी भरा नहीं है, लेकिन घड़ी की जो सुइयां है ना, वो भी इंतज़ार में रहती हैं कि भाई अब तो जाने का वक्त हो गया, क्योंकि समय जो है ना, वो कभी नहीं रुकता है। अभी आपने गीत सुना, फिर हम दोनों से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को लिखा साहिर ने और संगीत दिया जयदेव ने। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपने ज़रूर पसंद किया होगा, लेकिन चलते चलते आपके संदेशों को हम कैसे भूल सकते हैं। सतीश अनेजा जी ने अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाई है कार्यक्रम के अंत में। खूबसूरत गीतों से लबरेज रहा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और हमेशा की तरह आज भी आपकी प्रस्तुति लाजवाब रही, जिसका हम शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। और कुछ प्रोग्राम हमारे दिल को खुश कर देते हैं, लेकिन चेतना जी, पेश आपके द्वारा जो पेश किया गया प्रोग्राम जो रूह तक महका देता है, खूबसूरत अंदाज है आपका जो समा बांध देता है, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। आपके ये जो संदेश होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के प्रति मेरी रुचि को और बताते हैं। किशन सपकाल जी ने भी अपना नमस्कार जाते जाते हमें भेजा है, और आशा सपकाल है इनके साथ, सोनिया, साईराज, विशाल है इनके साथ, और इनके साथ नरेंद्र सुतकर जी ने भी हमें अपनी बात पहुंचाई है। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु, और लिखते हैं कि हमने पूरा प्रोग्राम सुना है आपका, शुक्रिया। मोहम्मद कमर जी ने भी चलते चलते अपना संदेश हम तक पहुंचाया, लिखते हैं कि चेतना साहिबा जी शामिल हो तो शुक्रिया करें हमारे मैसेज को, और तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना होगा, इस वादे के साथ जा रही हूँ कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आप खुश रहिए और सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ कार्यक्रम, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लेकर आया होगा। फ़िलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। यह लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 11:59 हुए हैं। ठीक 12 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली ये टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार बताए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Neena Arakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. A correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colorful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
3: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas yesterday to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team, comprising doctors, paramedics and tunnel engineers, had arrived in Kathmandu Friday. Yesterday, they reached Trishuli in Novakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said yesterday a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in the area affected by the flash flood, which will help in facilitating early search and rescue of stranded individuals. Nepali security forces have so far rescued 191 workers from tunnels at various hydropower projects in the country, according to the Nepal Army. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure. The United Nations Department of Peace Operations has said that Indian peacekeepers with the United Nations Interim Force for Abyei, UNISFA, continue to assist internally displaced people in Abyei. In a social media post, the UN department said Indian peacekeepers with UNISFA continue their commitment to assisting internally displaced persons in Abyei. The mission support includes critically needed basic services, educational initiatives, and community engagement. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, रात के 12:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

0: श्रोताओं, अपने आपके खास कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये एक ऐसा सफर है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी धुनों से सिर्फ गीत नहीं बनाए बल्कि हमारी यादों को आवाज दी। आज का सफर एक ऐसे संगीतकार के नाम जिनकी धुनों में सादगी थी, मिठास थी, भारतीयता थी और सबसे बढ़कर दिल को छू लेने वाली वो खूबसूरती थी जो समय बीत जाने के बाद भी फीकी नहीं पड़ी। नाम है रवि शंकर शर्मा। फिल्मी दुनिया उन्हें प्यार से जो बुलाती थी, नाम था वो संगीतकार रवि। दिल्ली में जन्मे रवि ने बचपन में ही संगीत के प्रति आकर्षण महसूस किया। आगे चलकर मुंबई पहुंचे और फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। कभी करीब 5 दशकों तक उनका सफर ये चलता रहा और हिंदी के साथ साथ मलयालम सिनेमा में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। तो आइए आज के इस सफर में सुनते हैं रवि की कहानी, एक ऐसे संगीतकार की कहानी जिनकी धुनों में शोर नहीं मिठास थी बल्कि उन्हें दिल की आवाज बनने दिया।
1: आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं जिनमें से कई गानों पर आशा जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड भी मिले हैं। ये मेरी ही आशा नहीं, सारी दुनिया के अनगिनत संगीत प्रेमियों की आशा है कि आशा जी की सुरीली आवाज़, इनकी गायकी, इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ती जाए। आशा जी एक महान कलाकार हैं और मैं इनकी कला व इनके बिहेवियर से कितना प्रभावित हूँ ये आशा जी खुद जानती हैं, इनका मन जानता है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं रवि शंकर शर्मा की। रवि का जन्म 3 मार्च 1926 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उनका मन संगीत में रमता था। वो गायक बनना चाहते थे। पुरानी फिल्मी गीत सुनना और उन्हें गुनगुनाना उन्हें बेहद पसंद था। लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिर्फ गायक नहीं बनाया, जिंदगी ने उन्हें बनाया एक संगीतकार। मुंबई पहुंचे तो सामने थी फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक, लेकिन उस चमक दमक के पीछे संघर्ष भी कम नहीं था। रवि ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। उनकी खासियत थी धुन में सरलता, ऐसी धुन जिसे आम आदमी भी गुनगुना सके। यही कारण था कि उनके गीत बहुत जल्द लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रही है रविशंकर शर्मा, जी हाँ, संगीतकार की। रवि की करियर में एक बड़ा मोड़ आया फिल्म घराना के साथ। इस फिल्म के संगीत ने उन्हें फिल्म जगत में एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और फिर वो गीत आया दादी अम्मा मान जाओ। एक तरफ घरेलू अपनापन, दूसरी तरफ संगीत की ऐसी मिठास जो आज भी सुनते ही मुस्कान ले आती है। घराना के संगीत के लिए रवि को 1962 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला।

श्रोताओं, ये उनके सफर का पहला बड़ा फिल्म फेयर सम्मान था, लेकिन रवि अभी अपनी सबसे बड़ी धुनों से हमें मिलाने वाले थे। बात उस दौर की जब रवि की धुनें हिंदी सिनेमा के हर कोने में सुनाई देने लगी थी। फिल्म थी चौदहवीं का चांद हो और गाना भी था चौदहवीं का चांद हो। मोहब्बत को अगर संगीत में कोई चेहरा दिया जाए तो शायद वो यही गीत होगा जो आज हम सब

जी हाँ, रविशंकर शर्मा के गाने आफताब की तरह ही चमकते हैं। रवि की धुन और गीतकार शकील बदायूनी के शब्दों ने मिलकर ऐसा जादू रचा कि ये गीत हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया और यही रवि की खासियत थी। वो शब्दों की आत्मा को समझते थे। गीतों की एक लंबी श्रृंखला इसके बाद रवि ने एक के बाद एक यादगार गीत दिए। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, फिर आया घराना का पारिवारिक सॉन्ग संसार, और फिर उसके बाद आया खानदान। फिल्म खानदान के संगीत ने एक बार फिर रवि को सफलता के शिखर पर

पहुंचाया। 1965 की इस फिल्म के संगीत ने उन्हें 1966 में दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिया, यानी कुछ ही वर्षों में दो फिल्मफेयर सम्मान, फिल्म घराना के लिए और फिल्म खानदान के लिए। लेकिन रवि की असली लोकप्रियता सिर्फ पुरस्कारों में नहीं थी, वो थी लोगों की यादों में। अब जो गीत सुनवाते हैं आपको वो है प्रेम, सिर्फ प्रेम नहीं पूजा बन जाता है। इस गीत को सुन के आपको ऐसा ही लगेगा।

श्रोताओं, जब हम बात करते हैं इस तरह के गीतों की तो लता मंगेशकर की आवाज और रवि की धुन, इस गीत ने लाखों श्रोताओं के मन में अपनी जगह बनाई और इस गीत के लिए लता मंगेशकर को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का सम्मान मिला। रवि का संगीत सिर्फ प्रेम गीतों तक सीमित नहीं था, उनकी धुनों में परिवार था, त्याग था, बिछोह था, मस्ती थी और भारतीय जीवन की रोजमर्रा की खुशियाँ थी। और अब आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं के शब्दों में पिरोया हुआ एक ऐसा खूबसूरत सा गीत जिसमें प्रेम है, इजहार है, खूबसूरती है और उसका इंतजार है।

श्रोताओं, ये फिल्म जितनी अच्छी थी ना उतना ही अच्छा ये गीत है। और ऐसा नहीं है, रवि ने जितने भी गाने लिखे इस फिल्म के लिए सब एक से बढ़कर एक थे। नील गगन के तले और न मुँह छुपा के जियो न सिर झुक

काकजियो, ऐसे गाने और ऐसे शब्द पिरोए उन्होंने अपने इस गीत में, संगीत में, फिल्म में, कि आज भी वो अजर अमर है। जितनी फिल्म यादगार थी, स्टोरी यादगार थी, किरदार यादगार थे, उससे कहीं ज्यादा उनके गीत यादगार हैं। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई गीत सिर्फ गीत नहीं रहता, वो किसी रिश्ते का हिस्सा बन जाता है। किसी की शादी की याद, किसी बेटी की विदाई, किसी परिवार की खुशी। और संगीतकार रवि ने ऐसे अनेक गीत हमें दिए, उनमें से एक गीत है ये, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है रफी की आवाज में। आप भी सुनिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये गीत, क्योंकि ये गीत हर शादी में, हर विवाह में और हर बारात में आप सुनते हैं।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना। इस गीत में उत्सव है, मस्ती है, दोस्तों की खुशी है और वो बेफिक्र माहौल है जो शादी के घर को शादी का घर बनाता है। इसलिए रवि के सिर्फ गीत में, संगीत में एक ऐसी मिठास देखने को मिलती है जो सिर्फ रेडियो पर नहीं बजते थे, वो लोगों की जिंदगी में बजते थे। एक ऐसा ही गीत आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ और जिसे सुनकर आप कुछ समझेंगे भी। फिल्म नील कमल का वो बहुत ही खास गीत है। इस गीत को सुनकर इतनी भावुकता जाग उठती है, बेटी की विदाई, माता पिता की आंखें और एक ऐसा गीत जो पीढ़ियों से विदाई के क्षणों का साक्षी रहा है।

श्रोताओं, इस गीत की लोकप्रियता ये बताती है कि रवि धुन बनाते समय केवल सुरों के बारे में नहीं सोचते थे, वो भावना को सुनते थे और फिर उस भावना को अपनी धुन में बदल देते थे। संगीतकार रवि शंकर शर्मा एक ऐसा नाम जिसने सादगी को संगीत बनाया। उन्होंने हमें बताया कि धुन को महान बनाने के लिए हमेशा से बहुत सारे वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सरल सुर, एक सच्चा भाव और एक अच्छी कविता मिलकर ऐसा गीत बना देते हैं जो दशकों तक जिंदा रहता है। आज रवि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संगीत हैं, उनकी धुनें हैं और वो धुनें हैं हमारी यादों में। तो आइए इस सफर के अंत में किसी शब्द से नहीं

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। रात के 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से निहित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथन मथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। पंपा नदी में होने वाली इस वार्षिक नौका दौड़ में 51 स्नेक बोट हिस्सा लेंगी। साथ ही तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केलम लौटने पर वे कोची के ककनाड में राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek resident Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked out with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe, and an Indian embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government. The ministry added that the government of India has been working in close coordination with the Nepali and Chinese authorities for the early rescue and relief efforts of those affected by the floods. At the round-the-clock control room has been established in the Ministry of External Affairs, and the Indian embassies in Kathmandu and Beijing have 24/7 helplines operational. It said both embassies have also remained engaged with all the relevant stakeholders to ensure effective coordination of search, rescue and relief efforts. In the meantime, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that a fourth aircraft sortie, C-130J Hercules, with 11-ton assistance has departed for Kathmandu today. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in the United States. Vice President of India C.P. Radhakrishnan will arrive in Keralam today for a two-day visit to the state. He will attend the 115th anniversary celebrations of Kerala Kaumudi, one of the leading Malayalam dailies, in Alappuzha. The Vice President will thereafter proceed to Pathanamthitta to inaugurate the Aranmula Water Festival, one of the oldest and most prestigious boat races in Kerala. As many as 51 snake boats will participate in the annual water regatta, which will be held on the Pamba River. Later, he will inaugurate the Onam pageantry in Thiruvananthapuram, marking the culmination of the Onam Tourism Week celebrations organized by the state government. On Monday, the Vice President will visit Agathi in Lakshadweep, where he will be the chief guest at an outreach program organized by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. The United Nations Department of Peace Operations has said that Indian peacekeepers of the United Nations Interim Force for Abyei, UNISFA, continue to assist internally displaced people in Abyei. In a social media post, the UN department said Indian peacekeepers with the UNISFA continue their commitment to assisting internally displaced persons in Abyei. The mission support includes critically needed basic services, education initiatives, and community engagement. The Abyei region is managed by UNISFA, located between Sudan and South Sudan. In June, India's permanent representative to the UN, P. Harish, highlighted that India was the first to deploy an all-female unit to the United Nations mission in Liberia, inspiring thousands of Liberian women to join their national police. India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The Weather Department also forecast heavy rainfall today in places of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Gangtok, West Bengal. In women's cricket, India will begin their T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match is scheduled to start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Harmanpreet Kaur will lead India. And that is the end of this news bulletin.

के एक बजकर 10 मिनट और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम गीत सुनहरे। इसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, जो आज भी हम सबकी पहचान है, आज भी हम सबके लिए यादगार हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से

0: सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहाँ वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।

0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता नाम के धर्म गुरुओं के सम्मेलन में बोलते हुए श्री भागवत ने 2018 में दिल्ली में एक व्याख्यान श्रृंखला के दौरान मुसलमानों द्वारा उनसे पूछे गए एक सवाल और उस पर दिए गए अपने जवाब को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदू पहचान के लिए धार्मिक विविधता और हर व्यक्ति की समान अहमियत को स्वीकार करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनममिट्टा में केरलम का प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains at the Presidential Palace. Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. Both the leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations at the Presidential Palace. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense, but both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल आपके साथ। मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम के शुरुआत इस गजल के साथ, इस गीत के साथ, इस पहली पेशकश के साथ।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रग रग में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजने को है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, 4:20 हुए हैं, वक्त है नाद ब्रह्म कार्यक्रम का। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में नाद स्वरम प्रस्तुति दुर्गा प्रसाद और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम में नाद स्वरम दुर्गा प्रसाद और साथियों के स्वर में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:54 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो आप 5 बजे, 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम। 5:20 का समय देशभक्ति गीतों का है और 5:30 पर आप सुन सकते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ और 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ अयोध्या कांड भाग 33 आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को

जान ले, और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी, जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं।

0: गौमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गौमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गौमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे आओ योग करें कार्यक्रम। श्रोताओं, अब बारी है देशभक्ति गीत कार्यक्रम की, तो आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी।